मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की तीसरी तिथि तदनुसार 20 मई 2026 स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 5:58 और 46 सेकंड हुए हैं। अब हमारे आज के प्रसारण आरंभ होते हैं।

0: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 103.5 मेगा हर्ट्स पर। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब समय है समाचारों का। समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचारों के तुरंत बाद आप सुनेंगे एफएम बैंड 103.5 मेगा हर्ट्स पर विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का रिले।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये 3rd AI संचालित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर इस समय आप जुड़ चुके हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। प्रस्तुत है आज का चिंतन।

कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। ये था आज का चिंतन। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से अब श्रोता सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

मनुष्य ईश्वर को भूलकर और सांसारिक मोह माया में फंसकर हर दिन नित नए पाप कर रहा है, जबकि अंत समय में उसके साथ उसके सिर्फ अच्छे बुरे कर्म ही जाते हैं।

कबीर जी कहते हैं कि इस संसार रूपी चक्की में आकर कोई भी मनुष्य अछूता नहीं रहता, अर्थात जिसने भी इस धरा पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। यानी कि मनुष्य का जो शरीर है वो नश्वर है, वो सदा भी इस धरती पर नहीं रहता।

राम का नाम इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति लेता है, चाहे अनजाने में, चाहे विपत्ति के समय, चाहे खुशी के समय, लेकिन सभी ईश्वर के नाम का जाप करते हैं। लेकिन इसका असली महत्व तो तब है जब हम ईश्वर के नाम के मर्म को समझकर उसे अपने आचरण में उतारने का प्रयास करें।

इस संसार में ईश्वर के दो नाम राम और कृष्ण सबसे प्यारे और कल्याणकारी हैं। मनुष्य चाहे किसी भी नाम का जाप करे, दोनों ही नाम मन में प्रेम जागृत करते हैं और मनुष्य का कल्याण करते हैं।

जब मानव मन ईश्वर की भक्ति में तल्लीन हो जाए, उसमें रम जाए, तो फिर ये कहीं नहीं लगता। इसे असीम सुख और आनंद की अनुभूति केवल उन्हीं के चरणों में होती है

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अब सुनिए हमारा दैनिक आयोजन श्री रामचरित मानस गान।

श्री राम की कोई भी सीख, कोई भी तर्क लक्ष्मण के उनके साथ वन जाने के संकल्प को नहीं टिका सका, तो श्री राम को समर्पित छोटे भाई की अनुनय विनय माननी पड़ी। तब उन्होंने लक्ष्मण से जाकर माता की अनुमति ले लेने को कहा। हर्षित हृदय से लक्ष्मण माता के पास पहुंचे और उन्हें विस्तार से सब कुछ कह सुनाया। घटना चक्र की गति से माता सुमित्रा इस प्रकार सहम गईं, जैसे जंगल में लगी आग से हिरनी भयभीत हो जाती है। कैकेयी की करनी पर उन्होंने अपना सिर पीट लिया। श्री राम तथा सीता के प्रति लक्ष्मण के प्रेम और आदर तथा समर्पण की भावना से वो भली भांति परिचित थीं। बोली, हे पुत्र, जानकी तुम्हारी माता हैं और तुम पर अथोर स्नेह रखने वाले श्री राम तुम्हारे पिता के समान हैं। जहां उनका निवास हो वही अयोध्या है। यदि वे वनगमन करें तो तुम्हारे यहां होने का कोई अर्थ नहीं है। गुरु, पिता माता, भाई देवता तथा स्वामी की प्राणपण से सेवा करनी चाहिए। जो भी पूजनीय तथा प्रिय लोग हैं वे केवल राम के कारण पूज्य और प्रिय हैं। अतः श्री राम और सीता के साथ वन जाओ और जीवन को सार्थक करो। मैं बड़भागी हूं जिसके पुत्र का श्री राम चरणों में ऐसा अनुराग है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम वन को जा रहे हैं, अतः वन में तुम पूरी निष्ठा, मन, वचन और कर्म से उनकी सेवा करना।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक आयोजन श्री रामचरितमानस गान। आवाज़ ए हरिहरन और वाणी जयराम की थी। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से अगला कार्यक्रम कृषि की बातें।
1: किसान बहनों और भाइयों, राम राम। भाइयों, आज कृषि की बातों में चर्चा करेंगे अरहर की काश्त के बारे में। और इसमें देखो, ये एक दलहन फसल है और अच्छी पैदावार हमने जब देवेगी, जब हम इसमें शुरू से लेके और आखिर तक पूरी सावधानी बरतेंगे। और उसमें जो हमारी शुरुआती सावधानी होगी वो रहेगी कि भाई जो किस्म है वो हमने अच्छी लेनी और अपने अक्षेत्र के हिसाब से उसमें किस्मों का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। उसमें एक किस्म मानक है, इसको H77-216 के नाम से भी जाना है। ये अच्छी बढ़िया किस्म है। ये लगभग 120-125 दिन के आसपास पक्कर तैयार हो गया है। अच्छी बढ़िया किस्म है। ये पछेत में भी यदि हम बिजाई करें हैं, जुलाई का जो पहला पखवाड़ा वहाँ तक भी इसकी हम बिजाई कर सकें तो उसके लिए भी ठीक है। जहाँ तक हम इसकी औसतन पैदावार की बात करें तो ये लगभग 7.5 क्विंटल के आसपास तक हमने पैदावार दे दी है। भाई एक किस्म है UPS 120, इसको उपास के नाम से भाई जाने हैं और ये दरमियानी ही बढ़ने वाली किस्म है। ये लगभग 130 से 140 दिन के आसपास पक्का तैयार हो गया है और ठीक सी बढ़वार, ये सीमित सी बढ़वार लेवा है। और फूल आने के का जो समय वो है उसका ये कहा जा सकता है भाई अच्छा बढ़िया इसमें फूल आवे है, बढ़िया इसमें फली आवे हैं और इसकी शाखा है वो भी अच्छी ज़्यादा हुए हैं। और पकने के बाद ये थोड़ी ही झुकाव महसूस कर रहे हैं, अच्छी बढ़िया है। और इसकी औसतन हम पैदावार की बात करें तो 6 क्विंटल के आसपास हमने ये मिल गया है। औसतन पैदावार का ये है कि भाई हम इसको थोड़ा बहुत, यदि हमारा प्रबंधन अच्छा है तो थोड़ा बहुत हम इसको बढ़ा सके हैं। और यदि हमने मान लो पूरा इसका प्रबंधन नहीं किया, खाद पानी या जो कुछ भी हमने रख रखा इसका सही नहीं किया, तो इस औसतन पैदावार से हमारी जो पैदावार है वो घट जाएगी। भाई एक किस्म है पारस, ये किस्म 82-1 के नाम से जानी जा है। ये अच्छी लंबी बढ़ने वाली किस्म है और इसका फैलाव भी ठीक है। ये किस्म है जो इसकी फलियों की हम बात करें या फलन की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा हो है। इसके जो दाने हैं चिकने और भूरे रंग के हो हैं। शुरुआती तौर में भी हम देखें तो ये अच्छी बढ़वार लेवे है। ये किस्म जो पछेत में बिजाई हम करें हैं यानी कि मध्य जुलाई तक भी, तो उसमें भी ये बहुत अच्छी बढ़िया मानी गई है। इसकी जो पकने की अवधि की हम बात करें तो लगभग 135 से 140 दिन के आसपास ये ले ली है। और ये जो किस्म है लगभग 7 से 8 क्विंटल एक किलो के हिसाब से हमने पैदावार दे दी है। भाई ये तो बात थी किस्मों की। बाकी इसमें जो हम खेत की तैयारी कर रहे हैं उसमें एक तो ये हमने देखना पड़ेगा भाई जो हमारी ज़मीन है वो जल निकास वाली होनी चाहिए, दोमट मिट्टी होनी चाहिए। ये उसमें अच्छी पैदावार हमने दे दी है। और इसकी जो दोहरी जुताई है जिस समय हम बिजाई कर रहे हैं उस समय पर दोहरा जो सुहागा है वो अच्छा लगा करें ताकि उसके अंदर जो डले हैं या कोई भी मान लो ये कहें हम भुरभुरापन है वो ज़मीन के अंदर सही रहे और उसकी जो नमी है वो भी सही रहे। बिजाई के समय की हम जहाँ तक बात करें, ये एक ऐसी फसल है कि UPS 120 किस्म है। इसकी बिजाई तो हम मार्च से लेकर जो जुलाई का प्रथम सप्ताह कहें वो भी हम कर सके हैं। जो मानक और जो पारस किस्म भैयाती बताई है ये हम मध्य जून से लेके और मध्य जुलाई तक हम कर सके हैं। लेकिन कुछ भाई एक बात और भी कहूँ भाई, हमारे पास जो पानी के साधन हैं वो नहीं हैं, सिर्फ वो मानसून के ऊपर आधारित हैं। तो जिस समय मानसून की जो पहली बरसात हो उसमें भी हम ये कोशिश करें कि भाई हम जितनी जल्दी उसके इसकी बिजाई कर दें। बाकी इसका जो बीज उपचार है जो दलहन फसलों में कराया जा है, राइजोबियम का जो कल्चर वाला टीका है वो हम लगा दें और बिजाई से पहले जो अरहर का बीज है उसका उपचार करना बहुत ज़रूरी है। और बीज की मात्रा की बात करें तो ये 5 से 6 किलो बीज एक किलो का हिसाब तो है, कतार से कतार का फासला 40 सेंटीमीटर वो है। और जो मिश्रित अवस्था में हम बोए हैं तो उसमें हम 50 सेंटीमीटर के आसपास भी कर सकें। खाद के जहाँ तक हम बात करें, खाद भाइयों जो हमारी फसल है उसमें जो मिश्रित फसल ले रहे हैं उसमें 8 किलो नाइट्रोजन यानी कि 17.5 किलो यूरिया, 16 किलो फास्फोरस, जिसमें 100 किलो सिंगल सुपर फास्फेट हो जाएगा, यह बिजाई के समय पर डालना बहुत ज़रूरी है। और समय का ऐसे आप तनुड़ाई गुड़ाई कर दें इस बात का ध्यान रखेंगे तो जो हमारी अरहर वाली जो हम फसल ले रहे हैं वो हमने बहुत अच्छी बढ़िया पैदावार देवेगी। भाइयो हम सबका दिन मंगलमय हो।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि की बातें आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब समय है समाचारों का। समाचार पहले संस्कृत में, 7:00 हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में होंगे, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया रिले के लिए प्रतीक्षा करें।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डाक्टर् गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। भारतं तथा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड इत्येते देशाः मिलित्वा स्वद्विपक्षीय सम्बन्धं, हरित प्रौद्योगिकीं, नवाचार रणनीतिक सहयोगं च सुदृढीकर्तुं विचार विमर्शान् कृतवन्तः। प्रधानमंत्री श्री मोदी ह्यः नॉर्वे देशस्य राजधान्यां ओस्लो नगरे तृतीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा नॉर्डिक देशानां नेतृभिः सह संयुक्त पत्रकार सम्मेलनं संबोधयन् घोषणामेतां कृतवान्।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक, और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् विगत दशवर्षेषु भारतस्य नॉर्डिक देशानां च द्विपक्षीय व्यापारः प्रायः चतुर्गुणं वर्धितः वर्तते।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री पुष्टिं कृतवान् यत् भारतस्य नॉर्डिक देशानां च सम्बन्धाः व्यापार आर्थिक सहयोगेन अथ भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सन्धिभिः सह सद्यः एव सम्पन्न व्यापार सन्धिभिः नूतन स्वर्णयुगे प्रविष्टाः सन्ति। अस्मिन् अवसरे वदन्तः नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क इत्यादि देशानां प्रधानमन्त्रिणः लोकतन्त्रस्य मूल्यानां नियमाधारित वैश्विकव्यवस्थायाः अद्यतन परिवर्तमान विश्वस्य बहुपक्षीय संस्थासु तत्कालीन परिष्कारस्य च प्रतिबद्धतां पुनरुक्तवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमे अन्तिमे च चरणे इटली देशस्य राजधानीं रोम नगरम् आगतवान्। भारतस्य समृद्धकला परम्परायाः उत्सवे, भव्य सांस्कृतिक संध्यायाः कार्यक्रमे सम्पूर्ण यूरोपतः भारतीय शास्त्रीय संगीतकाराः, नर्तकाः च भागं गृहीत्वा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागत सत्कारस्य साक्षिणः अभवन्। लोकसभायाः अध्यक्ष ओम बिरला निगम विधि संशोधन विधेयक 20-26 इत्यस्य कृते संयुक्त समितिं घटितवान्। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता समितेः अध्यक्षरूपेण नियुक्तः वर्तते। समितौ लोकसभायाः 21 सदस्याः विनोद श्रीधर तावडे, सुजीत कुमारः, उज्ज्वल निकाम इत्येतैः सह राज्यसभायाः 9 सदस्याः कमलजीत सहरावत, बैजयंत पांडा, डॉक्टर निशिकांत दुबे इत्येतैः सह निम्न सदनस्य सदस्याः च सन्ति। भारतीय रेलवे विद्युतीकरणस्य दिशि महत्वपूर्ण कार्यं कुर्वन् 99.6% विद्युत् सम्पर्कं प्राप्नोति, यद्धि 73.8 लाख किलोमीटर तः अधिकं यावत् प्राप्तम् अस्ति। अस्मिन् वर्षे मार्च मासपर्यन्तं भारतेन व्यावहारिकरूपेण स्वस्य ब्राड्गेज जालस्य पूर्णविद्युत्करणं प्राप्य यूरोपीय संघस्य, युनाइटेड किंग्स, अमेरिका संयुक्त राज्यस्य च प्रमुख रेल व्यवस्थाभ्यः अग्रे स्थितं वर्तते। मणिपुरस्य अपर प्रमुख वस्त्र वाणिज्य उद्योग सचिवः अनुराग वाजपेयी इत्यनेन उक्तं यत् राज्य सर्वकारः राज्यस्य समृद्धानि वस्त्र हस्तकरघ परम्पराणि प्रवर्तयितुं अन्ताराष्ट्रिय विपणिषु निर्यातं कर्तुं च कार्यं कुर्वन् अस्ति। आईपीएल इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां अद्य सायं 7:30 कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरे मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा समाप्त कर इटली पहुंच गए हैं। नॉर्वे की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री ने भाग लिया।
3: ऑस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गुड़बोले, आकाशवाणी न्यूज, ऑस्लो, नॉर्वे।
2: रोम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में समझौता होने की संभावना है। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया।
1: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। इस योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के AI संचालित होलोबॉक्स स्थापित किए जा चुके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार को भारत की 4 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा और जयपुर भी जाएंगे। श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सेना खेल नियंत्रण बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ी डोपिंग जांच में विफल रहे थे। अंकित ने 69वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान और पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। आरोपों को स्वीकार करने के बाद दोनों खिलाड़ियों के प्रतिबंध की अवधि में 1 साल की कमी कर दी गई है। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश भीषण लू की चपेट में है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। बांदा में तापमान लगातार 3रे दिन 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

युवा संसार कार्यक्रम में शाम 5:30 पर करियर काउंसलिंग के अंतर्गत समाज शास्त्र के क्षेत्र में रोजगार इस विषय पर डॉक्टर प्रिया गोयल से की गई भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी।

एनसीईआरटी द्वारा तैयार प्रायोजित कार्यक्रम सुनवाया जाएगा दिन में 12:30 पर, और एक अन्य प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां सुनना न भूलें दिन में 2:45 पर।

सुबह सवेरे ये कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे प्रातः 7:35 पर। हमारी सेहत कार्यक्रम में प्रातः 7:15 पर हम आपको सुनवाएंगे दांतों के प्रमुख रोग, कारण व उपचार। इस विषय पर डॉक्टर सुधीर कुमार से की गई भेंटवार्ता।

कृषि जगत कार्यक्रम शाम 6:20 पर, और ग्रामीण संसार में फोन इन कार्यक्रम बालक मंडली होगा शाम 7:00।

खेत खलियान कार्यक्रम में दोपहर 2:30 पर पशुधन का लू से बचाव इस विषय पर जानकारी दी जाएगी। सुगम संगीत, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे 8:25 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन प्रातः 9:00। पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर सुना जा सकता है दिन में 1:10 पर। फिल्म संगीत शाम 7:30 पर और एक फिल्म से कार्यक्रम होगा 9:15 पर।

पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मनचाहे गीत प्रसारित किया जाएगा रात 10 बजे। लोक संगीत कार्यक्रम में प्रातः 8:30 पर कलाकार होंगे सतवीर सिलानिया व साथी।

0: ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे हमारी सेहत कार्यक्रम के अंतर्गत दांतों के प्रमुख रोग कारण व उपचार, इस विषय पर डॉक्टर सुधीर कुमार से की गई भेंटवार्ता। इनसे भेंट करेंगे विनय कुमार।
1: दांतों की समस्याएं, कारण, लक्षण व समाधान, आज इस विषय पर बातचीत करेंगे और विषय को विस्तार से रखने के लिए हमारे साथ में जुड़े हैं डॉक्टर सुधीर। आप डेंटल सर्जन हैं, सिविल हॉस्पिटल रोहतक से हमारे पास आए हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: जी नमस्कार।
1: जी, शुरुआत में सबसे पहले ये बताइए कि दांतों के खराब होने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो रही है ये?
2: देखो, दांतों की जो बीमारियां हैं वो पहले भी होती थी, और पहले जो दांतों की बीमारियां कम होती थी, और उसका कारण ये था कि जो खान पान था हमारा शुरू से ही, वो खान पान अच्छा था। अब जो खान पान है वो काफ़ी वेस्टर्नाइज हो गया है, ज़्यादा जंक फूड खाने लग गए बच्चे, पीने का पेप्सी, कोला, बहुत सारी चीज़ें, उसकी वजह से आजकल दांतों की बीमारियां हैं वो बचपन से ही शुरू हो जाती हैं।
1: आपने बच्चों की बात की है तो यहीं पे आते हैं कि बचपन से बच्चे कई बार क्योंकि चॉकलेट वगैरह खाते हैं, पेस्ट्रीज खाते हैं या फिर मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, क्या फिर दांतों की बीमारियों के बीज बचपन में उत्पन्न हो जाते हैं बच्चों में?
2: हाँ बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि आजकल मीठा, जो चॉकलेट, टॉफियाँ, ये जो बच्चे शुरू से ही खाना शुरू कर देते हैं, असल में क्या है कि जो मीठा है ना, मीठा दांत को ख़राब करता है
1: जी।
2: वो किसी भी टाइप से, कैसे भी, किसी मात्रा में लिया जाए, अगर आप मीठे का सेवन किसी भी उसमें कर रूप में कर रहे हो, चॉकलेट, टॉफ़ी, गुड़, शक्कर, चीनी, किसी भी टाइप से ले रहे हो, तो दांत को गला देता है
1: जी,
2: एसिड बना के।
1: हाँ।
2: और एसिड बना के गला के और उसमें कीड़ा लगना शुरू हो जाता है
1: जी।
2: और जैसे आपकी पेप्सी होगी या और कोई भी कलरिंग एजेंट जो आप पीते हो,
1: हाँ,
2: वो है ना, वो डिस्कलेशन लाता दांत के ऊपर।
1: बिल्कुल।
2: तो ये चीज़ें तो अब बच्चे लेते ही हैं, दोनों चीज़ें। अब क्या होता है कि जो बच्चे के दांत होते हैं ना, उनमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तकरीबन, क्योंकि नया दांत निकलता है तो उसमें कैल्शियम की भरपूर मात्रा नहीं होती, तो इसलिए वो जो दांत है वो इतना स्ट्रोंग नहीं होता,
1: तो आप
2: उसमें
1: ये
2: मतलब कीड़ा लगने का ज़्यादा चांस होता है।
1: हाँ, तो ये थोड़ा सा मिथ है, इसके बारे में और समझाइए कि अक्सर ये माना जाता है कि ये कहते हैं कि भाई बच्चा अगर खूब मीठा खा रहा है, खूब चॉकलेट खा रहा है या फिर अन्य प्रकार से मुंह की साफ सफाई ठीक से नहीं कर रहा
2: जी,
1: है, तो ये कहा जाता है कि ये तो अभी दूध के दांत है, ये गिर जाएंगे फिर दूसरे दांत आएंगे, उनमें कोई समस्या नहीं आएगी।
2: हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है, मिथ
1: जी
2: है कि जो दूध के दांत हैं,
1: हाँ,
2: वो जब शुरू में आते हैं 8-10 महीने से शुरू हो जाते हैं दांत आना, और जो दूध के दांत होते हैं वो होते हैं जी 20-20, और ये 6.5 साल से दूध का दांत गिरना शुरू हो जाएगा
1: जी,
2: जो कि प्रोसेस चलता है 12 साल तक।
1: हाँ।
2: तो 6 साल से लेके 12 साल तक है ना, जितने भी 20 दांत होते हैं बच्चे के दूध के, 20 के बाद टूट के निकल के और नए दांत आ जाते हैं।
1: हाँ।
2: तो उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर दूध के दांत खराब हैं तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पक्के दांत जो आएंगे, परमानेंट टीथ आएंगे, वो भी ख़राब हों।
1: हाँ, लेकिन अगर ख़राब नहीं होंगे तो क्या अगर दूध के दांत हैं
2: जी
1: उनकी हेल्थ ख़राब है, उनमें कोई कीड़ा है, वहाँ पे जाड़ में कोई कीड़ा लगा है, मसूड़े खराब हो गए हैं, तो जो नए दांत आ रहे हैं उन पे क्या उसका असर होगा?
2: ना, उस पे बिल्कुल असर नहीं आएगा उसका
1: जी।
2: उसमें अगर खराबी आती है तो बच्चे को दर्द हो सकता है, ठंडा गर्म लग सकता है, मसूड़ों से खून आ सकता है, ये बीमारियाँ हो सकती हैं
1: जी,
2: जिनका कि आप ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं।
1: हाँ।
2: पर अगर दांत में, दूध के दांत में कोई दिक्कत है तो वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन नए दांत पे या परमानेंट टीथ पे नहीं आएगा
1: जी। और बाद में फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, जब 12 साल के बच्चे हो जाते हैं तकरीबन नए दांत उनके आ जाते हैं।
2: हाँ, नए दांत आ,
1: लेकिन
2: सभी नए दांत आ जाते हैं उनके,
1: हैबिट्स वही रहती हैं, आदतें
2: हाँ,
1: वही रहती हैं,
2: जो तो
1: खान
2: जो
1: पान
2: जो बीमारी आपके दूध के दांतों में लगी है,
1: हाँ,
2: वही बीमारियाँ फिर से नए दांतों में भी आ सकती हैं
1: जी।
2: दांत में कीड़ा लग सकता है, मसूड़े खराब हो सकते हैं, मसूड़े मोटे हो सकते हैं, मसूड़ों से खून आ सकता है, दांत पीले पड़ सकते हैं।
1: ये कितने साल के अंदर हो सकते हैं?
2: ये कभी भी हो सकता है
1: जी।
2: जैसे ही नए दांत 6-7 साल की उम्र में आए हैं, तो उसके बाद अगर अच्छे से हैबिट से ब्रश नहीं कर रहा है बच्चा,
1: जी
2: या अच्छे से आप पेरेंट्स उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं, या मीठा ज़्यादा खा रहा है, तो 1-2 साल के अंदर वो ख़राब होने शुरू हो जाएंगे नए दांत भी।
1: जी बिल्कुल।

0: ये खराब होने शुरू हो जाएंगे और आगे फिर वो खराब होते रहते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: वो खराब होते रहते हैं फिर वो।
0: तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आयु वर्ग का विभाजन करते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर बच्चों की बात की है
1: जी
0: तो बच्चों के बारे में इस संदर्भ में ये बताइए कि कौन कौन सी बीमारियाँ आमतौर पर उनको होती हैं फिर।
1: देखो, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि
0: हाँ
1: मीठा खाने से ही दांत में कीड़ा लगता है,
0: जी
1: कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, नरम दांत होता है,
0: हाँ
1: और जो मीठा क्या होता है वो मुंह के अंदर एसिड बनाता है।
0: हाँ
1: एसिड कोई भी होगा वो किसी चीज़ को काटेगा, ऐसे ही वो दांत को ऊपरी सतह को काटता है जिससे कि उसमें होल हो जाता है और उसमें खाना फंस के जिसको हम काला काला दिखता है, जिसको कि कैविटी बोलते हैं।
0: जी
1: असल में तो कोई कीड़ा होता नहीं है, वो दांत वहाँ से गल जाता है और गल के उसमें डिपॉजिट्स इकट्ठे हो जाते हैं खाने
0: हाँ
1: के,
0: हाँ
1: जिसको हम देखते हैं कि काला हो गया, दांत की कीड़ा लग गया है।
0: हाँ
1: ठीक है, मुख्य रूप से तो कैविटी लगती है दांतों में। दूसरा क्या होता है कि ब्रश ना करने से कैलकुलस
0: जी जी
1: डिपॉजिट हो जाता है।
0: हाँ
1: कैलकुलस क्या होता है कि जो खाना है ना फंस जाता है मसूड़े दांत के बीच में, जो काला काला हो जाता है, उसकी वजह से मसूड़ा अपनी जगह छोड़ देता है। मसूड़ा अपनी जगह छोड़ने की वजह से उसमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, मसूड़ों से खून आ जाता है। जैसे सख्त चीज़ खाता है बच्चा, एप्पल खाता है और कोई बादाम काजू इस टाइप से कोई चीज़ लेता है, तो उससे सख्त चीज़ लगते ही मसूड़े से खून आना शुरू हो जाता है।
0: हाँ
1: तो दो मुख्य बीमारियां बच्चों में होती हैं, एक तो कीड़ा लगना और एक मसूड़ों से खून आना।
0: जी
1: अपने आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है कि जैसे हमने बात की कि दांत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो कई बार है ना दांतों को निकलवाना पड़ता है, दूध के
0: हाँ
1: दांतों को,
0: हाँ हाँ
1: और एकदम से प्री उसमें निकलवाना भी, एक तो नेचुरल उसमें दांत टूटे और दूसरा दांत आए, पर पहले जल्दी में निकलवाने में क्या होता है कि क्राउडिंग हो जाती है, मतलब दांत है ना स्पेस ही नहीं रहता,
0: हाँ
1: तो टेढ़े मेढ़े दांत निकल जाते हैं।
0: अच्छा
1: अब टेढ़े मेढ़े दांत निकलेंगे तो फिर वो इरेगुलर्स हो जाएगा, फेस अच्छा नहीं रहेगा,
0: हाँ
1: फिर उसके लिए दांत सीधे करने का प्रोसेस होता है। ये भी एक बीमारी है दांतों में,
0: हाँ
1: जो टेढ़ा मेढ़ापन आ जाता है दांतों
0: जी
1: में। तो
0: क्या
1: तीन तीन मुख्य
0: जो
1: बीमारियां हैं ये।
0: अच्छा ये बताइए, तकरीबन हमारे श्रोता इस बात को जानना चाहेंगे कि जब टेढ़े मेढ़े दांत आ जाते हैं,
1: जी
0: क्या टेढ़े मेढ़े दांत आना अपने आप में कोई समस्या होती है या एक आम बात है ये।
1: नहीं, आम बात है, पर ये समस्या भी है
0: हाँ
1: कि अगर दांत आपके टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं ना, तो अच्छे से क्लीनिंग नहीं होगी, तो और ज़्यादा चांस रहेगा आपके दांत खराब होने का,
0: जी
1: क्योंकि इसमें खाना फंसेगा, खाना फंसेगा तो दांत में कीड़ा लगाएगा और दांत खराब हो जाएगा,
0: हाँ
1: अच्छे से सफाई नहीं कर पाओगे, तो
0: जी
1: ये है।
0: तो आपने बीमारियों का जिक्र किया है, उनके लक्षणों का जिक्र किया है, और एहतियात के तौर पर जो आप बता रही हो कि बच्चे अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो अगर इनसे बचना तो इसका उल्टा ही करना होगा
1: इसका
0: सबसे पहली
1: उल्टा
0: बात।
1: करना होगा सबसे पहले तो। अब हमारे पास तो बहुत सारे मरीज़ आते हैं, पेरेंट्स साथ में दादा दादी आते हैं, गांव से आते हैं, सबका एक ही होता है कि बच्चे मानते नहीं हैं। बच्चे तो पेरेंट्स की ही मानेंगे ना, माँ बाप की ही मानेंगे,
0: जी
1: तो अब पैसे के बगैर तो फ्री में तो कोई चॉकलेट देगा नहीं आपको,
0: बिल्कुल
1: पैसे तो माँ बाप या दादा दादी या घर का कोई बुज़ुर्ग ही देगा। सबसे पहले तो मीठा बंद करवाओ
0: जी
1: बच्चों में, टॉफ़ी चॉकलेट गुड़ शक्कर चीनी कम से कम उसका इस्तेमाल करें।
0: जी
1: और दूसरा क्या होता है कि हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में ही ट्रेंड है देश में, कि जो सुबह सुबह हम ब्रश करते हैं
0: जी
1: उठते ही, क्योंकि
0: हाँ
1: मुंह गंदा होता है, ख़राब होता है,
0: बिल्कुल
1: तो एकदम से उठते ही सब सोचते हैं कि ब्रश करें।
0: हाँ
1: ब्रश करने का सही टाइम होता है सुबह नाश्ते के बाद
0: हाँ
1: और रात को सोने से पहले।
0: जी
1: जब हम खाना खा लेते हैं रात का, डिनर करने के बाद हमें ब्रश करनी चाहिए। उससे क्या होगा कि सुबह उठेंगे तो बिल्कुल फ्रेश मिलेगा, फिर आपको ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है सुबह। पर
0: जी
1: होता उल्टा है कि हम सुबह सुबह ना खाने से पहले ही ब्रश कर लेते हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है।
0: अच्छा
1: तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सुबह और नियमित रूप से शाम को खाना खा के दूध वगैरह जो लेते हैं दूध पीने के बाद, मतलब आप सोने जा रहे हो उससे पहले आपको ब्रश करना बहुत ही ज़रूरी है, अति आवश्यक है।
0: जी
1: अगर आप दोनों टाइम ब्रश कर रहे हैं फिर आपके दांतों में बहुत ही कम बीमारियां होने के चांस हैं।
0: हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा होता है, डॉक्टर साहब कई बार ऐसा बोलते हैं कि भाई किक्कर के दातुन कर लो
1: जी
0: या फिर नीम की दातुन कर लो, इस प्रकार से जो हमारी पुरानी रेमेडीज हैं उनका उपयोग करते हैं, ये
1: देखो,
0: कितने
1: गांव
0: फायदेमंद
1: में
0: है।
1: ग्रामीण क्षेत्रों में क्या था, पहले इतने सुख साधन सुविधाएं नहीं थी, ब्रश और पेस्ट के बारे में इतना ज्ञान भी नहीं था, तो लोग ये जैसे नीम या कीकर की दातन कर लेते। नीम की दातन में एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट आता है। नीम एंटीबैक्टीरिया का आपको पता ही है,
0: जी
1: एंटीबायोटिक का काम करता है एक तरह से,
0: हाँ
1: तो उससे तो फायदा होता है। दूसरा क्या है कि दातुन को ब्रश की तरह यूज किया जाता है, उससे क्या फायदा होता है कि दांत के ऊपर को चिपका हुआ है तो उसको रगड़ने से वो साफ हो जाएगा,
0: जी
1: तो एक तरह से वो ब्रश का और पेस्ट का ही काम करता है नीम,
0: अच्छा,
1: तो
0: और
1: इसमें कोई बुराई नहीं है
0: बबूल
1: इसको।
0: कीकर,
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
0: हाँ
1: इनकी हम दातुन कर सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल। तो लेकिन इसमें फिर एक और समस्या ये आती है कि हम दातुन तो बराबर कर रहे
1: जी
0: हैं, खासकर नीम के दातुन है, कीकर
1: जी
0: बबूल की दातुन है, लेकिन इसमें कई बार ये भी शिकायत करते हैं लोग कि इससे दांतों का जो पीलापन है वो नहीं जाता।
1: देखो, पीलापन दांतों में है ना कई तरह से होता है।
0: जी
1: अब लोगों को कैसा है, कहाँ से है, ये तो वो देख नहीं पाते,
0: हाँ
1: उनकी तो एक एक धारणा है कि दांत पीला हो गया।
0: हाँ
1: अगर फ्लोराइड ज़्यादा है कंटेंट पानी के अंदर, आपको पता है कि हरियाणा में भी और देश के अन्य जगह भी नमकीन पानी है हमारा,
0: हाँ
1: नीचे ग्राउंड वाटर है ना, नमकीन है,
0: ठीक है
1: सप्लाई का वाटर बहुत कम है। तो जो नमकीन वाटर है उसमें फ्लोरिडेटेड वाटर है, फ्लोराइड ज़्यादा है। फ्लोराइड कंटेंट क्या होता है, डिस्कलेशन ऑफ टीथ करता है, दांत का पीलापन करता है। एक तो वो पीलापन, ठीक है, वो पीलापन जो दांत के अंदर आ गया है वो तो सफाई से जाएगा नहीं, ठीक है। जो दूसरा पीलापन आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि पेप्सी पीने से या और कोई ऐसा तरल पदार्थ जैसे चाय लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, उससे भी डिस्कलेशन हो जाती है दांत में,
0: जी
1: पीलापन आ जाता है, उसको हम क्लीन कर सकते हैं,
0: जी
1: वो क्लीनिंग भी हो जाता है। वो ब्रश करोगे आप या दातुन करोगे तो उससे ठीक हो जाएगा, वो साफ़ हो जाएगा।
0: जी बिल्कुल। इसमें एक बड़ा असमंजस का प्रश्न है कि आजकल बाज़ार में बहुत सारे ब्रांड है, खासकर
1: जी
0: हम जब ब्रश करने की बात करते हैं
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो इतने सारे ब्रांड आए हुए, इतने सारे उत्पाद हैं, इतनी सारी कंपनियां हैं कि कोई भी ग्राहक है वो उलझन में हो जाता है कि भाई कौन सा पेस्ट ले, कौन सा ब्रश ले। तो
1: देखो,
0: आमतौर पे सवाल को मैं पूरा रखता हूँ कि कोई भी अगर ग्राहक जा रहा है अपना उत्पाद खरीदने के लिए जा रहा है, हम अब ब्रश या पेस्ट खरीदने के लिए जा रहे हैं, मोटा मोटी किन बातों का ध्यान रख के कोई भी चुनाव।
1: मैं तो यही कहूँगा श्रोताओं को कि कोई भी एक ब्रांड का पेस्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक ही ब्रांड को आप यूज़ करोगे, कोलगेट को लगातार यूज़ कर रहे हो तो बैक्टीरिया जो मुंह के अंदर हैं वो है ना एक ही चीज़ से हैबिचुअल हो जाते हैं, तो उसके ऊपर उसका इफ़ेक्ट आता नहीं है।
0: जी
1: हर 2, 4, 6 महीने में, 3 महीने में अपने ब्रांड को चेंज कर लेना चाहिए।
0: जी बिल्कुल
1: अब आपने पूछा कि क्या कोई ब्रांड ऐसा है कि भाई कोई फ़ायदेमंद है या कम फायदेमंद है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
0: और ब्रश के बारे
1: ब्रश
0: में बताइए। हाँ
1: ब्रश और पेस्ट, पेस्ट आप चाहे किसी भी कंपनी का कोई भी करें, उससे आपके दांत में कीड़ा लगना नहीं रुकेगा,
0: जी
1: ठीक है। पेस्ट का इतना ही काम है कि वो फोम होता है, उसके अंदर मिंट फ्लेवर्स होते हैं
0: हाँ
1: फ्रेशनेस के लिए, तो वो झाग बनाता है। झाग क्या करते हैं, दांत के बीच में से जो गड्ढे हैं या जो जॉइंट्स हैं उसके अंदर से जाके और जो खाना फंसा हुआ है उसको बाहर निकालते हैं।
0: जी
1: वो कोई भी सस्ता और महंगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
0: जी
1: अब आ जाइए आप ब्रशों पे।
0: जी
1: 3 तरह के ब्रश होते हैं जी,
0: बिल्कुल
1: सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड,
0: हाँ
1: ठीक है।
0: जी
1: अगर आपके मसूड़े सॉफ्ट हैं तो आपको सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना चाहिए,
0: जी
1: ठीक है। अगर ठीक है मसूड़े से चुभता नहीं है तो मीडियम ब्रश यूज़ करना चाहिए, और नहीं तो फिर हार्ड ब्रश।
0: जी
1: हार्ड ब्रश बहुत ही कम यूज़ करते हैं, हार्ड ब्रश में ब्रिसल्स हार्ड होते हैं, पर उससे थोड़ी है ना क्लीनिंग बेटर हो सकती है। दांत के ऊपर कुछ चिपका हुआ है तो वो अच्छे से साफ़ हो सकता है हार्ड
0: जी
1: ब्रश से, पर
0: जी
1: जो सॉफ्ट ब्रश होता है उसके ब्रिसल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, उसको आप रगड़ के भी थोड़ा करेंगे तब भी है ना बहुत कम चांस है कि अच्छे से दांत पे मतलब प्रेशर लग के साफ हो, सफाई हो जो कुछ लगा हुआ है।
0: जी
1: तो इस तरह से 3 ब्रश हैं, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। और कई बार आयुर्वेदिक उत्पाद भी आ रहे हैं साथ के साथ में,
1: जी
0: क्या वो भी फायदेमंद है इसमें।
1: आयुर्वेद तो आपको पता ही है शुरू से ही
0: जी
1: फायदेमंद है।
0: जी
1: कई लोग हल्दी और तेल मिक्स करके
0: हाँ
1: मसूड़ों की मालिश करते हैं। मालिश आप कैसे भी किसी भी फॉर्म में कहीं बॉडी की, जैसे हाथ पैर पे भी हम तेल लगाते हैं सरसों का, तो फायदेमंद होता है।
2: जी
1: ऐसे ही हुए मसूड़ों पे अगर मालिश करते हैं हल्दी तेल से तो फायदेमंद रहेगा।
0: जी इसके अलावा कई बार ऐसा करते हैं कि नमक के पानी से कुल्ला करना है।
1: हाँ वो तो एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देता है नमक का पानी,
0: हाँ
1: गुनगुने पानी में नमक डाल के आप उससे कुल्ला करेंगे तो एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देता है,
0: हाँ इसके
1: तो
0: अलावा
1: उसे
0: कई बार ये भी हैबिट बताई जाती है कि आमतौर पर लोग यूज करते हैं इसको कि नारियल का तेल है उससे कुल्ला करना इस प्रकार से। तो
1: नहीं। नारियल का तेल वही बात आ जाती है कि मालिश के लिए,
0: जी
1: जैसे हम बॉडी की मालिश करते हैं ना, कुल्ला करने से तो कुछ होगा नहीं ज़्यादा,
0: हाँ
1: पर मालिश जैसे करते हैं ना स्किन के ऊपर, स्किन मतलब एक तरह से मसूड़ा तो एक स्किन है ना, तो उस वो हेल्दी रहेगा।
0: कई बार ऐसा होता है कि खाना खाने के बाद हम जैसे दो लौंग हो गई या फिर इलायची हो गई उनको चबाते हैं
1: वो
0: तो
1: फ्रेशनेस का काम करती हैं
0: जी
1: वो, कैविटी आप सोचो कि कैविटी दांत में कीड़ा लगना रोक देगी वो नहीं है बिल्कुल, वो फ्रेशनेस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। जैसे माउथ वॉश यूज़ करते हैं हम, आज
0: हाँ
1: के दिन ब्रश नहीं किया तो माउथ वॉश यूज़ कर लिया, लिक्विड पानी होता है,
0: हाँ
1: अब माउथ वॉश की जगह आप लौंग इलायची रख के और वो मुँह को फ्रेश कर सकते हो।
0: तो मुंह को फ्रेश कर सकते, क्या इनसे फायदा होता है फिर
1: हाँ
0: दांतों में
1: बैड
0: या फिर।
1: ब्रीदिंग जो होती है,
0: हाँ
1: जो स्मेल आती है, बैड ब्रीदिंग होती है
0: हाँ
1: वो तो रुकेगी उससे,
0: जी बिल्कुल।
1: ये फायदा रहेगा।
0: तो चलते चलते दो तीन ऐसी आदतें बताइए, क्योंकि हमने ब्रश करने के बारे में बात की है, साफ़ सफाई के बारे में बात की है, चाहे बच्चे हों या बड़े लोग हों, उम्र के हिसाब से भी देखें अगर, तो सब लोग अपनी दिनचर्या में ऐसी कौन कौन सी बातें और अपना सकते हैं इन बातों के अलावा, जिससे हमारे दांतों का स्वास्थ्य अच्छा बना रह सकता है।
1: कि दो दो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई
0: हाँ
1: हैं,
0: जी
1: एक तो दोनों टाइम ब्रश करना है,
0: हाँ
1: मीठे का सेवन कम से कम करना है,
0: हाँ
1: अगर मीठा खा भी रहे हैं किसी भी उसमें फॉर्म
0: हाँ
1: में
0: हाँ
1: तो उसके तुरंत बाद कुल्ला करें।
0: जी
1: और जो आजकल ये जो फास्ट फूड्स
0: हाँ
1: उससे है ना, उसको उससे खाने से बचें,
0: ठीक है
1: फास्ट फूड का सेवन कम से कम करें।
0: जी। इसके अलावा दांतों की मालिश कितने दिन में एक बार कर सकते हैं, जैसे
1: दांतों की
0: दांतों की या मसूड़ों की मालिश।
1: मालिश तो आप रोज़ करो, चाहे बिल्कुल ब्रश
0: अच्छा
1: करते ही है ना, खाली उंगली से भी मालिश कर सकते हो,
0: जी
1: डेली भी कर सकते हो सुबह शाम।
0: जी तो इस प्रकार से ये मोटा मोटी कुछ आते हैं। क्या फिर ऐसे जो कई बार आपने मीठा खाने की बताई, कई बार बहुत ज़्यादा खट्टा खा लेते हैं, तीखा खा लेते हैं, क्या इनसे भी दांतों और मसूड़ों के स्वास्थ्य पे कुछ असर पड़ता
1: ना
0: है।
1: बिल्कुल भी नहीं,
0: जी
1: अगर दांत आपके ख़राब हैं
0: हाँ
1: तो फिर वो उसमें खट्टा या मीठा लगेगा आपको,
0: जी
1: अगर वो दांत ख़राब नहीं है तो आप कितना भी खट्टा मीठा ठंडा गरम कुछ भी ले सकते हैं,
0: जी
1: दांत खाने और पीने के लिए हैं। अगर आपको कुछ भी लगता है ऐसा भी ठंडा लगा, इसका मतलब दांत में कहीं ना कहीं कोई रोग है, कहीं ना कहीं दांत में खराबी है,
0: जी
1: या गर्म लगता है, चाय लगती है, कोल्ड ड्रिंक लगती है, या कुछ खट्टा खाने से है ना लगता है आपको कि दांत में लगा एकदम से, इसका मतलब ये है कि आपके दांत स्वस्थ नहीं है, इसमें कोई ना कोई कमी है, तो उसके लिए आप नियर बाई किसी भी हमारे सरकारी अस्पताल में या मेडिकल कॉलेज में जाके अपने दांतों का चेकअप करवाएं।
0: कई बार ऐसा होता है कि हम फाइबर से भरे हुए कई फल खाते हैं,
1: जी
0: तो उनसे भी ऐसा महसूस होता है कि जैसे मुंह की पूरी सफाई हो गई हो, जैसे हम खीरा ककड़ी खा रहे हैं या फिर सेब या संतरा खा रहे हैं,
1: जी जी
0: गन्ना चूस रहे हैं उससे।
1: हाँ बिल्कुल, फाइबर फाइबर इनटेक तो आपके सेहत के लिए आपको पता ही है कि पेट के लिए बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, डाइजेशन के लिए फाइबर है ना बहुत हेल्प करता है।
0: जी
1: ऐसे ही जैसे शक्कर का काम करते हैं हमारे मसूड़े,
0: जी
1: और जब गन्ना चूसते हैं ना तो पूरा प्रेशर लगता है उसके ऊपर,
0: जी
1: तो उससे हेल्दी होते हैं दांत,
0: जी तो सर्दियों में अगर गन्ना चूसने।
1: बहुत ज़रूरी है।
0: हाँ बिल्कुल। इसके अलावा आप अपनी तरफ से कुछ ऐसा बताएं श्रोताओं को लाभदायक।
1: बस मैं तो अंत में यही कहूँगा कि दोनों टाइम श्रोता है ना ब्रश करें, बच्चों का ध्यान रखें, मीठा कम से कम सेवन करें, बाहर की चीज़ें ना खाएं, हेल्दी फूड खाएं, जैसे आपने बताया कि गन्ना चूसें या सेब फ्रूट या और जैसे वेजिटेबल्स होती हैं, खीरा ककड़ी, आजकल का सीज़न चला हुआ खीरा ककड़ी, ऐसी चीज़ें खाएं जिससे कि आपके दांत स्वस्थ रहें, आपकी सेहत भी स्वस्थ रहे।
0: जी बिल्कुल। तो डॉक्टर फजीर जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए और दांतों संबंधी आपने बहुत सारी बातें बताई, उम्मीद है कि हमारे सभी श्रोता इससे लाभान्वित होंगे। इन सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।
1: थैंक यू, नमस्कार।
2: हमारी सेहत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप

रहे थे दांतों के प्रमुख रोग कारण व उपचार, इस विषय पर डॉक्टर सुधीर कुमार से की गई भेंट वार्ता। इनसे भेंट कर रहे थे विनय कुमार। ये कार्यक्रम सुनवाया गया आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

सुबह सवेरे कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त गीता। और श्रोताओं, जैसा कि जानते हैं आप सभी कि समसामयिक विषयों के साथ गीत संगीत पर आधारित होता है हमारा ये कार्यक्रम। और आज सबसे पहले हम आपको बताते हैं दिन विशेष के बारे में। आज 20 मई को हम मना रहे हैं विश्व मधुमक्खी दिवस। ये दिन मनाया जाता है ताकि कृषि, खाद्य उत्पादन, जैव विविधता और पर्यावरण स्थिरता में मधुमक्खियों और अन्य परागणकों की भूमिका को मान्यता दी जा सके। यह दिन सरकारों, शोधकर्ताओं, किसानों, मधुमक्खी पालकों और पर्यावरण संगठनों के लिए परागणों के बढ़ते खतरों और उनकी रक्षा के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा करने का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। और इस दिन को मनाने के लिए 20 मई के दिन को ही इसलिए चुना गया क्योंकि यह तिथि एंटोन जांशा की जयंती है, जिन्हें आधुनिक मधुमक्खी पालन के अग्रदूतों में से एक माना जाता है। स्लोवेनिया में जन्मे जांशा एक ऐसे परिवार से थे जिसकी मधुमक्खी पालन की समृद्ध परंपरा थी और उन्होंने आधुनिक मधुमक्खी पालन पद्धतियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्लोवेनिया स्वयं मधुमक्खी पालन के अपने लंबे इतिहास और देसी मधुमक्खी प्रजातियों और परागण करने वाले जीवों के आवासों पर के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जाना जाता है। श्रोताओं, मधुमक्खियां और अन्य परागणकर्ता वैश्विक कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विश्व के अधिकांश फसलें पूर्णतः या आंशिक रूप से परागण पर निर्भर करती हैं। फल, सब्जियां, तिलहन, दालें, मेवे और कई व्यावसायिक फसलें बेहतर उपज और गुणवत्ता के लिए परागणकर्ताओं पर निर्भर करती हैं। फसल उत्पादन के अलावा परागणकर्ता पुष्पीय पौधों और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों को सहारा देकर जैव विविधता को बनाए रखने में सहायता करते हैं। और श्रोताओं, मधुमक्खी पालन जो है वो ग्रामीण आजीविका को का भी सहारा है। भारत सहित कई देशों में छोटे और सीमांत किसान शहद, मोम, रॉयल जेली, प्राग संग्रह और परागण सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से जो है अतिरिक्त आय भी अर्जित करते हैं। इतनी महत्वपूर्ण होने के बावजूद मधुमक्खियों और अन्य परागणों को की आबादी दुनिया के कई हिस्सों में घट रही है। वैज्ञानिक और पर्यावरण समूहों ने इस गिरावट को कई कारकों से जोड़ा है, जिनमें पर्यावास का नुकसान, जलवायु परिवर्तन, कीटनाशकों का प्रभाव, कीट और रोग, एक ही फसल की खेती और फूलों की जैव विविधता में कमी शामिल है। श्रोताओं, प्रत्येक वर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस को एक थीम के तहत मनाया जाता है और वर्ष 2026 के लिए इसकी थीम है प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खियां हम सभी का पोषण करती हैं। यह कृषि और पारिस्थितिकी तंत्र में मधुमक्खियों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। मधुमक्खियां और तितली, चमगादड़ और पक्षी जैसे अन्य परागणकर्ता पर्यावरण के स्वास्थ्य के सूचक हैं।

जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।

सुबह सवेरे कार्यक्रम श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। और श्रोताओं, हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक और प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत की जयंती आज हम मना रहे हैं। इनका जन्म 20 मई 1900 में उत्तराखंड के कौसानी गांव में हुआ था। वे छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। सुमित्रा नंदन पंत आधुनिक हिंदी साहित्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवियों में से एक है। इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था। जन्म के कुछ ही घंटों के बाद इनकी माता का निधन हो गया, जिसके बाद इनका लालन पालन इनकी दादी द्वारा किया गया। विजय शंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य के छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में गिने जाते हैं। अपनी कविताओं में प्रकृति, कोमल भावनाओं और आंतरिक सौंदर्य का अद्भुत वर्णन करने के कारण उन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि की उपाधि दी गई। इनके प्रमुख काव्य संग्रह पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, वीणा, स्वर्ण किरण और लोकायतन हैं। इनकी प्रसिद्ध कृति कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी रचना चितंबरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और यह सम्मान पाने वाले वे हिंदी साहित्य के पहले कवि थे। पंत जी की कविताएं और उनका प्रकृति प्रेम

और श्रोताओं, आज 20 मई को ही हम मना रहे हैं विश्व माप विज्ञान दिवस, और यह दिन माप विज्ञान के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। माप विज्ञान दिवस की शुरुआत मापन मानक प्रयोगशाला द्वारा की गई थी। 17 देशों ने 20 मई 1875 को विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया। माप विज्ञान वायुमंडल का अध्ययन है। विश्व माप विज्ञान दिवस 2026 का आयोजन विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा किया जा रहा है। विश्व माप विज्ञान दिवस पर वायुमंडल के महत्व को दर्शाने के लिए कई गतिविधियां और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, और प्रत्येक वर्ष इस दिन को एक थीम के तहत मनाया जाता है। और वर्ष 2026 की जो थीम है, यानी कि विषय है, वो है माप विज्ञान नीति निर्माण में विश्वास का निर्माण है। यह थीम सार्वजनिक स्वास्थ्य, जलवायु और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्र में विश्वसनीय निर्णय के लिए स्टेक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मापों की भूमिका को उजागर करती है। और श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि समसामयिक विषयों पर हमारा ये कार्यक्रम होता है, तो आज के समय में सबके ज़ुबान पर एक बात अक्सर सुनने को मिलती है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, या गर्मी ने बहुत परेशान कर रखा है, या गर्मी ने सभी को बेहाल कर रखा है। तो श्रोताओं, गर्मी में कई बार हम बहुत सारी छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं जो कि सेहत पर बड़ा असर डालते हैं, जैसे कि बहुत ठंडा पानी पी लेते हैं या कम पानी पीते हैं, धूप में बिना तैयारी के निकलते हैं, और ऐसी गलतियां हो सकता है कि एकदम से आपके शरीर पर असर ना दिखाएं, लेकिन धीरे धीरे जब ये आपके शरीर पर जो है बुरा असर डालती हैं, इससे डिहाइड्रेशन, थकान, स्किन प्रॉब्लम या पाचन संबंधी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए गर्मी में जब राहत पाने का आपका मन करता है, तो शरीर को जब आप इस तरह की चीज़ें का सेवन करते हैं, जैसे ठंडी चीज़ें हमने बताया, तो ये फ़ायदे की जगह आपको नुकसान करती हैं। तो हम अक्सर अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आपसे यही अनुरोध करते हैं, आपको यही जानकारी देते हैं कि आपको गर्मियों में हल्का और सुपाच्य भोजन करना है, और जो कि खीरा, ककड़ी, नींबू जैसे चीज़ों का आपको अपने खाने में सेवन करते रहना है, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। और बाहर की चीज़ों की बजाय घर का खाना आप इस्तेमाल करते हैं या उसका सेवन करते हैं, तो ये आपके शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। तो श्रोताओं, छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, लेकिन इसके बड़े फ़ायदे आपके शरीर को हो सकते हैं। और आज के सुबह सवेरे कार्यक्रम में बस इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और दीजिए इजाज़त कार्यक्रम को यहीं समेटने की। नमस्कार।

सुबह सवेरे कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अब से थोड़ी ही देर के बाद ठीक 8 बजे समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचार पहले हिंदी में होंगे, उसके बाद 8:15 पर अंग्रेजी में होंगे।

0: जिद्दी पड़ोसी है। पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
3: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: ऑस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार

0: सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध
1: है।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
0: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
2: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
5: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे, भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरे तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
2: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
6: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
7: IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के

0: ने समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
3: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोकसत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है, भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
1: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing.

रहती अनुकूल क्रियावान स्त्री हो से जो धन दौलत की होती मूल क्रियावान स्त्री हो से दुख दर्दान दूर करे पति के समान उठी पति के मरने के बाद याद करके खूब

सृष्टिको रचाव कौन ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनू बैठे बैठे

Merci, gentlemen!

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: लोक संगीत कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं सतवीर सिलानिया और साथियों को।

सतने सत्य बताया करे वो मानस अनुरागी हो से जान बूझ बुरे कर्म करे वो दोष का भागी हो से वो पतिव्रता औरत ने तगनू कुल का दाग

इसके साथ ही हमारा लोक संगीत कार्यक्रम आज का संपन्न होता है। इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार थे सतवीर सिलानिया और साथ ही आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब श्रोता सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। कार्यक्रम का आगाज करते हैं डोली फिल्म के गीत के साथ, आवाज आशा भोसले की है, राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा है और संगीत रवि का।

जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक

कार्यक्रम में अब सुनिए याराना फिल्म के गीत को किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ में। गीत को लिखा है अनजान ने और संगीत राजेश रोशन का।

कार्यक्रम का अगला गीत यादों की कौसम फिल्म से आवाज़ सुरेश वाडेकर की है। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

कार्यक्रम का अगला गीत उदित नारायण के स्वर में। इस गीत को लिखा है मजरूह ने और संगीतबद्ध किया है आनंद मिलन ने। फिल्म का नाम है तुम मेरे हो।

0: कार्यक्रम में अब सुनिए सावन कुमार के लिखे हुए गीत को, उन्हीं के संगीत से सजे हुए सोतन की बेटी इस फिल्म के गीत को। आवाज लता मंगेशकर की है।
1: जब व्यापार की
0: गीत से पहले ये संदेश,
1: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
2: हो गया इंतजाम।
3: किसका?
2: गुड्डी की फीस का।
3: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
4: RBI कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

ये आपने सुना तुम बिन फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण और साथियों की आवाज़ में। फैज़ अनवर ने इसे लिखा था और तर्ज बनाई थी निखिल वेना ने। कार्यक्रम का अगला गीत सड़क फिल्म से। इस गीत में अनुराधा पौडवाल के साथ हैं अभिजीत। समीर ने इसे लिखा है और संगीत नदीम श्रवण का है।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति मासूम फिल्म से अभिजीत भट्टाचार्य, साधना सरगम और साथियों ने इसे गाया है। गीत संगीत आनंद राज आनंद का।

अब हम आपको सुनवाएंगे राहत फ़तेह अली खां की आवाज़ में इरशाद कामिल के लिखे हुए गीत को। फिल्म का नाम है मेरी ब्रदर की दुल्हन।

इस गीत को अपनी आवाज़ दी है नितिन मुकेश, अलका याग्निक, शब्बीर और साथियों ने। जावेद अख्तर ने इसे लिखा है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: तेजाब फिल्म के गीत के साथ ही हमारा आज का मन भवन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्ज

0: मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी इस यात्रा का मुख्य ध्यान भारत और इटली के बीच सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर रहेगा। इस दौरान विशेष रूप से भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान वर्ष 2025 से 2029 के दौरान संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना की भी समीक्षा की जाएगी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
1: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हों। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान की ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद एयर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान का संचालन रोक दिया गया था। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज परमवीर चक्र से सम्मानित कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि 1947-48 के युद्ध में पीरू सिंह का अदम्य साहस, असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान भारतीय सैन्य इतिहास के स्वर्णिम अध्यायों में सदा अमर रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi today said that he is looking forward to his meeting with his Italian counterpart Giorgia Meloni later today. He expressed hope that the talks between them will focus on strengthening India-Italy relations. In a social media post, Mr. Modi said that upon landing in Rome, he had the opportunity to meet Prime Minister Meloni over dinner, followed by a visit to the iconic Colosseum. He said both leaders exchanged perspectives on a wide range of subjects. The Prime Minister added that today's talks will continue the conversation on boosting India-Italy friendship. Meanwhile, in another post, the Prime Minister thanked the Indian community in Italy for the warm welcome in Rome last evening. Mr. Modi said that their deep affection for India and commitment towards strengthening India-Italy ties are truly commendable. He added, the Indian diaspora continues to make the nation proud across the world. Union Health Minister Jagat Prakash Nadda reaffirmed India's commitment to universal health coverage, digital health innovation and global health solidarity at the 79th World Health Assembly in Geneva. Addressing the assembly themed Reshaping Global Health, a Shared Responsibility yesterday, Mr. Nadda highlighted India's progress towards universal health coverage anchored in a whole-of-government and whole-of-society approach.
3: India is accelerating towards universal health coverage by expanding access to quality and affordable

मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। दिन के 12:30 हो चुके हैं। हमारे दूसरी सफा के कार्यक्रम अब शुरू होते हैं। आरंभ में सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं? इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभाव ही वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं,
2: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी।
3: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
2: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अक्रम आसमा फकीर।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की।
2: जी,
3: तो विमलेश जी अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी जी जी श्रोताओं, कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षा वनों की। तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षा वन से।
3: जी जरूर श्रोताओं, अपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षा वन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
2: जी,
3: आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
2: श्रोताओं, अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षा वन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और हाँ, इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
3: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षा वन से मिलता है।
2: जी,
3: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ब्राजील में।
2: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलम्बिया में भी फैले हुए हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है, लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक।
3: और श्रोताओं, जहाँ तक इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात है, यहाँ उनकी लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जानते हैं कुछ दुर्लभ और रोचक जीवों के नाम। तो सबसे पहला जीव है जगुआर। जी हाँ, अमेजन वन का सबसे बड़ा शिकारी, पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर।
2: दूसरा है गोल्डन मंकी, बिल्कुल सोने के सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है, केवल अमेजन के जंगलों में ही मिलता है। एक और विशेष मेंढक यहाँ मिलता है, उसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहते हैं। ये बेहद चमकीले रंग वाला मेंढक होता है। इसकी त्वचा में जहरीला पदार्थ होता है जिसे छूते ही तबीयत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पुराने समय में यहाँ के आदिवासी लोग युद्धों में इस जहर का इस्तेमाल तीरों पर करते थे।
3: और आपने श्रोताओं एनाकोंडा सांप के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप है जो पानी में रहता है और बड़े जानवरों का शिकार करता है।
2: एक और चींटी की अनोखी प्रजाति यहाँ पाई जाती है, जिसे बुलेट एंट कहते हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक वाली चींटी है। कहते हैं इसके डंक मारने पर भाला मारने या तीर लगने जैसा दर्द होता है।
3: तो ये थी कुछ रोचक वन्य जीवों की जानकारी। श्रोताओं, अमेजन का जंगल यह औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है।
2: जी,
3: आइए अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अमेजन वर्षा वन के बारे में। तो विमलेश जी।
2: जी जी जी, एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि अमेजन वर्षा वन ज्यादातर अमेजन नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मालूम है श्रोताओं, वैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन जल की मात्रा के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि अमेजन नदी में पुल नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों?
3: ऐसा इसलिए कि भारी वर्षा के कारण अमेजन नदी उफान से भरी रहती है। इसका कोई निश्चित तटबंध नहीं है। कभी कभी
2: इसकी धारा पतली हो जाती है तो कभी कभी बहुत चौड़ी, कभी 2 किलोमीटर ही रहती है तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पुल भी बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि दुविधा ये रहती है कि पुल की लंबाई या चौड़ाई कितनी रखनी है।
3: इसलिए यह तय पाया गया श्रोताओं कि अमेजन नदी में पुलों से बेहतर नौकायन ही है, और नौकायन कब हो इसका निर्णय नदी के उफान या पानी के कम होने पर किया जाता है।
2: जी तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी अमेजन वर्षा वन के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
3: तो आज का प्रश्न है, अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं।
3: 8800044559 यानी हमारे IVRS नंबर पर, और audio@cieet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: और श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम द क्रो।
2: एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि हमें तुरंत किसी की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन तथ्यों की जाँच कर लेनी चाहिए और प्रशंसा सच में की जा रही है या नहीं ये भी जाँच लेना चाहिए।
4: CIET NCERT presents the series Singing the Poem. Under this series, let us listen to the program The Crow.
5: Hello children.
6: Hello ma'am.
7: Hello ma'am.
5: Hello, hello. How are you all?
6: We are fine ma'am.
7: I am fine ma'am.
8: How are you ma'am?
5: I am good. Thank you so much Vanya. All right. So children, today I am going to share something with you. Are you ready?
6: Yes, ma'am.
7: Yes, ma'am.
5: All right. You all know that pets are special members of our family, isn't it?
6: Yes, ma'am.
8: Pets are so lovely.
5: Right, Soham.
9: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
5: Riddhi, that's very good. But how do you know that your dog loves you?
9: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
5: Wow, that's good. And what about you, Navya?
10: Ma'am, my dog shakes its tail at me.
5: Oh, that's lovely. You have a very nice dog. I'm very happy that you love pets. All right. What about you, Lavish?
11: Ma'am, when I come home, my cat jumps and sits on my lap.
5: Oh, that's so exciting, isn't it?
6: Yes, ma'am.
5: All right. So, we spoke about our animals. What about birds? Do you like birds?
6: Yes, ma'am.
5: Can you name some birds?
7: Sparrow.
5: Okay, Vanya. Good. That's a beautiful small bird. Okay, Soham, you tell.
8: Peacock. It dances so well. It looks so pretty.
5: Yes, peacock is a colorful bird.
11: Ma'am, parrot.
5: Oh, yes. Parrot is a mimic bird. But, children, you have missed a bird. Do you know which bird is missing?
12: Any guesses?
5: Okay, I'll give you a clue. It calls... Absolutely right. Children, I remember a lovely story of a crow. Would you like to listen?
6: Yes, ma'am.
8: It will be fun.
5: So, I'll narrate the poem. Repeat after me. There once was a crow. He was black. As you know. How to be beautiful. He wanted to know. Colorful feathers. He wanted to grow. He found one peacock feather. He stuck it. In his tail. Then he found another. He picked up. All without fail. He stuck them. In his wings. Put one on his head. I am now beautiful.
6: I am now beautiful.
5: He danced and said.
6: He danced and said.
5: The other crows laughed at him.
6: Laughed at him.
12: Oh, what a fool you are. Beautiful in black.
6: You are beautiful in black.
12: We love you.
6: We love you.
12: For what you are.
6: For what you are.
5: So children, now listen to the same poem and a lovely song.
6: Okay.

0: और एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो
1: दीदी दीदी
2: अरे राजू स्कूल से आ गए तुम।
1: हाँ दीदी।
2: अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
1: दीदी सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे, मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
2: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए। क्या ये सच है राजू?
1: दीदी वो तो मैंने।
2: राजू पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
1: हाँ दीदी ये तो मैंने पढ़ा है, मगर
2: मगर क्या?
1: अच्छा अब इधर आओ, ये देखो
2: दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
1: हाँ दीदी ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा सा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
2: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं, हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
1: भोजन और पानी?
2: हाँ राजू। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, एक पौधा लगाओ।
1: हाँ दीदी ये तो बहुत अच्छा रहेगा, कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
2: अरे कल क्यों, आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
1: ये ठीक है दीदी।

0: अच्छा तो राजू बेटा तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चलो बेटा पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: हाँ अब ठीक हो गया।
0: राजू बेटा ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी अभी खोदता हूँ, लाइए खुरपी दीजिए।
0: हाँ ये लो बेटा, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए माली काका से पौधा ले आता हूँ।
1: जी।

0: वाह, ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
1: देखा बेटा, ये पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं। क्यों माली काका, मैं सच कह रहा हूँ ना?
2: हाँ राजू बेटा, इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल दो।

0: मालिका का, ये तो मैंने कर दिया।
1: शाबाश राजू बेटा, शाबाश।
0: मगर ये तो बताओ मालिका का, ये कौन सा पौधा है?
2: बेटा ये गेंदे का पौधा है।
0: गेंदे का पौधा?
2: जी।
0: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है, पर उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
2: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।
1: हाँ राजू बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
2: हाँ।
0: देखभाल? वो कैसे?
2: देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
0: अच्छा।
2: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना, उसको हटाना होगा।
0: ये तो मैं जरूर करूँगा।
2: हाँ तो ठीक है बेटे। अच्छा आज तो अब बस।
1: राजू बेटा
0: जी?
1: अच्छा अब घर चलें?
0: जी धन्यवाद मालिका का।
2: अरे बेटा
1: चलो बेटा।
2: जी दे।
0: चलिए दादाजी।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ बोलो जी।
0: राजू कहाँ चला गया?
1: राजू कहाँ चला गया?
2: रात को तो यहीं सोया था।
1: हाँ। अरे हाँ, लगता है बागीचे में गया होगा।
0: पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, जब से इसने पौधा लगाया न खाने की चिंता न खेलने की।
1: जब देखो बागीचे में जाकर पौधे की देखभाल में लगा रहता है।
3: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
4: हाँ, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूं?
3: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं? दीदी कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
4: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
3: हाँ दीदी,
4: मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
3: दीदी ये तो बहुत ही गलत काम है। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक पौधा राजू का, और अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: आपने सुना ये प्रायोजित कार्यक्रम।

आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। दिन का 1 बजने वाला है। थोड़ी देर के बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। इसके बाद 1:05 पर प्रादेशिक समाचार होंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। फिलहाल हिंदी समाचारों का समय है, तो चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन क्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई है। इस बैठक में उन्होंने शी चिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। IPL क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हेरिटेज एंड सिटी वॉक में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को क्यूर कार्ड के माध्यम से पंजीकरण करना होगा। इसकी पूरी जानकारी और पंजीकरण संबंधी विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा इच्छुक लोग मौके पर पहुंचकर भी अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जींद नागरिक अस्पताल में मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े वार्डों में पुरुषों की अनावश्यक आवाजाही पर सख्ती बरतने का फैसला किया है। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश पांचाल ने कल इन वार्डों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई पुरुष वार्ड के अंदर और बेड पर बैठे मिले, जिससे महिलाओं को असहजता का सामना करना पड़ रहा था। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर रमेश पांचाल ने बताया,
1: तो पहला वार्ड है एसएनसीयू के सामने, जो बच्चों के लिए जो वार्ड बनाया अलग से, माँ के लिए, बच्चे के लिए, रेस्ट करने के लिए, उसमें आदमी अंदर घुसे रहते हैं। तो मैंने यही कहा है कि सबकी बहू बेटियां बराबर है, कोई माता है, बहन है, कोई दूध पिला रही होती है बच्चे को, तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। इसलिए उनसे पहले भी कई बार अनुरोध किया, अब भी अनुरोध किया, आपकी जहाँ गायनी डिपार्टमेंट है, गायनी वार्ड है, तो वहाँ आदमियों को अंदर एंटर नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी औरत के साथ कई बार कोई घरवाला ना हो, आदमी हो, वो मजबूरी है।
0: हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मनीष बंसल और मिशन चेतना फाउंडेशन प्रमुख

0: ये गोद लिया है, जिसमें पंचकुला के 20, अंबाला के 20 और यमुनानगर के 30 मरीज शामिल हैं। हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसके उपलक्ष्य में फरीदाबाद स्थित मांगरबानी अरावली क्षेत्र में कल नेचर वॉक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड एवं राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम का थीम एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट रहा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

ये था कुली नंबर 1 फिल्म का गीत। पूर्णिमा और कुमार सानू की आवाज़ें थीं, समीर के बोल थे, संगीता आनंद मिलिंद का। गायिका पूर्णिमा को पहले सुषमा श्रेष्ठ के नाम से भी जाना जाता था, ये जानकारी आपको होगी, लेकिन जिनको नहीं है उनको हमने बताने की कोशिश की है। बहरहाल पसंद आप सभी की थी। आप हैं रोहतक से महेंद्र शाह, हरेंद्र, ज्योति, जितेंद्र, मानसी, उर्वशी, यहीं से गोपाल कृष्ण, सुनेजा, मनीष, मदनलाल कृष्ण, मयंक, पांडुपिंडारा से बादल सिंह गिल, कमलेश, टीनू, प्रीति, डॉक्टर अंकित गिल और डॉक्टर वानिका, थिल्लोरी, अमरावती से सुनैना भोंडे, पवन भोंडे, गुजरात, गांधीनगर से सुरेश राठौर, मंजुला, विशाल, निशा राठौर, करनाल से जग्गी दुआ, सुपाईसाई, झारखंड से देवेंद्र तांती, राकेश, प्रकाश, निशा तांती, उगला अम्बाला से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती राघव और हरमन। और अब कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन सुनने वालों की पसंद का है। आप हैं सागमन भिवानी से पालाराम गुर्जर, सुमन रवि, पवन मंगू, रेनू, बलजीत, महेंद्र रावत, जाखोद से शंभुदयाल खटक, बिमला, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश, दीपक, पूजा खटक, शीतलानगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, धामणी मानोरा से तुलसीराम डेरे, माया, संदेश, प्रज्वल, अनुत डेरे, शिखर सोनोने और बाला खाड़े। आप सभी की पसंद का गीत है हद कर दी आपने फिल्म से, उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है आनंद राज आनंद का। इन सब के साथ आइए हम भी सुनते हैं।

ये था हद कर दिया आपने फिल्म का गीत, उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया, आनंद बख्शी ने लिखा और संगीतबद्ध किया था आनंद राज आनंद ने। अगला गीत अंश फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं, सपना अवस्थी और सखियों की आवाज़ें आप सुनेंगे, समीर के बोल हैं, संगीत नदीम श्रवण का। सुनने की ख्वाहिश आप सभी की, आप हैं मोहला से राजकुमार ढोचक, गीता अमन, सानिया सुभाष, उषा राहुल, आरती रोहित, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला आरती गौरी, ओम सुरलकर, रोहतक से रमेश शर्मा, वीरेंद्र राठी, जगदीश सहगल, कविता मलिक, दिलबाग सैनी, विनोद कपूर, रमेश चंद्र, धाड़ी नंदूरा से श्री कृष्ण बाठे, संदीप अमूल्य बाठे, लुधियाना से पप्पू चोपड़ा, कविता सोमदत्त चोपड़ा, सुजानगढ़ टाड़ा से पिंकी साक्षी गुनीता, हिसार से राजेंद्र सैनी, राजेश सैनी, बड़वास से प्रवीण श्रीमाली, कुरुक्षेत्र से वीना ढींगरा, राजश्री अनुश्री ढींगरा, फुलवारी शरीफ पटना से अविनाश चंद्र ज्योति, जाह्नवी पीहू, वाकोडी से उत्तम जमधाड़े, स्वराज स्वरित पोपलवाड़, संघर्षा संविधान, हिंगोली से शाहजी बोड़खे, हदगांव आष्टी से सुधाकर कामले, संदीप कामले, पुरशा देगांव से सदाशिव थोरात, मलोट से रमेश जाजोरिया, गीता गगनदीप अर्जु जाजोरिया, दीवालग्राम से शंकरलाल गंगराड़े, वनिता छोटू, रोशनी अजय, मावली सिंगारपुर से सालिक पुजारी, चौथरीवास से राजू अग्रवाल, केशव दक्ष, विवेक प्रयाग प्रियांशी और जगाधरी से विनय मोहन, मीनाक्षी प्लोमा और ईशानी। आप सभी के लिए अंश फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं, सपना अवस्थी और सखियों की आवाज़ें हैं, लीजिए सुनिए है।

ये था सपनावस्थी का गाया अंश फिल्म का गीत। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर आप तक पहुंच रहा है आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अगला गीत आप सभी की पसंद का है। आप हैं अकोट महाराष्ट्र से नितिन पाटिल, प्रमोद धनभर, किशोर नारे, रघुनाथ नारे, शिंगेकर, करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत, मनमीत, मनमिंदर, निम्नाबाद जींद से जसबीर, इल्मावादी गुरप्रीत, लवप्रीत, कर्मजीत, जितेंद्र, आनंद सिटी गुजरात से आशाबेन पटेल, विशाखा पटेल, राजकोट से नूर मोहम्मद लखानी, जुबेदा, जीशान लखानी, कुदोपली उड़ीसा से गिरधारी लाल विश्वकर्मा, सरस्वती विश्वकर्मा, विहंगम, चौधरीवा से मांगेराम, सुनील, शुभम, यश और विनोद, अगला खत हम शामिल कर रहे हैं राजनगर मधुबनी के राजू गुप्ता, वनीता, रविराज, गौरव, कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, रुद्र गुप्ता का। छपरा दलदली बाजार से आप हैं संजय, संजीत गुप्ता, सर्वजीत, सुधांशु, सीतामढ़ी से प्रभात, अरविंद, मंटू, निक्की गुप्ता, अमलेश्वर से डुमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारिणी, सूरज ज्योति, रियांश, सुजला ठाकुर, भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर वर्मा, मोरीगेट दिल्ली से कन्हैयालाल, रीता, शिल्पा, आकाश, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत सीमा, शारदा दामिनी वर्मा, मुक्तसर से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर, रवनीत नीशु, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का, तन्मय, सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता, मुस्कान मालाकार, जाभरून अर्थापुर से दुर्गादास जोशी, गंगाधर, गजानन, संजय, आशीष, पृथ्वीराज, साध्वी जोशी, परभणी से गणेश हारगांवकर, खजूरीकास दिल्ली से पृथ्वी सिंह नेगी, सौरभ, गौरव, मीठी और कुहू, नथाना से हरजिंदर सिंह छिंदा, जसबीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता, गीता, कासगंज से आबाद खान, नबील, आरिफा, इल्मा, असलम, सैफी, बदायूं से आफरीन खान, जमीर खान। आप सभी के अनुरोध पर रंग फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ें हैं। इस गीत को समीर ने रचा है और संगीत पद किया है नदीम श्रवण ने।

रंग फिल्म का गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ें थीं। समीर के बोल थे, संगीत था नदीम श्रवण का। अब अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं। हमारे इन सुनने वालों के अनुरोध पर आप हैं चकला बाजार सामाना शहर पटियाला से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता जिंदल, हंसमुख जिंदल, खंडवा से यथार्थ खंडाले, सुभाष मंदा राजेश, अंजलि संदीप माधुरी पिंटू जयश्री, लोहगढ़ फिरोजपुर से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत राजदीप सिंह गुरलाल, अभिराज सिंह गुरमान गुरनूर, महसूल सीतामढ़ी से तलत जहां नाज फरत जहां, रूही वसीम अकरम नदीम शमीम अमन, विडूल उमरखेड से आप हैं प्रताप, कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, अजहर हसन इब्राहिम नाजिया आफिया, चोहल्दा बागपत से संजय ढींगिया नमन मुस्कान कुणाल, और ये पत्र है जो खंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सैयद अब्बासी निगत, प्रवीण शहनवाज, सरफराज सुहान अरजान फरदीन अबान अब्बासी का, भोपाल से श्रवण सिंह गिन्नारे, जगदीश गिन्नारे, रेखा विनीता, शेर सिंह गिन्नारे, बीसलपुर पीलीभीत से विमल वर्मा, नीतू प्राची वर्मा, लोनी से नसीमुल इस्लाम गुन्नौरी, प्रकाश वीर राजपूत, डोंडी लुहारा बालोद से कमलेश जयपुरिया, भिलाई से अनुश्री, पिंकी प्रदीप प्रमिला, रायगढ़ से लालचंद मिश्रा, नरेंद्र कुमार राम, बनियापारा धमतरी से रामचंद मखीजा, स्वीता माही, शरद छुटकी, सुंदरखेड़ से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति आकांक्षा और आकाश नरवाड़े। राधा का संगम फिल्म का गीत आप सुनना चाहते हैं। लता मंगेशकर और कीर्ति कुमार की आवाज़ें हैं। हसरत जयपुरी के बोल हैं, संगीत है अन्नू मलिक का।

गीत अचानक प्ले होना बंद हुआ, इसका हमें खेद है। आप आनंद ले रहे थे राधा का संगम फिल्म का गीत का, लता मंगेशकर और कीर्ति कुमार की आवाज़ें आप सुन रहे थे। बहरहाल आगे बढ़ने का समय है, सुनवाते हैं आपको सड़क फिल्म का ये गीत, सुनने वालों के नाम गीत के बाद।

कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल का गाया सड़क फिल्म का गीत आपने सुना। समीर के बोल थे, संगीतकार नदीम श्रवण का। पसंद आप सभी की। आप हैं लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश साहू। बक्सर से प्रतीक केसरी, प्रतीज्ञा प्रज्ञा, उमानंद घनानंद। बेरड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता हार्दिक, प्राची तनया। कैरो से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी रजनी, आकाशदीप, अनहद, गुरशबद। मटोर कैथल से रामदिया, नीलम, अजय, विजय, तमन्ना। बारोली जीन से सुरेंद्र सांगवान, अंकित और सचिन। बलियाली से दर्शनलाल बंसल, सुदेश, प्रवीण, ममता, कमल, गर्विश और तमन्ना बंसल। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आसमान से ऊंचा फिल्म से आपको सुनवाते हैं। साधना सरगम और कुमार सानू की आवाज़ें आप सुनेंगे। संगीत राजेश रोशन का है। पसंद आप सभी की। आप हैं बीड़ से प्रकाश पगारिया, पराग, प्रदीप, केशव पटेल। करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान, नावेद खान। खेरड़ावाड़ी हिंगोली से नंदा, हनुमान, सारिका, सुरेखा, अरवी, सोनम। जलगांव सोमनाथ जालना से नामदेव भूतेकर, अभिषेक, गणेश, कार्तिक, अश्वनी भूतेकर। औरंगाबाद से वैष्णवी जगदाले, हर्षुल सावंगी। भावसिंहपुरा औरंगाबाद से वैभव, गौरव लोखंडे, वाकुलनी बदनापुर से मेघराज, युवराज कोलते, रिधोरा देवी, रुद्र कोलकर। और ये अगला खत है। भिवानी के हमारे श्रोता हैं सुशील सोनी, पवन, कमल, साहिल, प्रेमलता और ओम प्रकाश सोनी का। मोहाली से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। रामवर से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, विनोद लखनपाल, राय सिंह पंजेटा। जलगांव जामोद से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, साधना और सुमित कुमार दामोदर। आसमान से ऊंचा फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं साधना सरगम और कुमार सानू की आवाज़ें हैं। इन सब के साथ आइए हम भी सुनते हैं।

और अब कार्यक्रम का आखिरी गाना बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ें आप सुनेंगे। पसंद आप सभी की है। आप हैं समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रोता अदिति, राधे, दीपक, अंकुर, राघव गुप्ता, कर्णपुरा नई दिल्ली से, कविता गौरव, मानसी, अनिल मदान, फुल चिंचोली पंढरपुर से, जाकिर मुलानी, सुमैया सुबहान और साथी, वर्णा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से, विजय चौहान इंदुरकर, तेजस्वनी माई इंदुरकर, शौर्या श्रेयस और परिवार, कैथल से मधु नायक, पहाड़गंज से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, भिवानी से जितेंद्र खेड़ा। आप सभी के अनुरोध पर ये गीत।

0: दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGM-MV3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा, राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in

0: हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय, उत्तर कन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
2: मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है, और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के दो जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
3: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
4: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। DRDO ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब आप खेत खलिहान कार्यक्रम सुनेंगे।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा,
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: खेत खलिहान कार्यक्रम सुनने वाले सारे बण भाइया ने सुरेंद्र भाई की राम राम। भाई देखो, जो गर्मी है वो बिल्कुल बहुत ज़ोरों पे है और लू हैं वो भी चलाना शुरू हो रही हैं, और 10 बजे के बाद और फिर हम 4-5 बजे तक देखें तो जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा है, और इसमें हमने अपना बचाव भी करना है और जो अपना पशुधन है उसका बचाव भी करना है। आज खेत खलिहान का विषय भी ये रहेगा कि भाई जो पशु हैं उनका लू से हमने कैसे बचाव करना है। इसमें देखो, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए तो एक तो पशु को हम सीधी धूप ना लगने दें, ये एक मुख्य बात है, क्योंकि पशु को जब सीधी धूप लगे है तो वो उसके उसका जो शरीर है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान करे है। एक जो बाड़ा है जिस जगह पर हम बांधा है उस जगह पर भी जो ज़्यादा हवा है वो ना लगे, यानी कि जो गर्म जो हवा है वो आवे तो वो नहीं लगनी चाहिए। और देखो, बार बार ये कहा जा है कि भाई हम बार बार पशु को पानी पिलाएं, क्योंकि धूप के अंदर जो पशु है यदि वो रहेगा तो एक तो उसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। पहले तो कोशिश हम ये करें कि 10 बजे के बाद हम किसी भी पशु को घर से बाहर ना रखें या बाड़े से बाहर ना रखें, क्योंकि उससे बाहर रखेंगे तो फिर उसको बड़ी दिक्कत हो जाएगी और गर्मी जो से देगी वो उसको नुकसान करेगी। इसमें कुछ सुझाव हैं भाई, उनका ध्यान करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनेंगे एक रागनी बाली शर्मा और उनके साथियों की गाई हुई।
6: हे रे डोडी ऊपर नजर गई, वो या अदली खा खड़िया

ചെല്ലിയ പരവാനാദർക്ക്.

तो भैया ने ये सुनी रागनी बाली शर्मा और उनके साथियों की गाई हुई किस्सा था जैनी चोर का। भयो हम खेत खलिहान में जो चर्चा कर रहे थे वह जो पशुधन है उसका लू से बचाव के बारे में। इसमें देखो, एक तो जो पशु को सीधी लू है वो नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि सीधी लू लगेगी तो वो सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें पहुँचाएगी। एक जिस जगह पर भी हैं, मान लो हम कहीं बाहर भी ले जा रहे हैं, तो जो छाया है वो अच्छी होनी चाहिए और जो हवा है वो थोड़ी बहुत पशु को लगती हुई होनी चाहिए, क्योंकि जो पशु है जब सीधी दोपहर की धूप हो है तो उसके अंदर हमने बाहर नहीं बांधना चाहिए। उसके स्थान पर जो बाड़े हैं, जो छप्पर हैं, वो उनकी जो छत है वो ज़रूर होनी चाहिए, और बाड़े में थोड़ा बहुत जो पंखा है या कूलर है उसकी व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए। जहाँ तक हम बात करें पर्दे और टाठें, यदि वो हमने लगा रखे हैं तो उनके ऊपर जो पानी है वो हमने ज़रूर छिड़क देना है, क्योंकि पानी के छिड़कने से जो ठंडक है वो बन जाए है। और जब मान लो ठंडा और जो स्वच्छ पानी है तो वो पानी है जो ठंडा और जो स्वच्छ पानी है वो हमने पशु को पिलाते रहना है, क्योंकि इसमें देखो भाइयों, जब हम बात करें जब पशु को हम ठंडा पानी दे रहे हैं, ताज़ा पानी दे रहे हैं, तो एक तो उसकी जो प्यास है वो बढ़ेगी। वो हमने पशु को कम से कम भी 3-4 बार ज़रूर पिलाना है। कुछ भाई ये सोचें कि हमने मान लो 4 बजे पानी पिला दिया और चलो अब सारी रात हम ना पिलाऊँ, तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसको दोपहर जिस समय हम सोवा, मान लो कम से कम 9-10 बजे जो हम सोवा हैं, उस समय भी हमने पानी ज़रूर पिलाना चाहिए। और कोशिश ये करें कि भाई हम पशु के आगे जो पानी है वो रखें और रखा रहे, क्योंकि पशु को जब प्यास लगेगी जो पी लेगा। ज़्यादातर जो अच्छे आदर्श डेयरी फार्म जिसको हम कहें, वहाँ पे जो पशुओं के साथ में एक अलग से पानी का छोटा सा उनका साधन होता है, वो एक अलग से खोर होती है, उसके अंदर पानी भरते हैं, उससे जब भी पशु को पानी पीने की तमन्ना हो तो वो पीस के है। बाकी मान लो जो यदि हम पशु को बाहर ले जाएं हैं चराने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि वह सुबह हम उन पशुओं को थोड़ा सा जल्दी खोल दें, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक जब पशु को ज़्यादा धूप लगे उससे पहले पहले हम या तो उसको तालाब में ले आकर मान लो पशु को छोड़ दें, क्योंकि पशु की जो विशेषकर जो भैंस हैं उनकी गर्मी तालाब में ही निकले है। ज़्यादातर जो हमारे पशुपालक भाई ये सोचते हैं कि भाई हम उनको मान लो वैसे पानी से नहाओ तो उसमें बड़ा फर्क रहा है। यदि उनको तालाब मिल जाए नहाने के लिए तो बहुत अच्छी बढ़िया बात है। एक जो उनका खाने पीने का जो तरीका है ना, उसमें बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, और उसमें पशु को जो सूखा चारा है, जो दाना है, उसकी बजाय कोशिश ये करें कि भाई थोड़ा हम उनको हरा चारा दें। और जो हरा चारा हम दे रहे हैं पशुओं को ज़्यादातर, वो सूखे का चारा ना हो भाई, क्योंकि जब मान लो जो हमने हरा चारा बो रखा है और उस चारे के अंदर सूखा लग जा, यानी कि उसके जो पत्ते हैं वो कुमड़ा जा, तो वो चारा हमने नहीं देना है। हमने अपने खेत में भी चारे में पानी, जो हमारी चारे की फसल है उसमें पानी लगाना ज़रूरी है, ताकि जो चारा हो वो भी अच्छा स्वस्थ और उसके अंदर भी जो पानी है थोड़ा बहुत जो पशु को वो मिलता रहे। एक पशु को हमने जो नमक है वो देना है, जो खनिज लवण मिश्रण है उसका विशेष ध्यान रखना है। और कई बार क्या है कि भाई लक्षण हमने दिखाई देवें कि भाई पशु के अंदर मान लो तेज आँफ रहा है या लार टपकान लाग रहा है या खाना पीना बंद कर रहा है या सुस्त हो रहा है, तो उसको तुरंत किसी छायादार जगह पर हम ले जाएं, ठंडी जगह पर ले जाएं, और उसका पानी पात का और उसका जो हवा का प्रबंधन है वो ज़रूर करें। भाई एक बार पशु को जय लू लगगी तो फिर मान लो सेधगी, गर्मी लगगी तो फिर जो पशु है बहुत वारी जाकर अपनी पूरी जो सही उसकी तासीर है उस पर आ पाएगा। भाई इन कुछ बातों का हमने ध्यान रखना पड़ेगा, और ध्यान भाई समय का भी रखना पड़ेगा, क्योंकि जो कार्यक्रम का समय वो समाप्त हो गया। शाम 6:20 पर भैया ने फिर मिलाएंगे। सारे बाण भैया ने राम राम।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं राखी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं आपके कार्यक्रम हमारी बेड़िया में और आशा करती हूं कि आप भी हमारे कार्यक्रम का इंतजार कर रहे होंगे। दोस्तों, आपके लगातार आते फोन कॉल हम सभी के लिए सराहनीय हैं और यही हमें उत्साहित भी करते हैं कि आप इस पड़ाव और पल में हमारे साथ हैं। सच में हमें बेहद अच्छा लगता है आप हमारा कार्यक्रम बड़े चाव से सुनते हैं, हमें फोन करते हैं, हमें पत्र भी लिखते हैं और आपके सुझाव और विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। आशा करते हैं आगे भी आप इसी तरह हमें प्रोत्साहित करते रहेंगे। तो बढ़ते हैं आगे की ओर, उससे पहले आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है
1: 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955।
0: तो श्रोताओं, बढ़ते हैं आगे की पड़ाव की ओर, जिसका शीर्षक है अंधेरे से उजाले की ओर।

0: दोस्तों, नशा एक ऐसा धीमा जहर है जो इंसान के शरीर से पहले उसके सपनों को मार देता है। नशा केवल एक इंसान को नहीं, पूरे परिवार को सजा देता है। घर की हंसी कब रोने में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। आज की ये कहानी उन लोगों की है जिन्होंने नशे के अंधेरे में अपनों को खोया और फिर उसी अंधेरे को हरा कर उजाले का रास्ता चुना। आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आए हैं जो आपके आसपास, आपके पड़ोस, शायद आप ही के घर में घट रही हो। जो इंसान से उसका विवेक और परिवार से उसकी मुस्कान छीन लेता है। नशे की आवाज घर की शांति को चीर देती है। सुबह की शुरुआत भी चिंता के साथ होती है जब घर में खुशियों से ज्यादा समस्याएं बोलती हैं।
1: मोहन, फिर शराब पीकर आ गए हो। बच्चों की फीस बाकी है, घर पे राशन नहीं है।
2: बस बस, मुझे मत सिखाओ, मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहे करूं।
1: राधा, आज सब्जी मत बनाना, नमक रोटी ही से काम चला लेंगे।
3: दीदी, कब तक ऐसे जिएंगे हम? हर दिन समझौता, हर रात डर।
1: मजबूरी है राधा, जब घर का मुखिया ही रास्ता भटक जाए तो?
3: दीदी, हर दिन यही होता है, ये नशा हमें खत्म कर देगा। कभी कभी लगता है दीदी, हम भी उसी नशे में डूब रहे हैं बिना पिए।
1: राधा, आज फिर चावल कम पड़ गए।
3: दीदी, महीने भर का बजट बिगड़ गया है।
2: खाना मिलेगा या नहीं?
1: मोहन, बच्चों के सामने तो मत चिल्लाओ।
2: अरे, आज खाना ठंडा है क्या?
1: रोज शराब, गर्म रहती है मोहन, घर का चूल्हा ठंडा पड़ गया है।
2: ताना मत मारो, मैं बार मर मर के कमाता हूँ।
3: जीजा जी, कमाई से ज्यादा तो शराब की बोतल दिखती है।
2: मेरी जिंदगी है, तुम लोग कौन होते हो रोकने वाले?
1: हम तुम्हारे अपने हैं मोहन, और अपने ही सबसे ज्यादा दर्द सहते हैं।
4: नमस्ते बहन जी, आज गांव में नशा मुक्ति अभियान की बैठक है। गांव में नशा मुक्ति शिविर लगने वाला है। सरकार मुफ्त इलाज और काउंसलिंग दे रही है।
1: मुफ्त? हमें तो लगा ये सब बड़े शहरों के लिए होता है। सच? क्या कोई रास्ता है इस अंधेरे से बाहर निकलने का?
4: दीदी, जिला नशा मुक्ति केंद्र में दवा, काउंसलिंग सब फ्री है। और हाँ दीदी, अगर चाह हो तो आज नहीं रुकें, कल तो बहुत देर हो जाएगी।
3: और अगर कमाई रुक जाए तो?
4: मनरेगा योजना है ना, रोजगार मिलेगा, बच्चों के लिए सरकारी छात्रवृत्ति भी।
1: मतलब सरकार भी हमारे साथ खड़ी है?
4: हाँ दीदी बिल्कुल, बस पहला कदम हमें ही उठाना पड़ेगा।
0: काउंसलिंग के बाद मोहन बदला हुआ दिखता है।
2: सब मुझसे क्यों दूर हो रहे हैं? क्या सच में मेरी गलती है? मैं क्या बन गया हूँ? मेरे कारण मेरे अपने मुझसे डरते हैं? क्या यही मर्दानगी है? मैं कहाँ गलत हो गया? अगर आज भी नहीं सुधरा तो कल मुझे माफ करने वाला भी कोई नहीं होगा।
0: जब इंसान खुद से बात करने लगे तो समझो बदलाव की शुरुआत हो चुकी है।
2: मैं बदलना चाहता हूँ,
1: ये मेरी सबसे बड़ी जीत है।
0: काउंसलिंग के बाद मोहन।
2: सीमा, मुझे माफ कर दो, मैंने नशे में अपना वर्तमान भी खोया और भविष्य भी।
1: गलती मान लेना ही सबसे बड़ी जीत है मोहन।
3: आज मेरा भाई फिर से जिंदा हो गया।

0: आज फिर मन कर रहा है।
1: एक घूंट ने आपको यहाँ तक पहुँचाया था, अब एक फैसला आपको बचा सकता है जीजाजी। अगर मन डगमगाए तो याद कर लेना।
2: मोहन, आज अगर रुके तो हमारे बच्चे एक नई सुबह को देखेंगे।
0: हर दिन एक युद्ध है राधा, लेकिन आज हार मान ली तो सब खत्म हो जाएगा। नहीं, अब नहीं।
2: हम तुम्हारे साथ हैं मोहन, इस बार सच में।

0: 6 माह बाद मोहन काम पर जाने को तैयार, आशा पढ़ाई में व्यस्त।
1: आज मैंने समाज सेवा का कोर्स ज्वाइन किया है, मैं दूसरों को भी नशे से बचाऊंगी।
2: अगर मेरी कहानी किसी को बचा सके तो मेरा संघर्ष सफल हो जाएगा।
1: मैं समाज सेवा में जाना चाहती हूँ
2: ताकि कोई और मेरी तरह ना गिरे।
3: मोहन, आज मनरेगा का काम कैसा रहा?
2: मेहनत की कमाई है सीमा, और सुकून भी।
4: बच्चों की छात्रवृत्ति का फॉर्म भी भर दिया गया है।
1: और दीदी, आज आंगनवाड़ी मीटिंग में नशा विरोधी अभियान की तारीख तय हुई है।
2: अगर सहारा ना मिलता तो शायद मैं आज भी अंधेरे में होता।
0: श्रोताओ, नशा कोई स्टाइल नहीं, ये एक धीमी मौत है, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो हर अंधेरा रोशनी में बदला जा सकता है। आज नहीं तो कभी नहीं, नशे को ना कहें, जीवन को हाँ कहें। हर अंधेरे में एक दिया होता है, बस जरूरत है उसे जलाने की। रेडियो पर ना सुनाई देने वाला संघर्ष असल जिंदगी में बहुत शोर मचाता है। जब परिवार साथ खड़ा हो तो सबसे बड़ी लत भी हार जाती है। श्रोतों, जिला नशा मुक्ति केंद्र और मनरेगा के बारे में मैं आपको थोड़ी सी विस्तृत जानकारी दे देती हूँ। जिला नशा मुक्ति केंद्र, आप सभी जानना चाहेंगे कि ये क्या है। ये भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे सरकारी नशा मुक्ति केंद्र हैं, जो जिले स्तर पर होते हैं। यहाँ पर मुफ्त इलाज, डॉक्टर द्वारा जांच, काउंसलिंग, जिसे आप लोग मानसिक सलाह के रूप में जानते हैं, जहां पर मुफ्त दवाइयां वे परिवार को मुफ्त सलाह भी दी जाती है। कुछ जगहों पर कुछ दिन रहने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। अब सवाल आता है कि वहां कैसे जाएं? इसके लिए आप अपने जिले के सरकारी अस्पताल जाएं, वहां पर आप पूछ सकते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र कहाँ है। वहां आप अपना आधार कार्ड या कोई भी पहचान पत्र साथ ले जाएं। डॉक्टर या काउंसलर से मिलकर वहां पर इलाज आपका शुरू किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि पूरे भारत में एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, जिसे 1446 के नाम से जानते हैं। ये सरकारी टोल फ्री नंबर है। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 1446, जिसे हमारी भाषा में हम बोल सकते हैं 1446। यहाँ से आपको आपके जिले के नशा मुक्ति केंद्र की जानकारी मिलती है, जहाँ इलाज, दवा और सलाह सब कुछ मुफ्त मिलता है। दूसरा, आपने मनरेगा योजना के बारे में सुना होगा। अब आप जानना चाहेंगे कि ये क्या है, मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ी विस्तृत जानकारी दे देती हूँ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम से इसे जाना जाता है, जिसमें ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन का काम मिलने की गारंटी दी जाती है। और इसमें किसे काम मिलता है वो भी मैं बता देती हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला वयस्क व्यक्ति, जिसमें पुरुष या महिला दोनों हो सकते हैं, नशा छोड़ने के बाद काम पाने का बेहतरीन साधन है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि काम कैसे मिलेगा। इसमें पहला स्टेप होता है, आपका एक कार्ड बनवाया जाएगा जो ग्राम पंचायत सरपंच के माध्यम से बनता है। उसके बाद वह सचिव के पास जाता है, जिसमें आपका आधार कार्ड और आपकी एक फोटो होती है। जब मनरेगा कार्ड बनता है, उसके बाद काम की मांग कर सकते हैं। आप पंचायत में जाके बोलिए कि मुझे मनरेगा में काम चाहिए। 15 दिन के अंदर काम देना अनिवार्य होता है। किस प्रकार के काम इसमें होते हैं, जैसे सड़क का निर्माण, तालाब की खुदाई, नाली या मिट्टी भराई, वृक्षारोपण, आपके आसपास के स्कूल या आंगनबाड़ी से जुड़े काम। मजदूरी का भुगतान सीधा आपके बैंक से खाते में आता है। श्रोता, ये सरकार के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं हैं, जो हम जानते हुए भी जिनका लाभ हम नहीं उठा पाते। तो श्रोता, मैं आशा करती हूँ आज की इस कहानी ने आपको जरूर जागरूक किया होगा। दोस्तों, इस विषय से जुड़े हुए आप अपने अनुभव हमसे जरूर साझा कीजिए।
5: इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओ, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और मुझे यानी कि प्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब खत्म होते हैं। एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण। तीसरी सभा में शाम 5:30 पर मीडियम वेव 262.67 मीटर डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर पर आपसे फिर मुलाकात होगी।

मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स, न्यूज ऑन AIR और DTH पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हुए हैं। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की तीसरी प्रसारण सभा। सभा 11 में प्रस्तुत है युवाओं के लिए दैनिक कार्यक्रम युवा संसार।

0: कार्यक्रम युवा संसार सुन रहे हमारे सभी साथियों को आपके साथी का प्यार भरा नमस्कार।
1: सभी साथियों को अंजलि का भी नमस्कार।
0: साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में आज हम बात करेंगे विश्व मधुमक्खी दिवस के बारे में। विश्व मधुमक्खी दिवस हर वर्ष 20 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को मधुमक्खियों के महत्व और उनके संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। मधुमक्खियाँ केवल शहद ही नहीं देती बल्कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मधुमक्खियाँ प्रांगण का कार्य करती हैं जिससे पेड़ पौधों, फसलों और फलों का विकास होता है। कृषि उत्पादन बढ़ाने में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। यदि मधुमक्खियाँ न हों तो कई प्रकार के फल, सब्जियाँ और अनाजों का उत्पादन प्रभावित होता है। इसीलिए उन्हें प्रकृति का महत्वपूर्ण जीव माना जाता है। मधुमक्खियाँ हमारे पर्यावरण और जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमें उनका संरक्षण करना चाहिए और ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे और आने वाली पीढ़ियाँ भी सुरक्षित वातावरण में जीवन जी सकें।
1: जी बिल्कुल विशाल, यह दिन आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक का को विकसित करने वाले एंटोन जानसा के जन्मदिवस पर उनके सम्मान में चुना गया था 20 मई का दिन। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण और मानवीय जीवन में मधुमक्खियों के योगदान के प्रति लोगों को जागरूक करना है। मधुमक्खियां हमारे पारिस्थितिक तंत्र की रीढ़ हैं। दुनिया की लगभग एक तिहाई फसलें प्रांगण के लिए मधुमक्खियों पर निर्भर करती हैं। मधुमक्खी पालन से शहद, मोम और रॉयल जेली जैसे उत्पाद मिलते हैं जो लाखों किसानों की आजीविका का साधन है। आधुनिक समय में मानव गतिविधियों के कारण मधुमक्खियों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। खेती में कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग, बढ़ता प्रदूषण, शहरीकरण के कारण जंगलों की कटाई और जलवायु परिवर्तन इनके घटने का मुख्य कारण है। यदि मधुमक्खियां विलुप्त हो गई तो मानव जाति के लिए भोजन का संकट खड़ा हो सकता है। विश्व मधुमक्खी दिवस हमें याद दिलाता है कि इन छोटे जीवों की रक्षा करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। हमें रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कम करना चाहिए और अपने बगीचे में फूलों वाले पौधे भी लगाने चाहिए। मधुमक्खियों को बचाना केवल पर्यावरण को बचाना नहीं बल्कि मानव जीवन के भविष्य को सुरक्षित करना है। तो इसी के साथ साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज बुधवार का दिन है और आज के दिन कार्यक्रम होता है करियर काउंसलिंग का। सुन लेते हैं यह पूर्व प्रसारित करियर काउंसलिंग। समाज शास्त्र के क्षेत्र में रोजगार के अवसर विशेषज्ञ हैं प्रिया गोयल, उनसे बातचीत कर रहे हैं गौरव चंद्र।
2: आज बुधवार का दिन करियर काउंसलिंग में हम एक विषय पर, रोजगार के अवसर जो हमारे युवाओं के लिए होते हैं, उन विषय पर बात करते हैं। आज हमारे साथ प्रिया गोयल जी बताएंगे कि समाजशास्त्र के क्षेत्र में रोजगार के क्या अवसर हो सकते हैं। नमस्कार प्रिया जी। सीधा समाज से जुड़ा होने का आज के दौर में इसका बड़ा महत्व है। मौजूदा दौर में इसकी तुलना MBA से की जाती है। इसमें रोजगार की अपार संभावनाएँ हैं। यह विषय न केवल साधारण बल्कि रोचक भी है। समाज के जीवन में अहम भूमिका है। इसी समाज के अध्ययन के विषय को समाजशास्त्र कहते हैं। जब ये युवा इसकी तैयारी समाजशास्त्र के क्षेत्र में जाने के लिए कब से शुरू कर देनी चाहिए तैयारी?
3: इस लाइन में जाने के लिए हमें 10th क्लास से भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। हमारे पास चूज करने का सब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने 11th क्लास से ये सब्जेक्ट चूज किया था
2: जी।
3: जब से मैं इसको कंटिन्यू स्टडी की है तो इसमें हम हर ईयर नया कुछ नया ही नया और नया सीखने को मिलता है
2: जी।
3: कि समाजशास्त्र में क्या होता है, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्या जॉब हमें मिल सकती है, अपने समाज को कैसे सुधार सकते हैं, अपने देश को कैसे सुधार सकते हैं, अपने देश के कानून को कैसे बदल सकते हैं, उन्हें कैसे पालन कर सकते हैं, ये सब चीजें समाजशास्त्र में आती है। समाजशास्त्र ना ही केवल समाज के थ्रू बल्कि इसमें एजुकेशन आ जाती है, इकोनॉमिक्स आ जाती है, लॉ आ जाती है, सब कुछ इसमें आ जाता है जिसके थ्रू हम अपना समाज और अपने देश को बेटर बना सकते हैं।
2: जैसे कि फिलॉसफी को अक्सर कहते हैं कि मदर ऑफ ऑल साइंसेज, समाजशास्त्र को हम साइंसेज ना लेकर आर्ट्स कहें, अगर मदर ऑफ ऑल आर्ट्स कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा।
3: नहीं।
2: तो अगर ये 12th पास कर जाता है कोई, आपको ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है, साथ साथ एक सब्जेक्ट होता है सोशल वर्क, आजकल इसकी तरफ बड़ा रुझान बढ़ रहा है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है?
3: इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सोशियोलॉजी में होता है कि हम सोशियोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं, और सोशल वर्क में होता है कि उसमें हम उसके साथ साथ सोशियोलॉजी के पढ़ने के साथ साथ उसे हम अपने करियर के तौर पे उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम समाजशास्त्र पढ़ते इस तरह होता है, इसमें ये होता है, हम उसको फिर जैसे कि सोशल वर्क में एजुकेशन को आगे अपनी एजुकेशन लाइन में ले सकते हैं। जैसे हम IAS की तैयारी कर सकते हैं, IPS की तैयारी कर सकते हैं, समाज सेवक की तैयारी कर सकते हैं, जैसे समाज सेवक होते हैं उसके थ्रू भी, वो भी एक जॉब लाइन अपोजिट नहीं है,
2: बिल्कुल,
3: उसमें हम किसी संस्था से जुड़ सकते हैं जिससे हम किसी गरीब बच्चों का या बुजुर्गों का
2: समाज सेवा से आपका औचित्य है कि NGO से, NGOs में आप जो है NGOs में काफ़ी संभावनाएं आजकल बढ़ रही हैं, और तमाम क्षेत्रों में NGO की महत्वपूर्ण भूमिका ही हो रही है, तो समाजशास्त्र में NGO में जाने के अवसर। तो कहाँ से, अगर एक बार 12th से युवा निकलता है स्कूल से, तो समाजशास्त्र के लिए एडमिशन लेने के लिए उसको कहाँ कहाँ वो एडमिशन ले सकता है, और जो है देश के प्रतिष्ठित संस्थान वे कौन कौन से हैं जहाँ पर इसमें अप्लाई करने का तरीका क्या है?
3: 12th के बाद हम BA में जाकर उसमें एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, सोशियोलॉजी। उसमें फिर हम ग्रेजुएशन पास करके पोस्ट ग्रेजुएशन जो कि MA होती है उसमें हम सोशियोलॉजी स्पेशल एक सब्जेक्ट होता है सिर्फ, जिस पे हम सिर्फ सोशियोलॉजी पे स्टडी कर सकते हैं
2: जी।
3: फिर उसके बाद हम नेट का एग्ज़ाम देके प्रोफेशनल लाइन में हम सोशियोलॉजी से तैयारी कर सकते हैं। MA तक सिर्फ हम स्कूल में सोशियोलॉजी के टीचर बन सकते हैं
2: जी।
3: पर नेट और उसके आगे प्रोफेसर की स्टडी पूरी करके हम एक लेक्चरर बन सकते हैं जिसके थ्रू हमें अच्छी जॉब और गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है
2: जी। तो जैसे अगर हम यहाँ से बात करते हैं कि जैसे ग्रेजुएशन कोई BA में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के एक सब्जेक्ट के तौर पे लेता है और वो BA करता है, उसके बाद वो BEd करके स्कूल लेवल टीचिंग में जो है TET वगैरह का एग्ज़ाम क्लियर करके स्कूल लेवल टीचिंग वो कर सकता है,
3: कर सकता है
2: और उसके बाद MA के बाद मास्टर्स के बाद वो नेट के एग्ज़ाम को, नेट में अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है?
3: नेट में वैसे हम करने के लिए ग्रेजुएशन के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन से पहले नहीं कर सकते, जैसे हम MA के साथ साथ नेट भी कर सकते हैं जिससे हमारा टाइम भी बचता है
2: जी।
3: और हमें अच्छी तैयारी हो जाती है क्योंकि नेट क्लियर करना आसान नहीं होता
2: जी, जी
3: उसको कम से कम अच्छे मार्क्स 90 से ऊपर मार्क्स चाहिए होते हैं
2: जी, जी। नेट के में जैसे PhD करने के लिए आप नेट के थ्रू PhD करते हैं, तो PhD करने के लिए मास्टर्स में कितने मिनिमम अंकों की आवश्यकता होती है कि जो है लोग अप्लाई कर सके नेट के लिए?
3: नेट के लिए 90% से ऊपर हो तो अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, अदरवाइज एडमिशन नहीं हो पाता।
2: नहीं, ये तो बात की जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम नेट है उसके लिए, लेकिन अगर नेट के लिए ही क्वालिफाई करना कि जैसे 60% अंकों के साथ या 55% अंकों के साथ ही अगर बच्चा शायद क्वालिफाई करता है, अगर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करता है उसके बाद ही वो नेट के लिए एलिजिबल होता है, तो फिर मास्टर इन सोशल वर्क ये सब्जेक्ट क्या है? मास्टर इन सोशल वर्क लोग करते हैं आज का, काफ़ी इसका चलन है, तो इसके बारे में ये भी सोशियोलॉजी से रिलेटेड ही कुछ फील्ड है। ये लोग जो है काउंसलिंग काउंसलर्स वगैरह हमेशा
3: सोशियोलॉजी के काउंसलर्स स्पेशल होते हैं,
2: स्पेशली काउंसलर्स होते हैं। NGO वगैरह में अप्लाई करने के लिए क्या क्या कैसे होता है?
3: NGO में अप्लाई करने के लिए पहले हमें समाजशास्त्र में एक अच्छी शिक्षा होनी चाहिए
2: जी,
3: मतलब उसको हमें समाजशास्त्र का सब कुछ पता होना चाहिए जिसके थ्रू हम समाजशास्त्र में मतलब अपने देश के कानून को खुद भी पालन कर सके, दूसरों को भी करवा सके, हम किस तरह दूसरों की मदद कर सकते हैं, किस तरह हम उनके लिए अच्छा कर सकते हैं, किस तरह हम उनकी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं, हमारे अंदर ये सब होना चाहिए पहले, तभी हम किसी NGO में पार्टनर बन पाएंगे।
2: अच्छा, जैसे MA के बाद प्रशासनिक सेवा या रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रवेश के लिए सोशल साइंस एक बहुत आपके कहने के अनुसार बहुत बेहतर विकल्प है, लेकिन आज के दौर में जब प्रोफेशनल स्टडीज इतनी हावी हो रही हैं, हर कोई प्रोफेशनल एजुकेशन लेकर अपनी रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाना चाहता है और उसमें कंपेरेटिवली कहते हैं कि जो है रोजगार की संभावनाएं ज़्यादा हैं, तो क्या सोशल वर्क में भी करने के बाद क्यों एक छात्र सोशियोलॉजी में एजुकेशन हासिल करे? क्या इतनी एम्पल अमाउंट ऑफ जॉब्स हैं मार्केट में कि जो है जो भीड़ है किसी भी विषय पर लेकर जो हर क्षेत्र में है, तो क्या एक युवा को प्रोत्साहित किया जा सकता है कि उसे सोशियोलॉजी लेनी चाहिए?
3: देखिए, अगर हम जॉब की बात करें तो सोशियोलॉजी में नहीं, सब लाइन में ये है कि जॉब मिलना बहुत मुश्किल
2: हो रहा है जी।
3: पर ये हमारी काबिलियत के भी ऊपर डिपेंड होता
2: जी,
3: है।
2: बिल्कुल,
3: अगर
2: बिल्कुल।
3: हमारे अंदर अच्छी काबिलियत है तो हमें उस भीड़ में भी सबसे पहला नंबर हमारा आएगा
2: जी, जी।
3: इसके चक्कर में हम कोशिश नहीं हार सकते
2: जी, बिल्कुल कोशिश नहीं हारना चाहिए, यही जीवन जीने का तरीका
3: हाँ।
2: है। और सोशियोलॉजी एक समाजशास्त्र जिसको कहते हैं, यह बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। अगर जॉब कर रहा है कोई तो मिनिमम आगे ग्रेजुएट स्टूडेंट
3: हाँ।
2: अगर मार्केट में जॉब के लिए जाता है तो कितने वानदे तक की उसकी जॉब जो है मिल सकती है?
3: देखिए ग्रेजुएशन के बाद तो मतलब जो युवक होता है वो फ्रेशर में आता है
2: जी जी
3: तो उनकी मतलब कम से कम सैलरी 3 से 4,000 होती है,
2: 3 से 4,000 जी।
3: तो और फिर वो हमारी कैचिंग पावर, हमारी काबिलियत इन पे डिपेंड करता है कि हम कितना कैच कर रहे हैं, कितना अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं और कितना हम अच्छा अपना बेस्ट दे रहे हैं
2: जी।
3: फिर हमारी सैलरी उसके अकॉर्डिंग बढ़ती है। 6 मंथ तक तो 4 या 6 मंथ तक तो हमारी सैलरी फ्रेशर में ही आती है
2: जी।
3: उसके बाद हमारी काबिलियत को देख कर सैलरी बढ़ाई जाती है।
2: और तुम इस सरकारी के साथ साथ निजी क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर
3: हाँ,
2: प्रचुर मात्रा में
3: हाँ,
2: उपलब्ध हैं?
3: बिल्कुल
2: जी। क्यों, अगर हम समाजशास्त्र की बात करें, क्यों खास है समाजशास्त्र?
3: देखिए अगर जिन लोगों में अपने देश से जुड़े रहने की इच्छा होती है वो समाजशास्त्र में जरूर जाता है क्योंकि समाजशास्त्र में ही रहकर लोगों को अपने देश की, अपने समाज के बारे में अच्छी जानकारी होती है क्योंकि उसमें पूरा हमारा चैप्टर इसी में ही आता है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या हुआ था, क्या हो सकता है और किस तरह हम उसे अच्छा कर सकते हैं। अगर हमें अपने देश को ऊपर करना है तो हमें पहले अपने देश की नींव को जानना जरूरी होगा जो समाजशास्त्र के थ्रू ही हो सकता है।
2: जैसे अंधविश्वास, डाउरी
3: हाँ,
2: और दहेज, हाँ, भ्रूण हत्या,
3: भ्रूण हत्या,
2: ये तमाम समाज में हमारी फैली
3: हाँ,
2: कुरीतियाँ हैं और जिनसे पार पाने में हम अभी तक बड़ी मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं, तो समाजशास्त्र इसमें अहम भूमिका निभाता है।
3: अहम भूमिका
2: हाँ, तो समाज का शास्त्र का स्टूडेंट वो कैसे समाज को सुधार सकता है, इसको बारे में बताइएगा।
3: देखिए समाज को सुधारने के लिए समाज के लोगों को ही सपोर्ट करना होगा। समाजशास्त्र सिर्फ बता सकता है कि ये गलत है, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको मानना लोगों के ऊपर डिपेंड है। अब लोग अगर ये देखे कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है तो अपना आप ही गलत सही सुधरेगा। समाज अच्छी एजुकेशन दे सकता है कि देखिए इस तरह करने से ये गलती होगी, जैसे कन्या हत्या है उससे करने से कितना नुकसान है अपने देश की जनसंख्या, मतलब अगर मैं अपने देश को आगे बढ़ाना है उसके लिए लड़कियां जरूर चाहिए। आजकल के टाइम में देखिए आधे से ज्यादा गोल्ड मेडल लेडीज गर्ल्स ही ला रही हैं
2: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो अगर हम उन्हीं की हत्या कर देंगे तो फिर हमारा देश का नाम कैसे होगा?
2: जी बिल्कुल, जीवन जो है दो पुरुष और स्त्री दोनों से ही चलता है। हाँ, तो बराबर दोनों का योगदान
3: होना चाहिए
2: सर्विस सोसाइटी में।
3: आज के टाइम में भी लड़कियां लड़कों से कम नहीं है।
2: अगर समाज में हम देखते हैं कि 50% लगभग 50% हिस्सा महिलाओं का है,
3: हाँ।
2: अगर वे 50% महिलाएं ही पीछे रह जाएंगी तो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हम समाजशास्त्र के एज अ करियर पहुंचते हैं, फिर से वापस आते हैं, तो क्या देश के साथ साथ विदेशों में भी इसके अवसर हैं?
3: विदेशों में भी इसके अवसर है क्योंकि जो लाइंस अपने देश में होती है वो विदेशों में भी होती
2: जी, बिल्कुल अवसर है
3: क्योंकि हर देश ये चाहता है कि उनकी आर्थिक स्थिति उनकी उच्च मतलब सबसे ऊपर हो, जिसके लिए समाजशास्त्र जरूरी है
2: जी।
3: अब वो ये मतलब विदेश में या किसी भी लाइन में ये नहीं देखा जाता कि अपने देश का है या दूसरे देश का है,
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
3: उनको सिर्फ एजुकेशन से मतलब होता है
2: जी, जी,
3: कि वो उनको कितना बेस्ट दे सकता
2: जी,
3: है।
2: जैसे देश में भी हमारे देश में भी तमाम संयुक्त राष्ट्र की तमाम संस्थाएं हैं जो हमारे देश में काम करती हैं, यूनाइटेड नेशन की, जैसे यूनिसेफ, रेड क्रॉस, WHO, ये सारी संस्थाएं हैं। इनमें भी शायद समाजशास्त्र को एज अ सब्जेक्ट को लेकर काफी रोजगार के अवसर मौजूद है। तो प्रिया जी, आप आए हमारे युवाओं को, आपने समाजशास्त्र के पे रोजगार के अवसर और समाजशास्त्र में एजुकेशन क्यों लेना चाहिए इसके लिए प्रोत्साहित किया, धन्यवाद।
1: साथियों, अभी आपने सुनी यह पूर्व प्रसारित करियर काउंसलिंग समाजशास्त्र के क्षेत्र में रोजगार के अवसर। विशेषज्ञ थी प्रिया गोयल, उनसे बातचीत कर रहे थे गौरव चंद्र।
0: इसी के साथ साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवा देते हैं गीत। फिल्म बॉर्डर से गीत है, गाया है रूप कुमार राठौर ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने, लिखा है जावेद अख्तर ने। आइए साथियों सुनते हैं गीत।

0: साथियों, अभी आपने सुना ये गीत फिल्म बॉर्डर से, जिसे गाया था रूप कुमार राठौर ने। गीतकार थे जावेद अख्तर, संगीत दिया था अनु मलिक ने।
1: साथियों, कार्यक्रम में अब हम बात करेंगे सुमित्रा नंदन पंत जयंती के बारे में। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे। उनका जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कोसानी नामक स्थान पर हुआ था। वे छायावाद युग के चार प्रमुख कवियों में से एक थे। उनकी कविताओं में प्रकृति, सौंदर्य, मानवता और देश प्रेम का सुंदर चित्रण मिलता है। हर वर्ष 20 मई को उनकी जयंती मनाई जाती है। सुमित्रा नंदन पंत बचपन से ही एक प्रकृति प्रेमी थे। हिमाचल की सुंदर वादियों और प्राकृतिक वातावरण का उनकी रचनाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी भाषाओं सरल, मधुर और भावपूर्ण थी। उनकी हिंदी कविताओं को नई ऊंचाइयां दी और उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। उनकी जयंती हमें उनके आदर्शों और साहित्यिक योगदान को स्मरण करने का अवसर देती है।
0: जी बिल्कुल विशाल, पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में भी प्रसिद्ध थे। वे हिंदी साहित्य के छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक थे। हिंदी साहित्य के क्षितिज पर जिन कवियों ने अपनी प्रतिभा की अमिट छाप छोड़ी, उनमें से सुमित्रा नंदन पंत का स्थान सर्वोपरि है। उनकी कविताओं में प्रकृति, प्रेम, सौंदर्य और मानवीय संवेदनाओं का अद्भुत संगम देखने को मिलता था। उनकी भाषा शैली अत्यंत कोमल, भावपूर्वक और संगीतमय थी। सुमित्रा नंदन पंत अपनी लिखनी से ही हिंदी साहित्य को समृद्ध कर देते थे। उनकी प्रमुख रचनाओं में से जैसे पल्लवन, गुंजन, वीणा, युगवाणी, ग्राम्य और चिदंबरा शामिल है। उनकी काल जय कृति चिदंबरा के लिए उन्हें प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया। उनके काव्य में एक ओर जहां कोमल भाव हैं, वहीं दूसरी ओर सामाजिक यथार्थ और परिवर्तन की गूंज भी है। सुमित्रा नंदन पंत की जयंती हमें उनकी उत्कृष्ट रचनाओं को याद करने और उनके द्वारा लिखे गए साहित्य एवं मानवीय मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा देती है। इसी के साथ साथियों, सुन लेते हैं एक गीत फिल्म यस बॉस से, जिसे गाया है अभिजीत ने, गीतकार है जावेद अख्तर, संगीत दिया है जतिन ललित ने।

0: साथियों, अभी आपने सुना ये गीत फिल्म यस बॉस से, जिसे गाया था अभिजीत ने। गीतकार थे जावेद अख्तर, संगीत दिया था जतिन ललित ने।
1: साथियों, अब समय हो गया चलने का, फिर से मिलते हैं किसी अन्य कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे युवा संसार कार्यक्रम आकाशवाणी का। ये रोहतक केंद्र है, शाम की 6 बजने को है। अब हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
2: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। AI, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर

0: काम कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानने में के मामले में एकजुट हैं। सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली जोंग चुल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षा काइंड एक्स पहल की क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर भी चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र को एकजुट करने का एक सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरी टीम के परिणाम पर भी निर्भर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। 6:05 और 9 सेकंड हुए हैं स्टूडियो की घड़ी के अनुसार। आइए आपको दे दें कार्यक्रम रूपरेखा।

कार्यक्रम रूपरेखा में पहले जान लीजिए आज के शेष कार्यक्रम चर्चा का विषय। यह कार्यक्रम आप सुन पाएंगे रात्रि 9:30 पर, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। शाम 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में भेंटवार्ता एक किसान से क्रम में 7:00 ग्रामीण संसार में सुनिएगा बालक मंडली फोन इन कार्यक्रम। सुगम संगीत कार्यक्रम प्रसारित होगा रात्रि 8:25 पर। फिल्म संगीत सुनिएगा शाम 7:30। मनचाहे गीत कार्यक्रम लेकर आएंगे रात्रि 10:00, जो कि रहेगा आप श्रोताओं के खतों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत कार्यक्रम। एक फिल्म से कार्यक्रम होगा रात्रि 9:15 पर। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। आज के शेष कार्यक्रम आपने जानिए, और अब आपको बता दें कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। कंट्री वाइड यह कार्यक्रम सुनिएगा कल रात 9:30 पर। 9:45 पर इनसाइट्स कार्यक्रम प्रसारित होगा। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। साप्ताहिक समाचार समीक्षा 6:30 पर तीसरी सभा में आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले की जाएगी। शाम 5:30 युवा संसार में मेरी पसंद विशेष कार्यक्रम होगा। जिसमें मेहमान होंगी सीरा शेरावत। अलावा इसके निष्ठा बंसल की वार्ता का विषय रहेगा विश्व संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता। प्रातः 7:15 पर अंग्रेजी वार्ता का विषय होगा उदय भानु हंस द ब्राइट सन ऑफ लिटरेचर। वार्ताकार श्री करतार सिंह जाकर।

0: दोपहर 12:30 पर दूसरी सभा में NCERT प्रायोजित कार्यक्रम सुना जा सकता है। 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में तीसरी सभा में डॉक्टर राजपाल से बातचीत का विषय होगा उर्वरकों का समुचित प्रबंधन। 7:00 ग्रामीण संसार में डॉक्टर परितीव से बातचीत आप सुन पाएंगे, टीकाकरण कब, क्यों और कैसे। खेत खलिहान कार्यक्रम सुनिएगा दोपहर 2:30 पर, जिसमें चर्चा होगी बेल वाली सब्जी फसलों की देखभाल। 7:25 पर आप सुनेंगे सुबह सवेरे कार्यक्रम, जो कि रहेगा समसामयिक चर्चा के साथ फिल्म संगीत पर आधारित। सुगम संगीत कार्यक्रम लेकर आएंगे रात्रि 8:25 पर। हेलो रोहतक, फरमाइशी फिल्म संगीत का यह फोन इन कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:00। रात 10:00 मन चाहे गीत कार्यक्रम, चित्रपट संगीत सुना जा सकता है दोपहर 1:10 पर। रात्रि 7:30 आप सुनेंगे फिल्म संगीत, एक फिल्म से कार्यक्रम होगा रात 9:15 पर। लोक संगीत प्रातः 8:30, कलाकार संतोष नागिया। ये था कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। 6:10 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले होंगे।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना।
2: नमस्कार,
1: हेलो,
2: आप कहाँ हैं? यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 30 किसानों के खातों में भावांतर भरपाई योजना के तहत 1,02,00,000 रुपए की राशि जारी की। मुख्यमंत्री ने विश्व मधुमक्खी दिवस पर 11 प्रगतिशील मधुमक्खी पालकों को 11,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति देकर सम्मानित किया। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अंबाला में प्रदर्शन कर रहे बिजली कर्मचारियों को उनकी जायज मांगे मानने का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भीषण लू की स्थिति को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को आज खारिज कर दिया। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्रित करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज 30 किसानों के खातों में भावांतर भरपाई योजना के तहत 1,02,00,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि

0: मुख्यमंत्री ने कहा कि मधुमक्खी पालकों को अनिश्चितता और बाजार के उतार चढ़ाव से राहत दिलाते हुए हरियाणा सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन को भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया है।
1: हरियाणा सरकार लगातार किसान को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मजबूत कर रही है। कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसकी भी ई क्षतिपूर्ति के माध्यम से भरपाई करने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। और इसी प्रकार से हमारा सब्जी का किसान, अगर उसको बाजार में दाम कम मिलते हैं तो उस घाटे की भी भरपाई करने का काम सरकार करती है। हमने 16 अगस्त 2025 को पंचकुला की भूमि पर यह घोषणा की थी कि हरियाणा सरकार मधुमक्खी पालक किसान को भी इस भावांतर भरपाई योजना के साथ जोड़ने का काम करेगी। विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर उसका लाभ आप तक पहुंचेगा।
0: उन्होंने कहा कि इसके अलावा मधुमक्खी पालकों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए मधुमक्खी पालन को मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मधुमक्खी पालन को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मधुमक्खी पालन नीति के तहत वर्ष 2030 तक मधुमक्खी पालकों की संख्या बढ़ाकर 7,750 करने और शहद उत्पादन 15,500 मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा गया है। मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी के बॉक्स, कॉलोनियों और उपकरणों पर 85% तक अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मधुमक्खी पालन को व्यावसायिक ढंग से चलाने में सहयोग करने के लिए कुरुक्षेत्र के रामनगर में इजराइल की तकनीक पर आधारित देश का पहला एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र स्थापित किया गया है। इस केंद्र में किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें शहद व्यापार केंद्र भी स्थापित किया गया है। इस केंद्र पर लगभग 800 टन शहद का व्यापार हो चुका है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय मधुक्रांति पोर्टल पर हरियाणा के 3,000 से अधिक मधुमक्खी पालक रजिस्टर्ड हैं। मधुमक्खी पालकों के रजिस्ट्रेशन करवाने में हरियाणा राज्य प्रथम स्थान पर है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए मधुमक्खी पालकों द्वारा शहद और शहद से बने उत्पादों के स्टॉल का अवलोकन किया। इससे पूर्व हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने शहद उत्पादकों को भावांतर भरपाई योजना का लाभ देने को लेकर कहा,
2: कुछ महीने पहले हमारे मुख्यमंत्री जी के पास ये साथी आए थे और उनकी एक दिक्कत थी, वो भी दूर कर दी। तो क्योंकि MSP तय कर दिया और उससे कम बिकेगा तो भावांतर मिलेगा। वैसे ये योजना हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है पूरे देश में जिसमें सबसे ज्यादा किसानों की मदद करता है।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने आज राज्य के श्रमिकों एवं श्रम नियुक्तियों को आधुनिक डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए श्रम मित्र ऐप का शुभारंभ किया। श्री विज ने बताया कि ये ऐप डिजिटल क्रांति के तहत विकसित किया गया एक अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म है जो श्रमिकों और नियुक्ताओं के बीच सीधा, पारदर्शी और त्वरित संपर्क स्थापित करेगा। ये ऐप हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी तीन भाषाओं में संचालित किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक श्रमिक एवं नियोक्ता सरलता से इसका लाभ उठा सके। श्री विज ने कहा कि श्रम मित्र ऐप दैनिक रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के रूप में कार्य करेगा और आने वाले समय में पारंपरिक लेबर चौक व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। श्रमिकों को काम की तलाश में घंटों लेबर चौक पर खड़ा रहने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वे घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से रोजगार के अवसरों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज अंबाला में प्रदर्शन कर रहे बिजली कर्मचारियों को उनकी जायज मांगे मानने का आश्वासन दिया। श्री अनिल विज उनके पास खुद ज्ञापन लेने पहुंचे और कर्मचारियों ने मंच से ऊर्जा मंत्री के हक में नारे लगाए। मीडिया से बातचीत में श्री अनिल विज ने कहा,
3: तो मुख्य बातें रखी एक एक्सक्रेशिया की थी, उसमें कहा कि 5 साथी काम करते हुए अपनी जिंदगी दे दी, लेकिन उनको एक्सक्रेशिया इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि एक्सक्रेशिया की कंडीशन है 5 साल। तो मैं कोशिश करूंगा कि 5 को घटा

0: श्री विज ने कहा कि उनकी मांगों को पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। कुछ को पूरा करने के लिए वे काम शुरू कर चुके हैं और कुछ को पूरा करने के लिए वे और जोर लगाएंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के आह्वान पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में रोष मार्च निकाला। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम पर एक ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा गया। कांग्रेस ने जींद में भी आज इन्हीं मुद्दों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह मौजूद रहे। मौसम विज्ञान विभाग ने नई दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के चंडीगढ़ केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि आने वाले दिनों में थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, लेकिन अभी लू का चलना जारी रहेगा।
1: जो लू की स्थिति बनी हुई है ये कंटिन्यू करेगी, खासकर जो है वेस्टर्न पार्ट पंजाब, हरियाणा और पंजाब के बाकी क्षेत्रों में कंटिन्यू करेगी। और टेम्परेचर जो है वो 46.9 रोहतक में, हरियाणा में हाईएस्ट है, फरीदकोट में 47 डिग्री सेल्सियस। ये जो है साउथ वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है पंजाब के, यहाँ पे लू की स्थिति है और ऑरेंज अलर्ट अगले 48 घंटे के लिए। इसके बाद कुछ इसमें कमी आ सकती है कुछ, क्योंकि कुछ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का, कुछ विंडी वेदर का चांसेस लग रहा है कल के बाद, उससे स्थिति में सुधार आएगा। हो सकता है कि बीच बीच में आज और कल भी कुछ जो है हल्का सा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी एक दो जगह पे पंजाब में हो।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 30 किसानों के खातों में भावांतर भरपाई योजना के तहत 1.2 करोड़ रुपए की राशि जारी की। मुख्यमंत्री ने विश्व मधुमक्खी दिवस पर 11 प्रगतिशील मधुमक्खी पालकों को 11,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 262.4 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज, न्यूज जोन AIR और DTH पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। समय मिलाइए, स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 6:20 और 20 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਜਗਤ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਣ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਾਈਓ। ਦੇਖੋ ਗਰਮੀ ਕਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਔਰ ਗਰਮੀ ਕੇ ਮੌਸਮ ਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਹਮ ਆਪਣੀ ਜੋ ਫਸਲ ਹੈ ਉਨਕਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਂ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਪਰ ਯੇ ਕਹਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਹਮਾਰੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਨਕੋ ਗਰਮੀ ਸੇ ਬਚਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਜੋ ਸਿੰਚਾਈ ਹੈ ਵੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਬ ਦਿਨ ਮੇਂ ਯੇ ਸਮਝ ਲਓ ਬਈ 10 ਵਜੇ ਸੇ ਲੇਕੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਲਗਭਗ 4-5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਰਹਿ ਹੈ ਤੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰ ਹਮਨੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਫਸਲ ਕੋ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਜੋ ਹਮਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਨਕੀ ਬਾਤ ਹਮ ਕਰੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਫਸਲੋਂ ਕੀ ਜੈਸੇ ਹਮ ਜੋ ਬੇਲ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਿੰਡੀ ਕੀ ਫਸਲ ਜਿਨ ਭਾਈਆਂ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੋ ਭਲੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਹਮਨੇ ਡੋਲੀ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਹਮ ਡੋਲੀ ਹਮ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਲ ਲੈਂ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਲੈ ਤੋ ਦਿਨ ਮੇਂ ਤੋ ਸਬਜ਼ੀ ਕੀ ਫਸਲ ਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦਿਨ ਮੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹਮਨੇ 9-10 ਵਜੇ ਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਉਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਲ ਦਿਆ ਔਰ ਵੋ ਦਿਨ ਮੇਂ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਫਿਰ ਜੋ ਜੜ ਹੈ ਜੜੋਂ ਕੇ ਪਾਸ ਮੇਂ ਜੋ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਖੜਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੋ ਫਿਰ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ ਫਸਲ ਹੈ ਵੋ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਚਾਹੇ ਵੋ ਹਮ ਭਿੰਡੀ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇਂ ਟਮਾਟਰ ਕੀ ਮਿਰਚ ਬੈਂਗਣ ਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰੇਂ ਸਬਜ਼ੀ ਫਸਲੋਂ ਕੀ ਉਸਮੇਂ ਜੋ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵੋ ਰਹਿਤੇ ਹੀ ਜੋ ਉਨਕੀ ਜੜ ਹੈ ਵੋ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਵੀ ਹਮਨੇ ਅਲਕੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨੀ ਪੜੇਗੀ। ਅਲਕੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰੇਂ ਯੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਮੰਨ ਲਓ ਹਮਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰ ਦੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹਮਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨੀ ਪੜੇਗੀ ਯੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀ। ਅਲਕੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਤਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਉਨਕੀ ਜੜ ਹੈ ਵਹਾਂ ਤੱਕ ਉਨਕੀ ਅੱਛੇ ਸੇ ਨਮੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰਵੇ ਇਸ ਬਾਤ ਕਾ ਹਮਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਜੋ ਬਾਤ ਹਮ ਕਰੇਂ ਜੋ ਚਾਰੇ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਨਮੇਂ ਵੀ ਹਮ ਪਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੇਂ ਕਿ ਬਈ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਣੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ 2-2.5 ਵਜੇ ਵੀ ਉਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੋ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਇਤਨੇ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਓਗਾ ਇਤਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਕਾ ਸਮੇਂ ਹੈ ਵੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਫਸਲ ਉਸਮੇਂ ਕਿਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮ ਦਿਨ ਮੇਂ ਵੀ ਹਮਨੇ ਬਾਤ ਕਰੀ ਤੀ ਬਈ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਹੈ ਉਸਕੋ ਲੂ ਸੇ ਬਚਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਔਰ ਅਬ ਫਿਰ ਭਈਆ ਤੋ ਯੇ ਬਾਤ ਕਰੇਂ ਬਈ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਹੈ ਉਸਕੋ ਗਰਮੀ ਸੇ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਦਿ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਭੈਂਸ ਹੈ ਤੋ ਉਨਕੋ ਹਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਂ ਕਿ ਬਈ ਤਾਲਾਬ ਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਅੱਧ ਘੰਟਾ ਲੁਟਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਔਰ ਵੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪਰ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਮੇਂ ਤੋ ਵੈਸੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੋ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਪਰ ਸੇ ਫਿਰ ਧੁੱਪ ਪੜੇ ਤੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਸ਼ੂ ਕੋ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੋ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਬਲਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਬਾਤ ਆਵੇ ਹੈ ਉਨਕੇ ਆਵਾਸ ਕੀ ਜਹਾਂ ਪਰ ਹਮ ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਠਾਣ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਹਮ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋ ਬੰਨਦੇ ਹੈ ਤੋ ਉਸਮੇਂ ਬਈਓ ਯੇ ਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜੈਸੇ ਪਸ਼ੂ ਪੇਸ਼ਾਬ ਕਰੇ ਹੈ ਤੋ ਉਸ ਤੇ ਉਸਕੋ ਹਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੇ ਜੋ ਉਮਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਵੋ ਪਸ਼ੂ ਕੋ ਦਿੱਕਤ ਕਰੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਕੋ ਹਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਬਾੜੇ ਮੰਨ ਨਾ ਬੰਨਦੇ ਅਗਵੇ ਜਹਾਂ ਹਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਵੀ ਹਮਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਕੋ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਹਮ ਬਾਂਧ ਰਹੇ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਸਿੱਧੀ ਲੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਏ ਸਿੱਧੀ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਏ ਤੋ ਇਨ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੜੇਗਾ। ਔਰ ਸਭਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੋ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਈ ਉਹ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮਨੇ ਪਸ਼ੂ ਕੋ ਪਾਣੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 4-5 ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਲਾਉਣਾ ਪੜੇਗਾ। ਸੁਬਹ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹਮ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਮ 8-9 ਵਜੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵਾਂ ਫਿਰ 1 ਵਜੇ ਹੀ ਪਿਲਾਵਾਂ ਫਿਰ 4-5 ਵਜੇ ਪਿਲਾਵਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਸੋਤੇ ਵਕਤ 9-10 ਵਜੇ ਹਮ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਪਿਲਾਵਾਂ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਂ ਕਿ ਜੈਸੇ ਭੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਏ ਹੈ ਉਨਕੋ ਹਮ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਮੇਂ ਜਿਨ ਭਾਈਆਂ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਥ ਮੇਂ ਕਈ ਬਾਈ ਤੋਂ ਜੋ ਖੋਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨਮੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਤੋ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਮੇਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਜੋ ਬਰਤਨ ਹੈ ਰੱਖਦੇ ਜਿਸ ਮੇਂ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਪਿਆਸ ਲਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਰਹੇ ਔਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਕਾ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾ ਤੋ ਉਸਕੋ ਹਮ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਦਲਤੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਵੋ ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੌਸਮ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਜੋ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਪੀਂਦਾ ਰਹੇ ਇਸ ਬਾਤ ਕਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਹੈ ਵੋ ਬਹੁਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਮੇਂ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ ਦੇਖੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੀ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹਮਾਰਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਹੈ वो नई नई जो तकनीक है, नए नए जो तरीके हैं खेती के हैं, बाड़ी के हैं, या जो भी मान लो पशुपालन के हैं, सहायक धंधों के हैं, उनकी तरफ भी जो हमारे किसान भाई हैं जो पढ़े लिखे हैं उनका ध्यान बहुत कुछ रव है। और उसमें एक जो हम बात करें एक औषधि के रूप में कर लें चाहे क्या के रूप में कर लें, एक कीड़ा जड़ी नाम की एक जड़ो है, बहुत काफ़ी महंगी वो है। उसके बारे में एक किसान भाई आए थे नवीन सिंधु जी, तो उनसे बातचीत करी थी, काफ़ी पुरानी बातचीत है भाइयों, तो ये सुनो। और जो भी किसान भाई करना चाहे इस तरह की जो खेती है, क्योंकि ये एक बंद कमरे में होने वाली खेती है, तो उसने भी बहुत कुछ हम लाभ कमा सके हैं, तो भाई सुने ये भेंटवार्ता एक किसान से नवीन सिंधु के साथ।
1: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
2: भेंट वार्ता एक किसान से। भाई इस कार्यक्रम में आज बात करांगे नवीन सिंधु, एक प्रगतिशील किसान हैं जो आए हैं गांव कोतकला हिसार तक, और आप काम कर रहे हैं मशरूम में, और मशरूम में भी वो प्रजाति आपने चुनी है जो गिनी चुनी है, जिसकी हम बात करांगे आज, नाम है उसका कीड़ा जड़ी। तो नवीन भाई, सबसे पहले तो आप स्टूडियो में आए इस खातर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: आपका भी थैंक यू सर।
2: तो सबसे पहले इसमें नवीन भाई, हम यूँ जानना चाहोगे कि यह जो कीड़ा जड़ी मशरूम है, देखो ये वहाँ मशरूम में नाम सुना करते हैं अपने, मिल्की मशरूम है, ओस्टर है, या फिर अपने जो बटर मशरूम है, सबसे ज़्यादा जो हम इस्तेमाल करा।
3: हाँ जी।
2: तो कीड़ा जड़ी का जो एक विचार है वो कितने, मतलब एक आइडिया आपने इसमें पकड़ा?
3: एक्चुअली विनोद जी, क्या है कि मैं पहले लंदन में था बाहर,
2: अच्छा,
3: होटल मैनेजमेंट करके वहीं जॉब कर रहा था। तो वहाँ एक मेरा फ्रेंड था, वो उसको खाता था
2: कीड़ा जड़ी को।
3: हाँ। तो जैसे भाई है मेरा, छोटा भाई है जो बहुत कुछ अलग काम करने के का इच्छुक था,
2: अच्छा,
3: शुरू से ही। तो पहले वो दूसरी तीन चीज़ों में वो कर रहा था, कोशिश कर रहा था, बट कामयाबी नहीं मिल पा रही थी उसको।
2: हाँ।
3: फिर मैंने उसको एक दिन बताया, भाई एक बहुत महंगी वैरायटी है मशरूम की,
2: अच्छा,
3: जिसके मेडिकल फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं।
2: सही बात।
3: तो उसको कर, उसको करेगा तो रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि आपको पता है अपने यहाँ जो नॉर्मल है, पढ़ाई करी भाई नौकरी नहीं कर रहा। तो मैंने इसके थोड़े और रिसर्च करी उसके ऊपर वहाँ बैठ के,
2: मतलब जितना भी
3: छानबीन कर सकता था मैंने उतनी करके मैंने भाई को बताया, भाई ऐसे ऐसे एक कोडिसेप्स मिल्ट्रीज कीड़ा जड़ी नाम से एक मशरूम है, जिस जो कि बहुत,
2: हाँ जी,
3: कोडिसेप्स मिल्ट्रीज है,
2: ठीक
3: है, जिसके बहुत सारे ह्यूमन बॉडी पे फायदे होते हैं अपने शरीर के ऊपर, जैसे शुगर, कैंसर, एड्स, काफ़ी सारी चीज़ों में ये रिलीव करता है हमारे शरीर को। तो मैं उसका उसकी खेती करने की सोच, जिसे क्या होगा कि एक तो इंडिया में उस टाइम किसी ने किया नहीं हुआ था, ये बिल्कुल नई किस्म की एक खेती थी, मैं थोड़ा एक टेक्निकल खेती है, तो मैं क्या, अच्छा, तेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से सही, क्यों भाई ने भी एम टेक किया हुआ था, तो मैं उसके हिसाब से बहुत बढ़िया है। तो भाई ने फिर,
2: तो
3: मैंने
2: मतलब
3: उसको
2: इसी खेती है जिस खेती खातर हमने खेत की भाई बनू देखा, हमारी जो आजकल जोत है खेत में वह कम होने लग रही है कोई, तो इस खातर सिर्फ हमने खेत की जरूरत भी नहीं है।
3: हाँ जी।
2: तो जो अपने लैब है या अपने घर में भी हम इसने शुरू कर सका।
3: हाँ, बड़े इजीली कर सकते हो, इसीलिए मैंने रिकमेंड किया था भाई को ये।
2: हाँ।
3: क्योंकि क्या था ना विनोद जी, कि ये लगा लो आप कोई भी फसल आज कर रहे हैं, आपने देख ही रखा किसानों का हाल क्या हो रहा है, हर एक चीज़ में हमें लगभग नाकामयाबी मिल जाती है। कल को जैसे कोई हम करते हैं फसल नहीं, ठीक है जी, तो उसमें प्रॉपर तरीके से हम नहीं कर पाते, कामयाब नहीं हो पाते,
2: अच्छा,
3: कभी दवाइयाँ पेस्टिसाइड छिड़कने पड़ते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो हम घर में रह के भी कर सकते हैं, क्योंकि शहर में रहने वाला गांव में नहीं जा सकते।
2: बहुत
3: तो,
2: फर्क है।
3: हाँ जी। तो एक छोटे से कमरे में 10x10 के कमरे से हम इसको शुरू कर सकते हैं,
2: अच्छा,
3: और इसमें ज़्यादा बजट भी नहीं आता, ज़्यादा बड़ी लागत नहीं आती इसमें करने के लिए, कोई भी किसान भाई कर सकता है। एक सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें कोई ज़्यादा पढ़ा लिखे होने की भी जरूरत नहीं है।
2: अच्छा, इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ज़्यादा पढ़े लिखे अगर आप हैं,
3: नॉर्मल बंदा भी इसको कर सकता है, रॉकेट साइंस नहीं है ये कोई।
2: अच्छा।
3: बस इसकी एक विधि है, उस विधि को हम अपना जैसे कंसल्टेंसी भी देते हैं इसकी, उस विधि को हम सिखा देते हैं।
2: अच्छा, जो किसान भाई हैं जो अपना हरियाणा से हैं या हरियाणा से बाहर गए हैं, उनने भी मतलब आप इसमें कोई अगर ट्रेनिंग लेना चाहो या फिर कोई जानकारी लेना चाहो आप, तो वो आप आपके द्वारा मिल जाए इसमें?
3: हाँ जी, हम बल्कि हर साल कैंप लगाते हैं किसानों के लिए, फ्री कैंप भी लगाए हमने पिछले साल, 2 से 3 कैंप लगे थे हमारे।
2: अच्छा।
3: जिसके अंदर 100 से 200 किसान आए थे, ज्वाइन किया, वो आज अच्छे लेवल पे काम भी कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पे। तो किसानों के लिए मतलब उसको हम फ्री कर देते हैं टोटली। वैसे हमारी कंसल्टेंसी फीस हम लेते हैं सबसे, बट किसानों के लिए हमने टोटली फ्री किया था।
2: बहुत बढ़िया बात है आपकी। अच्छा, एक चीज़ और थी, देखो खासतौर पर मशरूम में हम देखे हैं कि भाई स्पान जो बीज जिसने कह दे हैं,
3: हाँ जी,
2: उड़े तो आम पैदावार ले हैं, तो इसमें कीड़ा जड़ी में भी कुछ ऐसा है या इस खातर कुछ और चीज़ हमने अपनानी पड़ा है?
3: नहीं जी, कीड़ा जड़ी के अंदर भी स्पाम यूज़ होता है, बट जो ये स्पाम आप जो कह रहे हो इसमें कल्चर बोलते हैं इसको, ये जो ये कल्चर है ये हम बाहर से एक्सपोर्ट करवाते हैं इसको। अच्छा। थाईलैंड से ही मंगवाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि इसको बनाते हैं वो लोग, ये मदर कल्चर हम वहाँ से मंगवाते हैं अपना।
2: ठीक है।
3: जिससे क्या है कि यहाँ पे जब हम फसल लेते हैं तो मदर कल्चर से, एक मदर से मदर ही होती है वो कल्चर।
2: हाँ।
3: तो अगर हम फसल लेके उसका कल्चर बनाएंगे तो सेकंड क्रॉप हो जाएगी, सेकंड जनरेशन वो चला जाएगा,
2: सेकंड जनरेशन।
3: तो इसलिए क्या है कि हम हर 6 से 7 महीने में अपनी बाहर से स्ट्रेन मंगवा लेते हैं इसकी,
2: मतलब जो गुणवत्ता है वह गुणवत्ता अगर हमने एक भैयाड़े ले लिए और फिर उसमें हम उसमें उसका बीज बनाए हैं या उसका स्ट्रेन बनाओगे, तो उसके बाद जो वह दूसरी किस्म हम उसमें ले होंगे तो उसमें जो उसकी गुणवत्ता है उसमें फर्क पड़ जाएगा।
3: हाँ जी, वो कम हो जाएगा। और क्या है कि जो अपने से ट्रेनिंग लेके जाते हैं, और जैसे अब 6-7 महीने बाद हम उनको मदर कल्चर ही देते हैं।
2: हाँ।
3: ट्रेनिंग में जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है उनको।
2: अच्छा।
3: ठीक है जी, जब वो उसको यूज़ करते हैं तो उसको हम उनको सिखा देते हैं भाई बीज से आप कैसे बीज बनाओगे, तो जब वो बीज मदर कल्चर से मदर कल्चर को कन्वर्ट करते हैं ना जी।
2: हाँ।
3: तो फिर उनका ख़राब नहीं होता।
2: अच्छा।
3: तो वो आगे के आगे उसको अपने फ्रिज के अंदर सेव करके रख सकते हैं।
2: या जो ट्रेनिंग दे हो आप, या कई दिन की ट्रेनिंग उड़ा?
3: ये जी 2 दिन की ट्रेनिंग चलती है जी अपनी।
2: अच्छा, उस 2 दिन में वो सीख गया है कि?
3: हाँ जी, 2 दिन में हम क्या करते हैं कि लैब के अंदर पूरा प्रैक्टिकल कराते हैं। और अभी तो क्या है कि कोरोना चल रहा है, तो इसलिए हम 5 बंदों से ज़्यादा का बैच भी नहीं बनाते।
2: अच्छा।
3: मैं उससे कम ही रखते हैं ताकि ना तो लैब में भीड़ हो।
2: हाँ।
3: क्योंकि इसको खराब, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है अपनी।
2: अच्छा।
3: जो मान लो कि हाथ लगान दे, एक तितली है।
2: हाँ।
3: हाथ लगान दे जो अगर पंख नहीं छोड़ दिया कर दी।
2: हाँ।
3: उसी हिसाब से अगर इसके अंदर आप जावांगे तो ये खराब हो जाएगा अपना सारा का सारा।
2: अच्छा, एक और इसमें बार बार जिक्र भी आवा कि भाई लैब में इसने तैयार करा, तो लैब में तैयार करने खातर तो सबसे पहले तो हमने लैब तैयार करनी पड़ेगी।
3: हाँ जी।
2: उस लैब ने भी तैयार करा है तो कितनी जगह उस खातर चाहिए, कौन कौन सी मशीन उसमें आ जाए हैं, या किस प्रकार की मात्र जगह होनी चाहिए
3: इसका? आप जी एक 10x10 के रूम में बड़ा इजीली काम शुरू कर सकते हो।
2: हाँ।
3: जिसमें क्या है कि करीबन इसकी जो लागत शुरू होती है वो 2 लाख रुपये से ले गए आपकी 3-4 लाख रुपए में बहुत बढ़िया लैब लग जाती है।
2: मतलब 2 से 4 लाख तक की जो इन्वेस्टमेंट है, जो हमने पूंजी इसमें लानी है, वो हमारे द्वारा होनी चाहिए।
3: हाँ जी,
2: जब जाएगा हम इसमें अपने लैब तैयार।
3: हाँ जी, क्योंकि अभी क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से इस पे कोई सब्सिडी नहीं आई।
2: अच्छा।
3: बट जिस दिन भी इसके ऊपर कीड़ा जड़ी पे के ऊपर सब्सिडी आएगी ना।
2: हाँ।
3: जिन जिन लोगों ने लैब लगा रखी है उनको तो मिलेगी वो।
2: हाँ।
3: क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का रोल रहता है, जिन्होंने लगा रखा है उन सबको वो जरूर देती है।
2: ठीक बात।
3: जैसे बटन में है, बटन में शुरू में नहीं मिलती थी।
2: हाँ।
3: अब पिछले 4 से 5 सालों में बटन में पूरी सब्सिडी दे रही है।
2: हाँ,
3: गवर्नमेंट पूरी हेल्प कर रही है।
2: बिल्कुल।
3: तो उसी हिसाब से क्या है कि एक तो ये नई चीज आई है अपने इंडिया में।
2: हाँ।
3: दूसरा क्या है, मेडिकल मशरूम है, इसलिए लोग थोड़ा इससे पीछे हट जाते हैं। भाई मेडिकल है, इसके लिए हमें कभी लाइसेंस लेने पड़े मेडिकल के। अच्छा। ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसान हो,
2: मतलब खेती है।
3: हाँ जी, ये किसान है हम, एक ये भी एक मशरूम की प्रजाति है।
2: मतलब खेती करने का थोड़ा तरीका बदल गया।
3: हाँ,
2: वह खेती हम अपने खेत में करें हैं, और या एक लैब कह लो या फिर जो
3: एक घर में लगा लो अपना
2: कमरा बनाया है उसके भीतर कर।
3: हाँ जी, अब किसान ने ट्रैक्टर भी खरीदना पड़ता है सारी। हाँ। चीज इसी हिसाब से इसके अंदर अपने को ऑटोक्लेव लेमिनार होगी, रोटेटर शेकर हो गया अपना, ठीक है जी, अपना ऑटोक्लेव हो गया।
2: अच्छा, ये मशीन है जो लैब में हमने लानी पड़ेगी।
3: लाइट होगी, एक जनरेटर हो गया।
2: हाँ।
3: ये सारा करीबन 4-1 लाख रुपए में सारा सामान आ जाएगा अपना।
2: इसमें जनरेटर भी हमने रखना पड़ेगा।
3: हाँ, जनरेटर भी, क्योंकि लाइट चली जाएगी तो लाइट चाहिए होती है अपने को। इसमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है ना।
2: अच्छा।
3: एसी भी लगाना पड़ता है, एक अपने को एसी की जरूरत होती है। तो हम एक छोटे से बजट के ऊपर अपना एक ही बार, इसमें क्या है कि ये ऐसी फसल है जो साल में आप 4 बार ले सकते हो। इस पे कोई मौसम का प्रभाव नहीं है, बार बारिश आए, धूप आए, कुछ भी आए, तो कोई भी किसान अगर इसको करेगा तो अपने सफलता प्राप्ति करेगा इसमें। दूसरा है कि लोग कहते हैं भाई मार्केटिंग की बड़ी इसमें समस्या आती है।
2: हाँ।
3: तो ऐसा है जी, कोई भी चीज़ हम करते हैं उसमें समस्या तो हर चीज़ में आती है।
2: सही बात है।
3: ठीक है,
2: बिल्कुल। जो परंपरागत खेती है अपने गेहूँ धान या और जो इसमें बागवानी की है, इन तक का कुछ भी कर ले तो उसमें मार्केटिंग तो बहुत जरूरी है।
3: हाँ जी, हर एक चीज में जरूरी है,
2: हमें करनी पड़ेगी, खुद करनी।
3: अब इसमें क्या है कि जी आप साल के अंदर 4 फसल आ रही है।
2: हाँ।
3: मैं सारे किसान भाइयों को एक के बाद कहना चाहूंगा कि आप 4 फसल ना लेके 2 फसल लो, पहले 3 महीने इसकी फसल लो, अगले 3 महीने उसको बेचने में लगाओ, फिर इसकी फसल लो, फिर बेचने में लगाओ टाइम, आपका सारा का सारा माल बिक जाएगा। हमने भी ऐसे ही शुरुआत करी थी अपनी, जब भाई ने कहा भाई ये ओके तैयार होगा अब कैसे करें, फिर हमने शुगर पेशेंट्स को दिया, एक दो डॉक्टर्स हैं हाँ। जिनसे बात करी, वो भी खरीदना शुरू कर दिया। आज के टाइम में क्या है कि जी आज से 4 साल पहले और 4 साल बाद बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। पहले लोगों को बताना पड़ता था, अब उल्टे फ़ोन आते हैं हाँ। बोला भाई साहब कीड़ा जड़ी चाहिए बच्चे को खेलने के लिए, कि जो बच्चे खेल रहे हैं हाँ। उनके लिए बहुत बढ़िया है,
2: चाहे स्पोर्ट्स में जो बच्चे
3: स्पोर्ट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा बेटर चीज़ है जी। ये आप बच्चे प्रोटीन वगैरह खाते हैं उनके साइड इफेक्ट हो जाते हैं बाद में, किसी को सूट नहीं करता। ये एक ऐसी चीज़ है जी अगर आपको फायदा नहीं देके जाएगी तो नुकसान नहीं,
2: नुकसान भी नहीं करेगी।
3: तो इसलिए हम इसको रिकमेंड कर देते हैं कि आप खिलाड़ी प्रोटीन की जगह इसको खाओ। 5-6 हज़ार रुपये का प्रोटीन पड़ता है, 5-6 हज़ार रुपये की एक महीने में बड़ा इजीली आप खा सकते हो, पूरे महीने की खुराक आ जाती है इसकी।
2: तो मतलब जो भी किसान भाई अगर अपना विचार कर रहा है कि भाई कीड़ा जड़ी का मैंने काम शुरू करना है, तो सबसे पहले यहाँ तो भाई वो अपना हिस्सा है जो इसमें 2-4 लाख रुपये वो इन्वेस्टमेंट करेगा, वह करने से पहले अगर वो मार्केटिंग कर ले इसकी, देख ले थोड़ा सा
3: हाँ जी
2: कि भाई जो उसका क्षेत्र है उसमें ये कितनी इसने बेच सका है कितनी, और फिर बाद में जब उसकी ट्रेनिंग हो है तो उसमें कुछ आप भी सहायता करो हो उसके बारे में कि भाई वो संपर्क कित स्थापित इसमें कर सके।
3: ऐसा है जी गाइड हम पूरा करते हैं अपना, जैसे दुबई सिंगापुर वगैरह जाता है माल।
2: अच्छा तो, मतलब एक्सपोर्ट भी
3: एक्सपोर्ट करते हैं हम
2: हाँ।
3: जिस टाइम हमारा माल एक्सपोर्ट होता है जो किसान भाई लगाते हैं उनकी हम हेल्प करते हैं, बट वादा किसी को नहीं करते क्या, क्योंकि जी किसी भी टाइम ऑर्डर आ सकता है, जरूरी नहीं आपके पास माल तैयार है,
2: बट
3: जिसके पास माल तैयार होगा हमारा स्ट्रेन जिसने यूज किया होगा उससे हम जरूर खरीदते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनसे हम खरीद चुके हैं।
2: और फिर उसमें एक चीज और भी आ जाए इसमें नवीन भाई कि ये आपने स्ट्रेन दे दिया उसका, वो किसी और का स्टेन भी ले जाएगा उसमें इस्तेमाल करके और उसने बना लिया, उसमें गुणवत्ता भी कम हो जाए है
3: हाँ जी,
2: या फिर जो भाव है इसके वो भी ऊपर नीचे होते होंगे कई बार।
3: बहुत कुछ चीज़ है जी, अपने कोई भी चीज़ आप शुरू कर लेते हैं ना जी
2: हाँ।
3: उसमें क्या कि बंदे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर बंदा अगर ये खराब होने लग जाती है तो हमसे सवाल पूछते हैं जी अगर ये खराब होने लगी तो इसने रोका हूँ कर जी
2: हाँ।
3: कईयों ने कहा जी इसमें यूरिया मिला दे, मैं कहा जी देखो हमने तो यूरिया नाम की चीज़ से ही नफरत है।
2: सही बात है,
3: ठीक है जी
2: उस तो नफरत है जब इस चीज़ खातिर काम
3: आप इसके अंदर भी मिला दोगे तो क्या फायदा, मैं भाई खराब हो रही है तो ओण दे उसना ओण दे जितनी खराब होगी, दूसरा बैच निकाल दे भैया नू तो है को नहीं कि 10 साल बाद आओगी दोबारा, 3 महीने बाद तारी दोबारा आ जाएगी। उसने किसी के अंदर अगर आप इसमें यूरिया मिला देते हैं हाँ। किसी को साइड इफेक्ट हो गया हाँ। तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा भाई।
2: सही
3: तो एक जो मशरूम है ठीक है आप नॉर्मल करो, अब बाहर की कंट्रियों में क्या है कि इसको एज ए चाय के रूप में पीते हैं लोग।
2: अच्छा चाय की तरह इस्तेमाल,
3: इसको पीने का तरीका यही है कि आप रात को इसको उबाड़ो ठीक है जी, सुबह खाली पेट इसको पिए, इसके बहुत चमत्कारी मतलब के गुण है इसमें,
2: मतलब जो खाली पानी हाँ, है
3: 1000 से ऊपर भी ऊपर हमारे शरीर को बेनिफिट देती हैं चीज़ें, इतने सारे गुण है इसके।
2: 1000 तो ऊपर की बात तो इसमें अनुमान चला है, तकरीबन सारी बीमारी इसमें
3: हाँ जी हाँ जी।
2: अच्छा पीने का जो तरीका था आपने बताया कि शाम ने इसने पानी में भेजे या उबाला इसने पानी में,
3: रात को 20 मिनट मंदी आँच करके 2 गिलास पानी में 1 ग्राम इसी डालो, इसको 20 मिनट उबालो मंदी आंच पे
2: हाँ।
3: उबालने के बाद उसको पूरी रात ढक के रख दो
2: हाँ।
3: सुबह उठते ही खाली पेट इसको पियो, कोई भी बीमारी हो इसी तरीके से पियोगे। अभी फिलहाल क्या है जी कोरोना काल पिछले 1 साल में जितना हमने बेचा होगा ना पूरे लगा लो 4 सालों में नहीं बेचा, क्योंकि अब लोगों को पता लगने लग गया। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने लगा लो कि कोरोना के अंदर इसको रिकमेंड किया है ठीक
2: हाँ।
3: है जी कोरोना में इसको रिकमेंड किया है, उन्होंने खाया खुद, औरों को नहीं कि भाई औरों को कह दिया, खुद खाया उन्होंने इसको, जिसके बहुत बढ़िया रिजल्ट, क्यों इससे ऊपर इम्यून बूस्टर कोई नहीं है,
2: मतलब शरीर के अंदर जो ताकत है हाँ। इम्यूनिटी जो बढ़ानी है वो तो इसमें काम करे
3: हाँ जी बहुत ज़्यादा, और हमारे पास खूब ऑर्डर आए हैं जी। पहले ये था कि भाई इतनी महंगी खाएंगे कैसे, इतनी महंगी नहीं है जी, आप तो 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये इन चीज़ को नहीं खानी
2: हाँ।
3: आपने 100 ग्राम चीज़ खानी है यार, 100 ग्राम हमारे बजट में आ जाती है
2: आ जाए सही बात।
3: तो लोगों के लोग इसलिए इसके पास नहीं जाते। दूसरी सबसे ज़्यादा कि भाई 1 लाख की चीज़ है, जैसे कोई भी किसान भीतर गुनगुनाया करता कि भाई बहुत ज़्यादा महंगा उसका है, क्यों एक झिझक रहा करती कि भाई अंदर जावांगे हम तो प्रॉब्लम आ जाएगी कि बड़ा महंगा हो आप ना ले सके, बट उन जब अंदर गए तो उन्होंने देखा कि यार ये तो जमा सड़क वाले भी सस्ता देने लग रहे हैं सामान कई
2: हाँ।
3: ऐसी ऐसी चीज है जो बहुत सस्ती दे देती है।
2: देखी वो सारी चीज
3: धीरे धीरे, क्यों बच्चे यंग होने लग गए, जो बच्चे थे कॉलेज जाने लगे वो एक के साथ दूसरा जाने लग गया, तो उसी हिसाब से अब धीरे धीरे क्या है कि जी लोग खाना शुरू कर गए, जिनके असर हो गए, जैसे पिछले 4 सालों में हमने बहुत सारे लोगों की दिया उनका असर है, उन्होंने और बताया, 2 ने 4 थी बताया, 4 ने 6 थी, अब 6 में से कोई 2 बंदे तो लेना आएंगे,
2: एक दूसरे जिसका राम लग गया उसने फिर हाँ बता दिया उसने आकर,
3: क्योंकि
2: इससे हिसाब से इसमें बहुत फर्क है
3: हाँ। इसमें दूसरा क्या है कि जी ये लगा लो शुगर पेशेंट वगैरह कोई हो गए, जैसे शुगर वगैरह के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है
2: हाँ।
3: एक लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा है कि भाई लंग्स में किसी को प्रॉब्लम हो ना उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदा करती है। एक आदमी जब ठीक हो गया वो आपके पास दोबारा क्यों आओगा, लोग कहते हैं जी वो बंदा दोबारा क्यों नहीं आया, मगर भाई ठीक होने के बाद कोई नहीं आता, दोबारा आओगा चाहे वो लाना लेके आओगा मगर ना उलाना लेके आया ना वो लेना आया, तो मतलब इसका मतलब वो ठीक हो गया, वो किसी और बंदा ना जरूर भेजेगा,
2: जरूर भेजेगा। और एक चीज और भी है, स्पोर्ट्स वाले हैं या फिर और बताया आपने ये बात, जो ठीक हो गया लेकिन फिर भी आदमी शरीर ने सोचा है कि भाई शरीर के अंदर अपना गुंजाइश बनी रहे और खा ले, तो वो फिर भी लेना जाए, ऐसी बात नहीं है।
3: खिलाड़ी 6 महीने तक खा लेते हैं, उनके एक बार बार फोन भी आते हैं, भाई हमारे गेम होने हैं, जब गेम शुरू होते हैं ना उनसे पहले खिलाड़ी खाना शुरू करते हैं।
2: अच्छा,
3: ठीक है जी, उसको उनको बहुत ज़्यादा फायदा, क्यों, एक्सरसाइज जो करता है ना उसको बेनिफिट होता है। बाकी हम सबको 100 ग्राम ही रिकमेंड करते हैं, एक साल आपके लिए 1 साल में 100 ग्राम इनफ है, उससे ज्यादा अपनी बॉडी की जरूरत नहीं है।
2: 1 ग्राम आपने रोज की बताई तो 100 ग्राम वो 100 दिन में, मतलब
3: 100 दिन हो गया, 3 महीने
2: की आप तकरीबन ना मेट दे,
3: 90 दिन की अपने लगा लो। कोई आयुर्वेद का एक रूल है कि कोई भी होता है अपना कोर्स हो गया ना, एक तो रात को उबाल के सुबह, ये भी हमने आयुर्वेद के उससे लिया था कि भाई इसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट है, जो इसका अंदर फायदे हैं, वो सारे पानी में आ लेंगे,
2: पानी में आ जाएंगे।
3: और पानी में क्या होता है कि पानी किसी को नुकसान नहीं देता, कोई भी चीज़।
2: सही बात,
3: वैसे तो ये साइड इफेक्ट फ्री है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फिर भी पानी में किसी भी बंदे को नुकसान नहीं होता।
2: सुने भी है कि भाई सुबह उठ कर अपने लड़नावासी है, कुरड़ा भी ना करो, पहले पानी पियो, बहुत बढ़िया शरीर के लिए फायदेमंद रहा। अच्छा, एक चीज़ और इसमारी थी, देखो लैब है, ये बहुत से भाई सोचे हैं कि भाई लैब लगानी है, खर्चा भी हमने इसमें बता दिया, तो उसमें जो मशीन आऊँगी वो मशीन भी, वो चलो ठीक है, ट्रेनिंग में आप लोग भी बता दो इसमें, और लेकिन कुछ सहायता, इब हम बात करें इसमें जो ऋण है, इसी भी कुछ सहायता इसमें हो जाए सरकार की तरफ से या फिर किसी और भाइया की तरफ से, कुछ सुविधा है इसी।
3: देखो जी, ऐसा है कि सरकार का तो मैंने अभी आपको बताया ही है, कि भाई सरकार अभी क्या कि नया प्रोजेक्ट, किसी नए प्रोजेक्ट को अपनाने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस में होके जाना पड़ता है जी। ठीक है, ऐसा है नहीं कि कोई नई चीज़ आ गई आज उसके ऊपर हो गया। जैसे इस पे सब्सिडी मिलेगी, अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इस पे सब्सिडी देना शुरू कर दिया है।
2: अच्छा।
3: ठीक है जी, हम भी एक दो जगह गए हैं, ट्राई किया है, तो उन्होंने कहा जी हम इसमें कुछ कर रहे हैं अभी। ठीक है, धीरे धीरे ही होगा, ऐसा नहीं है कि एकदम हो जाएगा। बटन मशरूम को 15 साल हो गए शुरू हुए हुए, अब जाके अपने को करीबन सब्सिडी मिलनी शुरू हुई है। ठीक है जी, तो उसी हिसाब से कि इस पे भी आने वाले टाइम में सब्सिडी होगी।
2: अच्छा।
3: बाकी क्या है कि हम हेल्प करवाते हैं एक दो

0: हैं जो कि मशीनों पे लोन करवा के दे देते हैं।
1: बहुत
0: हम
1: बढ़िया।
0: हाँ वेंडर हैं हमारे पास एक दो ऐसे
1: हाँ
0: जिनका बहुत पुराना काम है,
1: मतलब
0: जो
1: जो
0: कि
1: किसान
0: मशीन
1: भाई हैं, अगर
0: हाँ
1: एक
0: उनको
1: भाई
0: लोन करवा के दे देंगे, वो खुद ही लोन प्रोवाइड कर देंगे, बट वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होगा, एज ए प्राइवेट
1: वो
0: लोन की
1: प्राइवेट लोन
0: हाँ,
1: होगा।
0: बट ये क्या उसमें ब्याज दर कम ही रहेगी औरों के
1: हाँ
0: मुकाबले।
1: मतलब अगर एक
0: हाँ
1: भी सालाना नहीं है और कोई भाई अगर करने का इच्छुक है तो उसकी भी सहायता
0: हाँ
1: इसमें
0: जी, हम
1: जरूर हो
0: उनके
1: जाएगी।
0: नंबर प्रोवाइड कर देंगे उनको, डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मशीन वालों के भी हम नंबर सीधे देते हैं कि भाई आप सीधी जाके बात करो
1: तो इसके बारे में अगर कोई किसान भाई जानकारी लेना चाहो तो वो किस तरीके आप तक जुड़ सका है?
0: जी। हमारे मोबाइल नंबर हैं, अपना एड्रेस है,
1: हाँ
0: जैसे
1: मोबाइल
0: कोतकला,
1: नंबर आप बताओ एक बार।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 9 6 7 1 7 1 4
1: सात एक चार
0: 9 6 3 8 6।
1: 3 8 4।
0: हाँ जी
1: नाम है आपका नवीन
0: हाँ
1: सिद्धू।
0: जी, 6 है जी, ये 4 नहीं।
1: अच्छा लास्ट में 6 है,
0: हाँ जी
1: एक बार फिर बता दें भैया ने। 9 6 7 1 4 9 6 3 8 6। अच्छा अब इसमें एक चीज़ और पूछ रहे थे, ये तो ठीक है बात होगी कि भाई इसमें आपने मशीन भी ले ली, ये भी लगा लिया, तो जो वो भाई ट्रेनिंग करे हैं, ट्रेनिंग करे पाछा ये जो मदर कल्चर आप दो हो, तो उसमें वो कितनी कीड़ा जड़ी उसमें बायोगैस का है,
0: हम
1: कितना की
0: जी
1: उसमें सहायता
0: दो
1: हो जाती
0: मदर
1: है?
0: कल्चर प्रोवाइड करते हैं उसको, देते हैं उनको,
1: हाँ
0: जिससे हम उनको क्या कहते हैं कि एक से तो आप फसल ले लो और दूसरे को आप मल्टीप्लाई कर लो, मतलब इसकी और
1: और
0: ज़्यादा
1: बढ़ा
0: बढ़ा के अपने
1: गया
0: पास रख
1: बीज
0: लो।
1: दूसरा अपना
0: हाँ
1: तैयार करना है
0: जो
1: तो
0: कि
1: वो
0: तीन से
1: इसमें
0: छः
1: तैयार कर
0: महीने
1: लें।
0: उसकी लाइफ होती है, वो ख़राब नहीं होता। 3 से 6 महीने से पहले आप दोबारा उसके बना लो तो वो आगे बढ़ जाएंगे, तो पुराने वाले उनको निकाल दो, ठीक है जी। इस हिसाब से उत्तर जो दूसरी स्ट्रेन होगी उससे आप लगा लो लगभग 3 से 4 किलो तक कीड़ा जड़ी ले सकते हो।
1: लेस का तो बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी नवीन सिंधु जी इसमें कीड़ा जड़ी के बारे में, और आप स्टूडियो में आए तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: तो भैया ने देखो ये तो बातचीत तो थी ये काफ़ी पुरानी, क्योंकि कोरोना काल के समय की थी, लेकिन इसमें जो जानकारी दी नवीन सिंधु भाई ने वो बहुत अच्छी और बढ़िया दी, और उसी के हिसाब से जो हमारे किसान भाई हैं वो इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, और बहुत इसकी जो कीमत है एक किसान को बहुत अच्छी बढ़िया मिला है। तो भाई अपना जो नई हम खेती कर रहे हैं उसका पहले तजुर्बा ले लें, उसकी ट्रेनिंग ले लें, उसके बाद फिर वही कोई का हम चालू करें ताकि इसमें नुकसान ना बने, क्योंकि ये जो महंगी चीज़ें हैं, जो जड़ी बूटी संबंधी चीज़ें हैं, ये सारी के सारी थोड़ी महंगी हैं, लेकिन जब हम इसकी पहले ट्रेनिंग लेने के बिना यदि इस काम को शुरू करेंगे तो फिर उसमें हमारा नुकसान भी हो जाएगा, इसलिए ज़रूरी है कि वह पहले ट्रेनिंग ले, उसके बाद फिर इस काम को हम शुरू करें। तो ये तो सुनी भैया ने भेंट वार्ता किसान से, और ईब सुनेंगे एक रागनी मास्टर सतबीर बैंसवड़िया और उनके साथियों की गाई हुई।
5: वीर बांधकन धीर

रहती अनुकूल क्रियावान स्त्री हो से जो धन दौलत की होती मूल क्रियावान स्त्री हो से बात में थकान दोती दुख दर्दान दूर करे पति के समान होती।

Şehit Dalı Bey!

0: तो भैया यशवनी रागनी मास्टर सतबीर भैंसवाली और उनके साथियों की गाई हुई। भैया देखो, ईब हमारे पास एक मौका है और मौका इस चीज़ का है कि भाई हम अपने जो खेत हैं उनकी गहरी जुताई करें, और गहरी जुताई के साथ साथ ईब हमारे पास एक चीज़ का ये भी मौका है, हम मिट्टी और पानी की जांच करवा लें। मिट्टी और पानी की जांच का किसान भाइयों बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है ये कहना पड़ेगा, क्योंकि इससे हमारी जो ज़मीन है उसकी तासीर का हमने बेड़ा लग गया है। और जब हमने अपनी ज़मीन की तासीर का, भाई किस पोषक तत्वों की ज़्यादा कमी है, हम उसका पैसे लगाएं। लेकिन कई बार के है कि जो हम नहीं मिट्टी की जांच करवाते, उसमें हमारे खेत के अंदर वो पोषक तत्व पड़े हुए हैं जिनको हम बार बार डाल रहे हैं, जिन पर हम पैसा खर्च कर रहे हैं। और ये बात जो पानी है उसकी, यदि हम पानी की जांच करवा लें तो उस तो हमने ये पता लग जाए, मान लो किसी कारण से पानी ख़राब भी बता दिया, तो वो पानी किस विधि से कम नुकसान करेगा, जैसे जिप्सम डालना है या कोई और चीज़ डालनी है, तो इस चीज़ का भी फर्क लग जाए। और जब ज़्यादा मान लो ख़राब पानी होगा और वो हम बार बार देते रहे तो फिर हमारी ज़मीन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देगा। और कई बार तो ऐसा भी देखने में आया है कि एक या दो बार जहाँ सिंचाई कर दी खराब पानी की, आगे वहाँ बीज जमना भी मुश्किल हो गया। तो इसलिए भाइयों हम कोशिश करें कि भाई अपना जो मिट्टी का और पानी की जो जांच है वो ज़रूर करवाएं, और बिल्कुल निःशुल्क हुआ है, उपमंडल स्तर पर हुआ है। इसमें क्या करना है कि जैसे मिट्टी की हम जाँच करवाना चाह रहे हैं, जिसकी लग की हमने करवानी है, उसके हम पाँच चार जगह से नमूने ले लें। नमूना किस तरीके से लेना है कि जैसे पाँच चार जगह से मिट्टी ली, हम कस्सी ले गए खेत में और उधर से भी मार दी कस्सी और उधर से भी मार दी, वी आकार में जो मिट्टी हमने मिली उसको हम एक जगह पर इकट्ठी कर ले, पाँच चार जगह से ले गए, और फिर उसमें तो आधी किलो मिट्टी हम ले जाकर और लैब में दे दें। पानी जो हमने ले जाना है वो ले जाना, भाई जब एक डेढ़ घंटा ट्यूबवेल हमारा चलता ना ले, उस समय पर हमने पानी ले जाना है, साफ़ सुथरी बोतल में ले जाना है। उसमें किसी प्रकार की जो दूसरी महक है या बदबू है या किसी प्रकार की भी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, साफ़ सुथरी बोतल होनी चाहिए। दोनों चीज़ों का हम कराएंगे तो जो मिट्टी का और पानी का तालमेल का है उसका हमने पता लग जाएगा, हमारे खेत में जो पोषक तत्व हैं उनका बेड़ा लग जाएगा, उनका हम पैसे नहीं लगाओगे, कमी होगी तो उसको हम डाल लेंगे और हमारी फसल है वो बढ़िया होगी, बिल्कुल मुफ्त हो। किसान भाई इस मौके ना चूकें, और भाई देखो ज़रूर कराओ इस बात। ये बता दें, कुछ भैया ने जो बाज़ार भाव आ रहे हैं उनका बारे में, गेहूं का जो बाज़ार भाव है रोहतक में है 2510, पानीपत में 2575, गुड़गांव में 2575, नरवाना में 2585। चने का जो भाव है रोहतक में 6300, पानीपत में 6600, गुड़गांव में 6800, नरवाना में 6600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। सरसों के भाव की बात करें तो रोहतक में 6250, पानीपत में 6075, और गुड़गांव में नरवाना में 6800 रुपये प्रति क्विंटल। और मूंग की बात करें तो रोहतक में 9700, पानीपत में 9800, गुड़गांव में 9900, नरवाना में 9800 रुपये प्रति क्विंटल। प्याज के भाव की बात करें तो रोहतक में 1400, पानीपत में 1600, गुड़गांव में 1500, नरवाना में भी 1500 रुपये प्रति क्विंटल। ये कुछ बाज़ार भाव थे। और जो भी किसान भाई, देखो जो काम जिस समय पर करने का है उस समय पर हम करेंगे तो उसका हमने विशेष फायदा मिलेगा। तो ईब जो कृषि जगत कार्यक्रम है भाइयों, इसने आड़े समेटे हैं। ईब थोड़ी ही देर में आप कार्यक्रम सुनेंगे ग्रामीण संसार, आकाशवाणी का रोहतक केंद्र, भाई कार्यक्रम सुनेंगे ग्रामीण संसार। और भाइयों ग्रामीण संसार में आज कार्यक्रम है बच्चों का फ़ोन इन कार्यक्रम है, और बच्चे इसमें अपना फ़ोन करें और अपनी जो भी उन्होंने तैयारी करी है उसके बारे में ज़रूर बताएं और सुनाएं। तो फ़ोन लेना शुरू करते हैं। तो बच्चे हैं वो, उनको पहले फ़ोन नंबर बता दें, 012-62 रोहतक का एसटीडी कोड है, 255-446, 255-447, 255-448, ये तीन फोन लाइन हैं जो काम करेंगी। हेलो, हाँ जी,
1: हेलो,
0: हाँ जी, हेलो, हाँ बोलो जी,
1: मैं गोपी राम बोल रहा हूँ साहब।
0: हाँ जी, बच्चे से बात करा दो।
1: बच्चा से बात कराऊंगा साहब, एक मेरी रिक्वेस्ट है।
0: हाँ
1: मैं यहाँ का कलाकार हूँ,
0: हाँ
1: या और पीएन की पोस्ट पर भी रहा था साहब।
0: ऐसा गोपीराम जी, देखो ये विषय अब ये यहाँ रखने का नहीं है, क्योंकि बच्चों का प्रोग्राम है।
1: साहब जी बस बात सुनो,
0: हाँ
1: मेरा कोई तो ना तो रिकॉर्डिंग लग रही ना कोई वो हो रहा, 13 साल।
0: चलो बच्चा हो तो आपके पास बात कराओ।
1: ना साहब भाई बात।
0: हेलो हेलो, देखो भाई कोई भी जो भाई है हमारा श्रोता है या कोई भी आदमी है, इस समय पर सिर्फ बच्चों से सिवाया बात ना करें, क्योंकि ये बच्चों का एक स्पेशल प्रोग्राम है और बुधवार वाले दिन है। हेलो
2: हेलो अंकल।
0: हाँ नाम बताओ भाई।
2: नमस्ते अंकल।
0: नमस्ते नमस्ते, नाम बताओ भाई पहले।
2: आर्यन मलिक।
0: आर्यन मलिक कहाँ से बोल रहे हैं आर्यन मलिक भाई?
2: उमरा से।
0: उमरा से, हाँ क्या सुनाएगा भाई आर्यन? हाँ
2: कविता।
0: कविता सुना भाई।
2: जागो जागो आसमान में छाई लाली, कितनी सुनहरी कितनी निराली, हटा दे रा किरणों ने धरती को घेरा, अब जागो जागो। धन्यवाद।
0: बहुत बढ़िया भाई आर्यन, बहुत अच्छी तैयारी करी, थोड़ी ही और तैयारी कराया कर, और नई नई जो कविता है उनकी तैयारी कराया कर, ठीक है ना? ठीक है, धन्यवाद। हेलो हेलो, तो जो बच्चे हैं वो अपना फोन करें कार्यक्रम में। हेलो हेलो
2: दादाजी नमस्ते।
0: हाँ नमस्ते भाई, नाम बताओ।
2: वीर।
0: वीर क्या सुनाएगा भाई?
2: कविता।
0: कविता सुनाओ भाई।
2: ए, ए, वो।
0: हाँ कोई नहीं, आराम से सुनाओ।
2: ए,

0: जब उसकी खिल्ली रोने लग गई बिल्ली, फिर आया शेर चिल्ली, चुप करवाई उसने बिल्ली।
1: वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई, वाह
0: भाई, मेरे भाई से बात कर
1: भाई, करा दे फिर।
0: हेलो
1: हेलो, नाम बताओ भाई।
0: भविष्य।
1: भविष्य क्या सुनाएगा भाई भविष्य आज?
0: एक था भालू काला काला।
1: हाँ सुना भाई।
0: एक था भालू काला काला, लंबे लंबे बालों कालू, उसका नाम था शेर टकरा खान था। एक दिन उसने देखा छत्ता मारा, पत्थर तोड़ा छत्ता, मधुमक्खी भी थी और शेर नाक में घुस गई ले तलवार। भालू भागा दुम दुमा कर, चैन मिली पानी में जाकर। थैंक यू दादाजी।
1: वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, अच्छी तैयारी है। अगला फोन लेते हैं। हेलो हेलो हेलो हेलो। तो जो बच्चे हैं भाई, देखो गर्मी का मौसम है और गर्मी से बचाव बहुत ज़रूरी है। और बच्चों देखो, जो कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, जो आपकी जो प्रस्तुति है वो बहुत अच्छी है। हेलो
2: हेलो।
1: हाँ नाम बताओ भाई।
2: अंकल जी नमस्ते, मेरा नाम विधि है।
1: क्या नाम बताया?
2: मेरा नाम विधि है।
1: विधि, विधि क्या सुनाएगी विधि आज?
2: अंकल मैं पोयम सुनाऊंगी।
1: पोयम सुनाओ भाई।
2: गर्मी पर कविता।
1: देखो गर्मी है भी,
2: आते हैं हमको बहुत सताते हैं, कहाँ खेलने जाए हम, तेज धूप में निकले दम, खेल का मैदान गरम, लू को आती नहीं शर्म, कहीं चैन न पाते हम, मन ही मन झुझलाते हम। धन्यवाद।
1: वाह भाई विधि, बहुत अच्छी कविता सुनाई विधि ने। हेलो हेलो
3: हेलो लो जी नमस्कार। नमस्कार से बात करियो जी।
1: नमस्कार जी, कराओ बच्चे से बात।
3: हेलो
1: हेलो। हाँ नाम बताओ भी पहले
3: आप। जी
1: हाँ नमस्ते भाई, नाम बताओ एक बार पहले अपना।
3: मेरा नाम आरती है, मैं गांव दाणी मिट्टी से बोल रही हूँ, श्री शिवराम जी की पोस्टिंग।
1: अच्छा आरती। हाँ क्या सुनाएगी आज आरती?
3: मैं आज पोएम सुनाना चाहती हूँ।
1: हाँ कोई नहीं, आराम आराम से सुनाओ, सबको समझ में आए, आराम आराम से सुनाओ, बोलो।
3: मुसीबतें आए चाहे दुखों का पहाड़ टूटे, डाल ठान लो मन में कुछ करके दिखाने का जज्बा, तो समुन्द्र की लहरें न तुम्हें रोक पाएंगी, पहाड़ों की ऊंचाइयां छोटी नजर आएंगी, हिम्मत कर बढ़ते रहो अपनी मंजिल की ओर, मंजिल भी चलकर तुम्हारे पास आएंगी, तुम हो हिम्मती और ऊर्जावान, निज को तू जान, शक्ति को पहचान, पहाड़ों को भी तू समतल बना सकते हो, नदियों के प्रवाह को तुम घुमा सकते हो, यदि जज्बा हो फौलादी मन में तुम्हारे तो आकाश में भी सीढ़ी लगा सकते हो, तुम हो महान और बड़े बलशाली, है मानव की बुद्धि सबसे निराली, चांद पर भी आशियाना बना सकते हो, वहां जीने का सपना सजा सकते हो, अपनी हिम्मत से तुम काम लो तो तूफान को भी मोड़ के दिखा सकते हो। धन्यवाद अंकल।
1: बहुत बढ़िया आरती, आपने जो एक हौसला बनाने वाली जो कविता सुनाई, बहुत अच्छी कविता सुनाई। अगला फोन लेते हैं। हेलो हेलो।
4: नमस्ते।
1: नमस्ते, नाम बताओ।
4: प्रीतम।
1: प्रीतम हाँ क्या सुनाएगा प्रीतम?
4: आलू कचालू वाली पोया।
1: हाँ आलू कचालू वाली सुना भाई।
4: आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, बैंगन की डोगरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी रो रहे थे, मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे।
1: वाह भाई बहुत अच्छी बढ़िया कविता है। अगला फोन लेते हैं। हेलो।
4: मेरी बहन बहन भी सुनाए।
1: हाँ फिर सुना भाई, देखो जल्दी दे दो फोन।
4: मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का साटा गोल, दादी की बिल्लियां गोल गोल, मम्मी की बेटी गोल मटोल।
1: मम्मी की बेटी गोल मटोल, बहुत अच्छी भाई, ठीक है। हेलो
5: हेलो।
1: हाँ नाम बताओ भाई।
5: मेरा नाम विभू है।
1: क्या नाम बताया?
5: विभू।
1: विभू क्या सुनाएगा आज?
5: मैं एक कविता सुनाऊंगा।
1: हाँ सुनाओ भाई।
5: नई किताबें कापी बस्ता पहनकर है हर बच्चा आस्था पर, जब ढोना पड़ता बस्ता जाती है हालत पड़ता, टीचर कहती कापी लाओ बिना किताबों के आओ, आज पढ़ाया जो भी मैंने कल तुम उसको लिख कर लाओ, फिर हो जाता हरी बस्ता, हो जाती है हालत कस्ता, घर से गलिया से बस तक जाने वाला तंग है रास्ता। धन्यवाद।
1: बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया कविता सुनाई, धन्यवाद। और हेलो
6: हेलो
1: हेलो, नाम बताओ।
6: नमस्ते।
1: नमस्ते भाई,
6: नाम दीप्ति है।
1: दीप्ति
6: अंकल,
1: हाँ क्या सुनाएगी दीप्ति आज?
6: मैं एक छोटा सा भाषण सुनाऊंगी अंकल।
1: भाषण सुनाओ भाई, देखो आराम आराम से सुनाना, जो सबके समझ में आए आराम से सुनाओ।
6: आज हम देख रहे हैं कि गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है।
1: हाँ।
6: सूरज तपिश से न सिर्फ हम इंसान बल्कि अपने आसपास के पेड़ पौधे और बेजुबान पशु पक्षी भी बेहाल है। इसी विषय पर मैं आपके सामने छोटी सी अपील लेकर आई हूँ।
1: बोलो।
6: हम इंसान तो प्यास लगने पर पानी मांग कर पी लेते हैं या गर्मी से बचने के लिए कूलर या एसी चलाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जरा उन बेजुबान पक्षियों और सड़कों पर घूमने वाले जानवरों के बारे में सोचिए जो इस चिलचिलाती धूप में पानी की एक बूंद के लिए मीलों भटकते हैं। प्यास के कारण न जाने कितने पशु पक्षी दम तोड़ रहे हैं। इसके साथ ही जो पेड़ हमें छांव देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, वे भी इस गर्मी में सूख रहे हैं। इसीलिए इस गर्मी में हमें सिर्फ दो छोटे और जरूरी काम करने हैं। पहला है रोज सुबह घर की छत या बालकनी में पक्षियों के लिए दाना पानी रखना है। दूसरा है अपने घरों के पास लगे पौधों को सुबह शाम पानी डालना है।
1: बिल्कुल।
6: प्रकृति हमसे है और हम प्रकृति से है। हमारी एक छोटी सी कोशिश किसी बेजुबान की जान बचा सकती है और हमारे पर्यावरण को हरा भरा रख सकती है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, छत पर पानी रख दो जनाब, किसी प्यासे की प्यास बुझ जाएगी। छत पर पानी रख दो जनाब, किसी प्यासे की प्यास बुझ जाएगी। दोगे पानी पौधों को अगर, तो धरती फिर से मुस्कुराएगी, तो धरती फिर से मुस्कुराएगी। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत बहुत बढ़िया दीप्ति, बहुत बढ़िया आपने जो भाषण है वो सुनाया, और जिससे एक प्रेरणा मिलती है कि भी देखो जो इतनी गर्मी का जो मौसम है उसमें हमने जो भी जीव जंतु बाहर घूम रहे हैं, पानी की तलाश में रहते हैं, और जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनको भी यदि हम पानी देंगे, प्रकृति को यदि हम कुछ देंगे, तो वो हमने वापस में बहुत कुछ कई गुना लौटाएगी। और जब हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो बचेंगे तो आगे जो हमारा जीवन है वो संभव है। इसलिए जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनकी देखभाल करना, उनको सींचना, उनकी सिंचाई करना और उनकी देखभाल करना हमारा भी फर्ज है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। और तो अगला फ़ोन लेते हैं। हेलो
7: हेलो,
1: हाँ जी, नाम बताओ।
7: बोले बोले।
1: हेलो
8: हेलो,
1: हाँ नाम बताओ।
8: लक्ष्य।
1: लक्ष्य कहाँ से बोल रहे हैं लक्ष्य भाई?
8: सागवन से।
1: सागवन से, तो क्या सुनाएगा लक्ष्य आज?
8: कविता।
1: कविता आराम से सुना, सुना आराम से।
8: मुझे एक बीज मिला, मैंने उसे गमले में डाला, क्या वे पेड़ है क्या वे झाड़ी है? मुझे नहीं पता। क्या वे लंबा ऊंचा होगा, क्या वे छोटा ही रहेगा?
1: हाँ, थोड़ा रेडियो दूर करवा दो आप। हाँ बोलो बोलो बोलो, आप बोलते रहो, रेडियो को दूर कर दो। चलो बोलो बोलो
7: बोल बोल।
1: शाबाश, बहुत अच्छी कविता आप याद कर रहे हो। सुनो,
8: गमले में डाला, क्या वे पेड़ है क्या वे झाड़ी है? क्या वे लंबा ऊंचा होगा, क्या वे छोटा ही रहेगा? धन्यवाद।
1: धन्यवाद भाई, धन्यवाद। अगला फोन लेते हैं। हेलो, हेलो, नमस्ते भाई, नमस्ते। नाम बताओ पहले अपना।
9: मेरा नाम यश है।
1: यश, गांव कौन है यश अपना?
9: टिटोली।
1: टिटोली, हाँ भाई सुना, यस क्या सुनाएगा?
9: मैं कविता सुनाना चाहता हूँ।
1: हाँ कविता सुना भाई।
9: मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किस

0: तो देखो भाई, जो बच्चे हैं वो अपना जो स्कूल का काम है वो अपना ठीक है, छाया में बैठ के और आराम से करें, और अपना जो पानी की पीने की व्यवस्था है वो साथ में रखें। हेलो हेलो,
1: हाँ जी, ये बच्ची से बात
0: हाँ
1: कर
0: जी कराओ।
2: रही हूँ।
0: हेलो, नाम बताओ भाई पहले अपना।
2: हेलो, खुशी।
0: खुशी, क्या सुनाएगी खुशी आज? पोएम सुना भाई खुशी, क्या आराम से सुनाना।

0: सबका आदर करती है, इसलिए वो प्यारी है, सारे प्यारी है।
1: बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। आपने मम्मी पे तो सुना दी, एक आधी बार पापा पे भी सुनाया करो। है चलो ठीक है, धन्यवाद भाई। हेलो हाँ नमस्ते भाई, नाम बताओ पहले।
2: सिया।
1: सिया क्या सुनाएगी सिया आज?
2: सीता।
1: कविता सुनाओ भाई।
2: पैरों से धड़कनों का पानी होती, कोशिश करने वालों की कभी हानि होती। नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चलती है, ऐसी दीवारों पर वे सो बार चलती है। मन का विश्वास रंगों में सास बढ़ता है, कर गिना गिर कर चलने खटता है। ताकि उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हानि होती। धन्यवाद।
1: बहुत बढ़िया भाई, देखो हौसला की जो बात कही आपने, बे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बहुत अच्छी बढ़िया बात कही। हेलो अगला फोन लेते हैं।
3: नमस्कार
1: जी नमस्कार, नाम बताओ जी। हाँ करा, नमस्ते भाई नमस्ते, नाम बताओ। क्या नाम बताया?
2: पूर्वी।
1: पूर्वी, हाँ तो सुनाओ क्या सुनाओगे?
2: मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। बाद में आओ मर जाएगी, पानी में डालो चल जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, पानी में डालो चल जाएगी।
1: बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छी कविता सुनाई। और अगला फोन लेते हैं। हेलो हेलो, तो जो बच्चे हैं थोड़ा हा तगाजा कर जा हैं, इसलिए थोड़ा हा आराम से सुनाऊँ ताकि जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी समझ में आ सके। और भाई देखो ये बुधवार का दिन है, इसीलिए वो है भाई बच्चे इस दिन अपनी तैयारी करके आवे। हेलो हेलो
3: हेलो, लो जी बच्चे से बात।
1: हाँ कराओ जी कराओ।
2: हेलो
1: हाँ जी, नाम बताओ।
3: नाम बताते बोलो जी।
2: अर्जुन।
1: अर्जुन भाई, अर्जुन क्या सुनाएगा आज?
2: कविता।
1: कविता सुना भाई।
2: फूल खिले मतवाले हैं, आशा उनसे पाले हैं, मोती के घर जन्म लिया था, चाचा नेहरू ने भारत आजाद कराया था, बापू गांधी ने। थैंक यू,
1: धन्यवाद भाई। अगला फोन लेते हैं, बच्ची कविता सुना रहे हैं बच्चे। हेलो, तो देखो जो बच्चे हैं वो अपना खुद का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, गर्मी का मौसम है और बार बार यही कहा जावे, जो छोटे बच्चे हैं विशेषकर वो एक तो ज़्यादा लंबे समय तक धूप में ना रहें, और अपने साथ में जो पानी का प्रबंध है वो बार बार ये कहा जाए वह जरूर रखें, और कुछ जो तड़ी भुनी हुई चीज़ें हैं उनको उनसे दूर रहें, विशेषकर जो रेडी वाली चीज़ें हैं उनसे बिल्कुल बच्चों ने दूर रहना चाहिए। इसमें जैसे हम बात करें कुरकुरे हैं, चाउमीन हैं या अनेकों तरह की जो ख़राब चीज़ें हैं वो जो इन रेडियों पर बिक रही हैं वो बच्चों बिल्कुल भी नहीं हमने खानी है। और ना ही, क्योंकि देखो गर्मी का मौसम है, बच्चा ये सोचा कि भाई मैं आइसक्रीम का प्रयोग कर लूँ, आइसक्रीम भी नहीं हमने खानी चाहिए क्योंकि उसके खाने से जो गला है वो ख़राब हो जाता है, जो बच्चों के दाँत हैं वो भी जल्दी उसमें ख़राब हो जाते हैं, और एक बच्चों को ज़्यादा जो मिठाई है वो भी नहीं खानी चाहिए। उसका ये कारण है कि भाई बार बार बच्चा जो कुल्ला तो वो है वो कर नहीं पाता, और उनके दांतों के ऊपर एक कैविटी सी इस तरह की बन जाए, उनकी परत ऐसी बन जाए है जो बच्चों के दांत जल्दी ख़राब कर दे है। बच्चों को अपने स्वास्थ्य का जो ध्यान है वो रखना चाहिए, और साथ ही साथ हम तो ये भी कहेंगे भाई जो अभिभावक हैं उनका भी ये फ़र्ज बने हैं कि भाई बच्चों को मान लो कोई हम मीठी चीज़ दें या किसी चीज़ कोई भी

0: तो बार बार जो बच्चों का कोरोना है वो ज़रूर करवाएं। और रही बात भाई, कुछ बच्चों के जो नाखून हैं वो बड़े हो जाते हैं, तो उनमें कई तरह की जो गंदगी है वो उनके अंदर घुस गया है, और फिर बच्चे जैसे ही खाना खावें तो वो गंदगी उनके अंदर चली जाए और फिर वो कई बार बीमारी का कारण बन जाए। इसलिए हमने ध्यान इस बात का करना कि वह बच्चों की जो सफाई है उसका विशेष ध्यान दें, उनके कपड़ों की सफाई की बात करें हम उन। हेलो, बच्चों का फ़ोन लेते हैं।
1: हेलो
0: हेलो,
1: अंकल, नमस्ते। ज्योति,
0: नमस्ते भाई, नमस्ते भाई, नाम बताओ।
1: कविता।
0: ज्योति, ज्योति क्या सुनाएगी आज? कविता सुनाओ। कविता
1: मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को, मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को, जय जवान जय किसान। झुका नहीं सकी जिसे दनाती गोलियां, डरा नहीं सकी जिसे वेदन पल्ले मचाती टोलियां, वतन पर हंस दे जवान अपनी जान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को, धन्यवाद अंकल।
0: बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया कविता, जय जवान और जय किसान की बहुत अच्छी बढ़िया कविता आपने सुनाई। हेलो, तो जो बच्चे हैं वो देखो तैयारी तो बहुत बढ़िया करके आए हैं, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे भाई जो भी बच्चा सुना हुआ है वो थोड़ा है इस बात का ध्यान दे कि भी तगाजा ना करे, ताकि जो और बच्चे सुन रहे हैं कोशिश ये करें कि भाई जो बच्चे सुना रहे हैं उनसे हम बढ़िया सुनाएं और उनकी जो तैयारी है वो उसी तरीके से होनी चाहिए। हेलो हेलो हेलो,
1: हेलो
0: हाँ नाम बताओ भाई।
1: अंकल, नमस्ते।
0: हाँ नमस्ते भैया, नाम बताओ।
1: मोनिका,
0: मोनिका, मोनिका क्या सुनाएगी आज?
1: कविता।
0: कविता आराम से सुनाया करो, ज़्यादा तगाजा मत किया करो, क्योंकि वो फिर पूरा सही समझ में आना चाहिए। हाँ सुनाओ।
1: नदिया पर मुटिया फिर चलती ही जाती है, चलते चलते सागर को आखिर नदी पाती है, मिलती लंबी नाव से देती है सबको पानी, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है, दाने चलती किसी जगह से, टेढ़ी होती कहीं से चारों में छुपती है, मैदान में आती है खेल खेल जाती, खाती बिल्कुल को भी जाते हैं, धन्यवाद।
0: धन्यवाद भाई, धन्यवाद, अच्छी कविता थी लेकिन थोड़ा हाथ तगाजा कर दिया। चलो अगला फोन लेते हैं। हेलो
2: प्रतीक्षा करें। हेलो,
0: हेलो,
2: थोड़ा थोड़ा
0: सुनाओ जी, सुना,
1: हेलो,
0: कोई नहीं सुनाओ। हाँ नाम बताओ पहले अपना, क्या नाम बताया?
2: बोले
0: हाँ सुनाओ, क्या सुनाओगे? हाँ हाँ भैया, नाम बताओ, नाम बताओ ही अपना। नमस्ते नमस्ते, नाम बताओ भाई पहले अपना। हाँ हाँ सुना भाई, कविता सुना। चलो बहुत अच्छी है भाई, बहुत बढ़िया है। तो अगला फोन लेते हैं। हेलो, तो जो बच्चे हैं थोड़ा हा कहने के बाद भी थोड़ा हा तगाजा कर जाए हैं तो वो आराम आराम से सुनाओगे, तो देखो जो और बच्चे सुन रहे हैं उनको भी अच्छे से स्पष्ट जो आवाज़ है उनकी जागी, और जिस समय फ़ोन करें और बात होना शुरू हो जाए उस समय के बाद थोड़ा हा रेडियो को हम दूर कर दें, ताकि जो उल्टी आवाज़ जो कई बच्चों के है जो कविता सुना रहे हैं और उनकी आवाज़ रेडियो से फिर दोबारा उसी फ़ोन में आ जाए तो उसमें कम समझ में आवा है, तो इस बात का जो बच्चे हैं वो ध्यान दें, जो अभिभावक हैं वो ध्यान दें। बाकी देखो अब समय है कि भाई हमारा जो लगभग सारी जो क्लास हैं उनका रिजल्ट भी आ गया, हम जो नई कक्षा है उसमें प्रवेश भी कर गए, लेकिन इस समय में जो पुस्तकों की जो देखभाल है, जो उनका रख रखाव है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पुस्तकें हैं वो जितनी हम पुस्तकों को अच्छा साफ़ सुथरी रखेंगे उतना ही जो हमने पढ़ने में हमारा जो मन है वो लगेगा, क्योंकि यदि मान लो हम पुस्तकों की संभाल नहीं करेंगे तो कोई पेज उसका मान लो फट गया या कोई गुम हो गया, तो फिर आने वाले समय में हमने इस तरह की दिक्कत आएंगी। भाई कोई मान लो अच्छा जो इम्पोर्टेंट पर्सन है वो भी उसके अंदर चला जा है। तो बच्चों देखो, किताबों के ऊपर जो जिला चढ़ाना है, उनको साफ़ सुथरा रखना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और मान लो हम उसके ऊपर कवर चढ़ा दें हैं और साफ़ सुथरा अपने जो बैग हैं उनको रखें, तो जो हमारी पुस्तक हैं वो बिल्कुल जो कि तो रहे हैं, और आगे भी हमारे हमने कभी फिर उसकी ज़रूरत पड़गी तो उसके लिए भी ये काम आ सके हैं। तो ये कुछ पुस्तकों संबंधी बातें थी भाइयों। और देखो बच्चों, जब हम चर्चा भी कर रहे थे कुछ समय पहले कि भाई जो हमारा खान पान है उसका विशेष ध्यान हमने रखना है, विशेषकर जो बच्चे हैं मैदा से बनी हुई चीज़ें ना खाएं, क्योंकि ये जो मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं ये बच्चों को बड़ा नुकसान कर रहे हैं, उनके दिमाग को भी ये कहा जा सके भाई उनको नुकसान बना है मैदे वाली चीज़ों से। तो बच्चे कभी भी मैदे से बनी या कोई भी चीज़ ना खाएं, और जो हमारा शुद्ध शाकाहार है, अच्छी सब्जियां हैं, बड़ी हरी सब्जियां खाएं, और जो पत्तेदार सब्जी हैं उनका हम सेवन करें। और समय समय पर, मुख्य बात यह है बच्चों की गर्मी का समय है तो इसमें हमारा जो पानी का प्रबंधन है वो साथ में होना चाहिए। हम कहीं भी मान लो स्कूल में जाएं या रास्ता में जाएं, और अब तो बहुत से बच्चे जो बसों से भी जाए हैं और थोड़ा दूर भी जाना पड़े, साथ में अपने पानी ज़रूर रखें, क्योंकि जब मान लो बच्चे को प्यास लग जा है और उसको पानी नहीं मिलता तो उसको कई बार चक्कर आ जाए हैं, तो ये इस तरह की दिक्कतें हैं उनका सामना जो छोटे बच्चे हैं उनको करना पड़ा है। एक तो जो बच्चे हैं इस तरह मान लो हम पानी साथ में ले रहे हैं या किसी और किसी बच्चे को कोई दिक्कत होने लग जाए तो उसको हम तुरंत यदि हम पानी पिला देंगे तो उसको कई तरह की जो दिक्कत हैं उनसे बचाया जा सके है। और जो बच्चे हैं एक जो अपना ये कहूँ भाई आप जो उन बच्चों का आपसी सहयोग है वो होना बहुत ज़रूरी है। एक बच्चा जो दूसरे की जो ज़रूरत है उसको समझे, और एक कई तरह की बातें हो जाएं भाई हम बाहर निकलें थोड़ा सावधानी से निकलें, कोई भी अजनबी आदमी जो हमको नहीं जानता उससे कोई भी दी हुई चीज़ जो बच्चा है वो ना लेवे, और यदि कोई बार बार देने का प्रयास कर रहा है या बहकाने की कोशिश कर रहा है तो जो अध्यापक है या जो हमारे अभिभावक हैं या कोई भी साथ में कोई बड़ा आदमी और दूसरा दिख है तो उसको ये ज़रूर बताओ कि ये आदमी मेरे को इस तरह बेला फुसला रहा है। तो फ़ोन लेते हैं बच्चों, बात फिर करेंगे। हेलो हेलो
1: बाबा, राम राम।
0: हाँ राम राम भाई, नाम बताओ।
1: मानवी।
0: मानवी, मानवी क्या सुनाएगी?
1: पोयम।
0: पोयम सुना मानवी।

0: चलो अच्छी है कविता तो,
1: जी
0: लेकिन दोबारा सुना दिए तो। हेलो,
1: नमस्ते, काव्या।
0: नमस्ते नमस्ते, नाम बताओ भाई। काव्या। क्या सुनाएगी काव्या आज? कविता सुनाओ।

0: बहुत बढ़िया काव्या, बहुत अच्छी जो कविता है आपने सुनाई। अगला फोन लेते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: हेलो, नाम बताओ भाई।
1: मैं चौधरी वासन मित्र बोल रहा हूँ। चौधरी
0: चौधरी वासे, क्या नाम बताया? मितुल।
1: वासन मित्र
0: भाई क्या सुनाएगा आज?
1: कविता।
0: कविता सुनाएगा? सुनाओ सुनाओ कविता। हेलो।
1: मेरी माँ बहुत प्यारी है, बस उससे नहीं आ रही है। हंसता देख मुझे, साथी रहो तो देख, नहीं तो मुझे खिला कर खाती है, मुझे बेलवाती है।
0: अच्छा चलो, धन्यवाद भाई। हेलो, अगला फोन लेते हैं।
1: ठीक है। हेलो,
0: हेलो,
1: हाँ
0: हाँ नाम बताओ भाई। हेलो, हाँ नाम बताओ भाई।
1: अंकल जी नमस्ते।
0: नमस्ते भाई, नमस्ते, नाम बताया करो पहले। हाँ
1: जिला सरसी दादरी
0: यस, हाँ तो सुनाओ, क्या सुनाओगे?
1: सवेरा जागो भाई, किरणों ने दिल्ली अंगड़ाई, बच्चों तुम भी अब उठ जाओ, माता पिता को शीश नवाओ। थैंक यू अंकल।
0: बहुत बढ़िया भाई, बच्चों ने जो अच्छी कविता है वो सुनाई, और फिर बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए हम ये कहें भाई, जो अच्छी तैयारी है वो किया किया करो। और बच्चे बहुत अच्छी अच्छी कविताएं देशभक्ति की और प्रकृति संबंधी, अपनी जो संस्कृति संबंधी जो बच्चे हैं, वो बहुत अच्छी बढ़िया कविता सुनाई आज। और आगे भी यही उम्मीद करें भाई, बच्चे अच्छी तैयारी करेंगे और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे भाई। तो बच्चों अब इजाज़त लेते हैं, जो ग्रामीण संचार कार्यक्रम है उसका समय हुआ समाप्त। सारे बोलेंगे जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण संसार कार्यक्रम आकाशवाणी का। ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। 7:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम। फिल्म संगीत कार्यक्रम से पहले आपको दे दें स्थानीय सूचनाओं के तहत कुछ गुमशुदा व्यक्तियों के बारे सूचनाएं। ये सूचना हमें मिली है थाना पुरानी सब्जी मंडी जिला रोहतक से। इसके अनुसार रीना पत्नी रमेश वासी डेयरी मोहल्ला रोहतक सूचित करती हैं कि उनकी बेटी तमन्ना, जिसकी उम्र करीब 19 साल है, शाम को 4 बजे घर से कहीं बिना बताए चली गई है। 21 अप्रैल 2026 को हुलिया इस प्रकार है। रंग सांवला, दुबला पतला शरीर है, कद 5 फुट है, काले रंग की जीन्स व सफ़ेद काली टी शर्ट पहने हुए है। तमन्ना के बारे में कोई भी सूचना आप इन नंबरों पर दे सकते हैं, 7082999116। अन्य नंबर है 01262235636। ये सूचना मिली है थाना पुरानी सब्जी मंडी जिला रोहतक से ही। इसके अनुसार काजल, जिसकी उम्र 18 वर्ष है, हुलिया इस प्रकार है। रंग गोरा, गोल चेहरा, शरीर से हष्टपुष्ट है, कद 5 फुट 3 इंच है, सूट सलवार पहने हुए है, पैरों में मेहरून कलर की जूती पहने हुए है जब ये लापता हुई थी। काजल के बारे में कोई भी सूचना आप इन नंबरों पर दें, 7082999116। अन्य नंबर है 9996464100। ये सूचना मिली है थाना सिविल लाइन जिला रोहतक से। इसके अनुसार शिखा गर्ग पत्नी अनुभव गर्ग निवासी चाणक्यपुरी शिला बाईपास रोहतक सूचित करती हैं कि उनके पति अनुभव गर्ग पुत्र बोस कुमार निवासी चाणक्यपुरी शिला बाईपास रोहतक, जो कि 18 मई 2026 को सुबह करीब 4 बजे घर से कहीं बिना बताए चले गए हैं। हुलिया इस प्रकार है। गोरा रंग है, गोल चेहरा, हष्टपुष्ट शरीर है, कद 5 फुट 9 इंच है, नाक पर मस्से का निशान है, उम्र करीब 40 साल है। इनके बारे में कोई भी सूचना आप इन नंबरों पर दे सकते हैं, 9050007595। अन्य नंबर है 9896621390। एक और नंबर नोट कर सकती हैं आप, इस ये है 7082999117। सूचना समाप्त हुई। आप सुन रहे थे गुमशुदा व्यक्तियों के बारे सूचनाएं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं यलगार फिल्म के इस गीत के साथ। आवाजें हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की। सुदर्शन फाकरी का लिखा ये गाना है और इसके लिए धुन बनाई चन्नी सिंह ने।

एस एस बिहारी का लिखा गाना ये सुनते हैं, जिसके लिए धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल और शब्बीर कुमार की फिल्म तेरी मेहरबानियाँ से।

फिल्म संगीत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको सुनवाते हैं मर्द फिल्म संगीत। आवाज़ें हैं एस जानकी, शब्बीर कुमार, अमिताभ बच्चन और केतन देसाई की। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, अन्नू मलिक का संगीत है।

0: का, ये फादर का बच्चा कौन है?
1: फादर का बच्चा नहीं सन, फादर को बाप बोलते हैं, और तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है।

घोड़ा, सुना क्या लड़की बोला, बात में बहुत दम है, छाती ठोक ठोक के बोला।

सौतन जी हाँ, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत है ये, सुनिए। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर दा की, उषा खन्ना का संगीत है।

साउथ इंडियन फिल्म से गीत हमने सुना, आवाज़ें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, आइए अब सुनते हैं राजा फिल्म से गाना। उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वरों में समीर के बोल हैं, नदीम श्रवण का संगीत है।

साजन फिल्म से गीत हमने सुना, आवाज़ थी अलका याग्निक की, समीर की बोल थे, नदीम श्रवण का संगीत था। आगे बढ़ते हैं, आपको सुनवाते हैं तेजाब फिल्म से गाना, आवाज़ एक बार फिर से अलका याग्निक और साथ में इनकी सखियां जावेद अख्तर की बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

शराबी फिल्म से गीत हमने सुना जिसमें आवाज़ें थी किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की। अनजान के बोल थी, बप्पी लाड़ी का संगीत था और इस गीत के साथ ही संपन्न हुआ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। आकाशवाणी रोहतक से अब जी सुनिए सुगम संगीत कार्यक्रम। कलाकार हैं गुलाम अली।

0: आप सुन रहे थे सुगम संगीत कार्यक्रम आकाशवाणी का। ये रोहतक केंद्र है, 8:45 होने को है। अब समाचार पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में बारी बारी से रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
2: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण

0: प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
0: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
1: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा, वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की CBI हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी ₹96.83 पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वीसी प्रमोद विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honor, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between hosts Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at Eden Gardens. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
5: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
4: मिस्टर मोदी सेड इंडिया इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-29 विल प्रोवाइड अ प्रैक्टिकल एंड फ्यूचरिस्टिक फ्रेमवर्क फॉर बायलैटरल टाइज। He said both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Center and noted that the India-Italy Defense Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defense sector.
5: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स, मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
4: Mr. Modi stressed that India and Italy are united in viewing terrorism as a serious threat to humanity and underlined the need for strong action against terror financing networks.
5: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
4: Speaking on the occasion, Italian Prime Minister Meloni emphasized the importance of ensuring freedom of navigation in the Indo-Pacific and strengthening cooperation across key sectors.
6: Italy and India share a joint vision on many of the huge challenges of our times, rules, economic security, the resilience of the value chains, the promotion of peace, inclusive development. It is extremely important to have freedom on navigation in the Indo-Pacific sector is where we share the same vision of a free, inclusive and open Indo-Pacific.
4: Prime Minister Modi also called on Italian President Sergio Mattarella and held discussions on further expanding the bilateral partnership in areas such as trade, technology, clean energy and culture. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization FAO at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Chu Dongyu. Receiving the award, Mr. Modi dedicated the honor to India's millions of farmers, livestock rearers, fish farmers, agricultural scientists and workers. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the award reflects India's unwavering commitment to food security, sustainable development and human welfare.
5: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है, जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
4: The Agricola Medal is the highest honor conferred by the Director General of the FAO. It is awarded to distinguished world leaders and individuals for exceptional and long-term contributions to global food security, sustainable agriculture, poverty reduction and improved nutrition. Mr. Modi reached Italy yesterday on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Defence Minister Rajnath Singh has termed Operation Sindoor as a testament to India's transformation into a strong, confident and capable nation. Interacting with the Indian diaspora of South Korea in Seoul, the Defence Minister said the operation was proof that India will not tolerate terrorism in any form.
7: India's policy today is not reactive but proactive. Personally, I also believe that national security will not be compromised at any cost. With this vision, India is rapidly promoting indigenous defense manufacturing. Before 2014, our total defense production used to be approximately worth 44,000-55,000 crores. Today, it has increased to 1,54,000 crores, and within the next month, it is expected to reach nearly 1,75,000 crores.
8: 1,75,000 crore aap dekhne ko milega.
4: The Defence Minister also chaired the India-South Korea Defence Industry Business Roundtable in Seoul. Speaking on the occasion, Mr. Singh said the two countries can jointly develop and produce advanced technologies and defence systems for the future. During the event, two agreements were also signed, signalling a promising future for India-Korea Defence Innovation and Technology Partnership. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at @AIRNewsAlerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari announced immediate initiation of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under the Citizenship Amendment Act or CAA. The Chief Minister made the announcement at State Secretariat Nabana during a land handover ceremony to the Border Security Force BSF for border fencing. He said infiltrators identified in the state would now be directly handed over to the BSF for further action in coordination with the Border Guards Bangladesh. Mr. Adhikari clarified that no action would be taken against members of the seven communities protected under the CAA, provided they had entered India before 31st of December 2024. Repolling in the Falta Assembly constituency of South 24 Parganas district in West Bengal will be held tomorrow. Six candidates, including two independents, are in the fray. Trinamool Congress candidate Jahangir Khan yesterday withdrew his nomination from the contest. However, his name will remain on the ballot as the deadline for withdrawal of nominations has already passed. The Election Commission had earlier declared the polling held on 29th of April in Falta void over allegations of large-scale malpractice and ordered a fresh poll in all 285 booths. The counting of votes will take place on the 24th of this month. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has stressed the need for heightened vigilance and foolproof security arrangements to ensure a safe, secure and fair conduct of the upcoming NEET UG re-examination. Mr. Pradhan said this while chairing a high-level review meeting with Central Security and Intelligence Agencies in New Delhi today. The NEET UG re-examination for admission to undergraduate medical education will be held on the 21st of June. During the meeting, serious concerns were also raised over the growing spread of misinformation related to competitive examinations through anonymous online groups. Mr. Pradhan directed a focused crackdown on such networks, including proactive identification, blocking and taking down of channels spreading fake information. Meanwhile, a Delhi court has sent the five accused in the NEET paper leak case to judicial custody till the 2nd of next month. India is set to remain the world's fastest growing major economy as the United Nations, UN in its report, projected a growth rate of 6.4% this year for the country despite global uncertainty caused by the West Asia conflict. UN senior economist Ingo Peterle, briefing reporters on the media update on the World Economic Situation and Prospects report yesterday, said India's strong consumer demand, public investment and growth in services exports continue to support its economy. Director of UN's Economic Analysis and Policy Division, Shantanu Mukherjee, also noted that India's diversified energy sources, strong refining capacity, large foreign exchange reserves and fiscal flexibility could help cushion the impact of rising oil prices caused by tensions in the West Asia and disruptions in the Strait of Hormuz. Benchmark domestic equity indices ended with marginal gains today. We have a report.
9: Sensex rose by 118 points to close at 75,318, while Nifty added 41 points to settle at 23,659. Meanwhile, the broader market on the National Stock Exchange also ended in positive territory. The mid-cap 100 jumped 0.5%, while the small-cap 100 ended on a flat note with a positive bias. In the foreign exchange market today, the rupee depreciated by 30 paise to close at a record low of 96 rupees and 83 paise against the US dollar. Arjun Chaudhary for Akashwani News.
4: Meanwhile, the growth of the combined index of 8 core industries in the country rose to 1.7% in April this year on an annual basis, up from the revised 1.2% in March. The India Met Department, IMD, has issued a red alert for severe heatwave conditions over parts of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. Similar conditions are likely to prevail over Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Bihar, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Odisha, Rajasthan, Telangana and Uttarakhand till tomorrow. Meanwhile, severe heatwave gripped several parts of northern and central India, with the mercury breaching the 45-degree mark. In national capital, an orange alert has been issued for heat wave conditions for the next 3 to 4 days. More from our correspondent.
10: According to the Met Department, the maximum temperature in Delhi is expected to be around 45 to 47 degrees Celsius tomorrow. In the past 24 hours, the maximum temperature in the national capital was recorded at 44.5 degrees Celsius. With increase in the temperature, the Delhi government has mandated a compulsory rest period for all outdoor workers from 1 p.m. to 4 p.m. amid intensifying peak summer temperatures. With Shivang Mishra, Soumya Sharan for Akashwani News, Delhi.
4: In IPL cricket, match between Mumbai Indians and host Kolkata Knight Riders is underway at the iconic Eden Gardens. Mumbai Indians were 57 for 4 in 8 overs when match was halted due to rain. Earlier, Kolkata Knight Riders won the toss and elected to field. Yesterday, Rajasthan

0: this year, despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between host Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at the Eden Gardens. And that's all in the news at 9. Good night.
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ पर न्यूज़ ज़ोन AIR और DTH पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। समय मिला सकते हैं आप स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 9:15:17 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं गुमराह फिल्म से कुछ गीत। आरंभ में सुनिए महेंद्र कपूर की आवाज़ में ये गाना।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज़ों में ये गीत हमने सुना। आकाशवाणी रोहतक से आप सुन रहे हैं एक फिल्म से कार्यक्रम। आज की फिल्म है गुमराह। आइए सुने इस फिल्म से अंतिम गीत।

के साथ ही संपन्न हुआ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम एक फिल्म से आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। 9:30 होने को है। अब अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा।

0: बीते कुछ वर्षों में दुनिया ने एक बदलाव महसूस किया है, एक ऐसा बदलाव जहां भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर एक निर्णायक आवाज बनकर उभरा है। कूटनीति के नए आयाम, विश्व मंच पर बढ़ती भागीदारी और हर बड़े वैश्विक मुद्दे पर भारत की स्पष्ट और सशक्त उपस्थिति, इन सब ने मिलकर रचा है एक नए भारत का आत्मविश्वास। और इसी बदलती तस्वीर का एक महत्वपूर्ण पहलू है दुनिया भर से मिल रहे वो सम्मान जो भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा की गवाही देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले ये वैश्विक अलंकरण सिर्फ एक नेता की उपलब्धि नहीं बल्कि भारत की साख, सामर्थ्य और विश्वसनीयता का प्रतीक हैं। स्वीडन और नॉर्वे से लेकर दुनिया के कई देशों तक हर सम्मान एक कहानी कहता है, भारत के बढ़ते कद की कहानी। चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है, मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक सम्मान, भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। शुरुआत करते हैं बिल्कुल हालिया और ऐतिहासिक लम्हे से। मई 2026 का महीना भारत के राजनयिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्डिक देशों की यात्रा पर थे, तारीख थी 17 मई 2026 और जगह थी स्वीडन का गोथेनबर्ग शहर। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजा गया। साल 1748 में स्थापित हुआ ये ऐतिहासिक सम्मान किसी विदेशी शासनाध्यक्ष को मिलना ये दर्शाता है कि आज यूरोप की नजरों में भारत का स्थान क्या है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था।
1: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
0: कहानी यही नहीं रुकी, इसके ठीक अगले ही दिन यानी 18 मई 2026 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का शाही महल एक और इतिहास का गवाह बना। नॉर्वे के राजा किंग हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से विभूषित किया। दो नॉर्डिक देशों से मिले इन सम्मानों ने साबित कर दिया कि भारत और नॉर्डिक देशों के बीच की साझेदारी अब एक नई रणनीतिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल 2014 में शुरू हुआ ये कूटनीतिक सफर साल 2016 में सम्मानों की एक ऐसी श्रृंखला में बदल गया जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। साल 2016 में खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ा। सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज सैश से नवाजा। इसी साल पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने उन्हें स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्ला खान प्रदान किया। वर्ष 2018 में भारत की पर्यावरण नीतियों को वैश्विक पहचान मिली जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण के क्षेत्र के सबसे बड़े पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया। इसी साल फिलिस्तीन ने उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन दिया। दक्षिण कोरिया ने वैश्विक शांति और आर्थिक विकास के लिए सियोल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया। वर्ष 2019 तो जैसे वैश्विक पुरस्कारों का वर्ष बन गया। दुनिया के नक्शे पर भारत की दोस्ती का दायरा कितना बड़ा था ये इन पुरस्कारों की सूची देखकर समझ आता है। संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च

0: उच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद, रूस का सबसे प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, मालदीव का ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इज्जुद्दीन और बहरीन का किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा शामिल रहा। 2019 में ही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए उन्हें ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया। जब साल 2020 में पूरी दुनिया सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रही थी, तब भारत की वैक्सीन मैत्री ने दुनिया का दिल जीता। इसी दौरान अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने बेहद प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। 2021 में हमारे पड़ोसी देश भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग से भारत के प्रति अपनी अटूट निष्ठा व्यक्त की। साल 2023 में जब भारत G20 की मेजबानी कर रहा था और उसी वर्ष जब प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे, तो वहां के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर पैर छूकर उनका स्वागत किया और उन्हें ऑर्डर ऑफ लोगोहू से नवाजा। इसी तरह फिजी ने कमियान ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और मिस्र ने अपना ऐतिहासिक ऑर्डर ऑफ द नाइल प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया। वर्ष 2023 में ही फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जिसके बाद ग्रीस ने भी उन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया। साल 2024 और 25 में तो ये फहरिस्त और लंबी हो गई। नाइजीरिया का ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, गयाना का ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान और कुवैत का ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर उन्हें प्रदान किया गया। इसके बाद साल 2025 में बारबाडोस, श्रीलंका का मित्र विभूषण, मॉरिशस का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन उन्हें प्रदान किया गया। घाना ने द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस, नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशियंट वेलविचिया मिराबिलिस, ट्रिनिडाद और टोबैगो ने द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, और ब्राजील ने द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस से भारत के बढ़ते कदमों का स्वागत किया। इसके अलावा ओमान की तरफ से फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान और इथियोपिया की तरफ से ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया भी प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया। साल 2026 की शुरुआत में ही इसराइल ने भी उन्हें मेडल ऑफ द नेसेट से सम्मानित किया। इन 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की फहरिस्त सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं है, ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि आज का भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है का संदेश दे रहा है। चाहे वो पर्यावरण संकट हो, वैश्विक शांति की बात हो या आपदा के समय मदद का हाथ बढ़ाना हो, दुनिया आज भारत के नेतृत्व की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष दर वर्ष मिले ये सम्मान असल में भारत की 140 करोड़ जनता के कड़े परिश्रम, हमारी प्राचीन संस्कृति और हमारे बढ़ते आर्थिक और सामरिक सामर्थ्य का वैश्विक उत्सव है। विदेशी कूटनीति में क्या 2014 के बाद भारत ने विशेष हासिल किया है, जिसे भारत अब दुनिया के मानचित्र में अब एक मजबूत स्तंभ बन गया है, इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और वरिष्ठ पत्रकार मदन जेड़ा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत
1: जी। धन्यवाद।
2: धन्यवाद आनंद जी।
0: अशोक जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा चल रही है, इसमें वो UAE, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 5 देशों की यात्रा पर हैं। नॉर्वे में हुए तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर सहमति बनी है। आपको क्या लगता है कि इस यात्रा के चलते जो वैश्विक परिदृश्य है और वैश्विक परिदृश्य में भारत की जो नॉर्थ वर्ड टर्न है यानी उत्तर की ओर जो रुख है, उस लिहाज से कितना अहम मानते हैं इस यात्रा को आप?
2: हम अभी देख रहे हैं जो ये जो यात्रा है वो उनकी नॉर्डिक देशों में है, तो इसमें कहा जाए जो ये नॉर्थवर्ड हम टर्न देख रहे हैं, परंतु ये तो हम जानते ही हैं जो भारत तो एक जिसे कहा जाए वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ है। हमने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट्स किए हैं जब भारत G20 की चेयर हमने संभाली थी 2023 में। परंतु इसको छोड़ते हुए मैं कहूंगा जो भारत की जो की कूटनीति है, अगर हम 2014 के बाद से देखें तो हमारी कूटनीति पूरे विश्व के साथ अपने संबंधों को आगे ले जाने में लगी है और हम इसमें बहुत ही तीव्र गति से काम कर रहे हैं। परंतु जहां तक ये नॉर्डिक देशों का संबंध है, आपने ठीक कहा है, इसको अभी करीब 8 साल हुए हैं। 2018 में जैसे कहा जाए पहला नॉर्डिक समिट हुआ था स्वीडन में, दूसरा डेनमार्क का हुआ 2022 में कोपनहेगन में, और अब तीसरा पिछले साल होने वाला था परंतु पहलगाम के इंसिडेंट के होते हुए तो ये नहीं हुआ और अब हो रहा है। तो अभी जो हालात हैं पूरे विश्व में, विश्व की जो चुनौतियां हैं, जो चाहे हम जियोपॉलिटिकल स्तर पर देखें, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पश्चिम एशिया का युद्ध चल रहा है, तो उसमें रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को आगे कैसे ले जाया जाए, और जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन ट्रांजिशन है, इनोवेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इन सभी जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, इनके साथ कैसे संबंध बनाया जाए और देशों के साथ मिलकर सहयोग किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण इशू थे और इस पर बातचीत हुई। और जो बताता है जो प्रधानमंत्री मोदी की और भारत की विश्वसनीयता कितनी बढ़ रही है पूरे विश्व में।
0: चर्चा कर रहे हैं 2014 से लेकर अब तक भारत के विदेशी कूटनीति के आइकॉनिक मोमेंट्स की, और उसमें जो सबसे बड़ा मोमेंट्स था मदन जी वो G20 का जो हमने मेजबानी की। साल 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुआ G20 समिट नई दिल्ली डिक्लेरेशन की वजह से दुनिया भर में सराहा गया। आपको क्या लगता है कि भारत ने जिस तरह विकसित और विकासशील देशों के बीच एक पुल का काम किया, उसने वैश्विक कूटनीति में भारत का कद किस तरह बढ़ाया?
1: अगर हम G20 की बात करें, एक तो ये बहुत बड़ा सफल आयोजन था, ये तो निश्चित रूप से था। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें हुई कि ग्लोबल साउथ की आवाज को भारत ने मजबूती के साथ बुलंद किया, और जो अफ्रीका यूनियन है, अफ्रीकी देश हैं, उनको G20 की सदस्यता दिलाने में सफलता हासिल की। भारत लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था। दुनिया में एकमात्र देश है जो भारत ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था। इसमें करीब 100 से भी ज्यादा देश आ जाते हैं, पूरा अफ्रीका रीजन इसमें आ जाता है, नॉर्थ अमेरिकी जो कंट्री हैं वो आ जाते हैं, इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे कंट्री हैं जो ग्लोबल साउथ में आते हैं, जो न तो किसी समूह के हिस्से नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ कहीं नहीं सुनी जा रही थी। अगर मैं G20 के आयोजन की बात करूँ, भारत की कूटनीति की बात करें, तो ग्लोबल साउथ की आवाज़ को उठाना और अफ्रीकी यूनियन को G20 में सदस्यता दिलाना, तो मुझे लगता है कि भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, और इससे भारत की जो कूटनीति है उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि जो भारत एक ऐसे देशों की आवाज़ उठा रहा है जिसकी आवाज़ बहुत पहले उठाए जाने की जरूरत थी। और ये पहल कायदे से देखा जाए तो जो विकसित कंट्री है उनको इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन भारत ने, एक बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, उसने इन देशों की आवाज़ को उठाकर पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जो वसुधैव कुटुंबकम, और इस G20 सम्मेलन की थीम भी यही थी, तो वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश दिया उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और एक भारत के नेतृत्व में विश्वास जताया।
3: Dr. Nkrumah had said, and I quote, I am not African because I was born in Africa, but because Africa was born in me. In the same way, India carries Africa in its heart. India and Africa share a dream where every child gets opportunities. Where every voice is heard, where nations rise together, not apart. Let us build a partnership, not only for today, but for generations to come.
0: अशोक जी, अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भारतीय विदेशी कूटनीति का एक और अहम पड़ाव है आपदा और संकट में कूटनीति, चाहे वो ऑपरेशन संकट मोचन हो, ऑपरेशन गंगा हो, या फिर युद्ध और संकट के क्षेत्रों से अपने नागरिकों को वापस बुलाना, उसमें भी भारत ने एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन एक और ऑपरेशन हुआ जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, जिसमें भारत ने पूरी दुनिया को यह बताया कि अगर भारत की तरफ कोई आंखें दिखाएगा तो भारत युद्ध का जवाब और प्रबल युद्ध से देना जानता है। आतंकवाद को सिरे से ना करना, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में अपने प्रतिनिधि को भेजकर यह बताना कि भारत की मंशा क्या है, कैसे देखते हैं, क्या वो भारतीय की विदेश कूटनीति का एक मील का पत्थर था ऑपरेशन सिंदूर?
2: भारत ने पूरे विश्व को संदेश दिया, वो यही था जो हम अपनी संप्रभुता के लिए, अपने जो नागरिक हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हम पूरी तरह से उनकी रक्षा करेंगे, और जो भी हद हो वो हम वहां तक जाएंगे। और यही बात हुई जो हम युद्ध को पूरा युद्ध में नहीं वैसे परिवर्तित करना चाहते। हमें जब अपना लक्ष्य मिल जाता है तो फिर हमने युद्ध उसी समय रोक दिया, परंतु पाकिस्तान

0: ने अपनी बेवकूफी में उन्होंने सोचा जो वो भारत को ऊपर भी कुछ ऐसा नुकसान कर सकते हैं, परंतु 10 तारीख सुबह को तो उनके केवल बहुत सारे हवाई अड्डे थे, बहुत सारे ऐसे ठिकाने थे जिनको एकदम मिट्टी में मिला दिया गया, तो पाकिस्तान को अपने घुटने पर आना पड़ा। तो हमने तो उनको ये सिद्ध करके, और फिर उसके बाद हमने जब पाकिस्तान ने याचिका की जो ये युद्ध रोक दिया जाए, तो हम मान गए, क्योंकि हमने ये देखा है, भारत ने ये पूरे विश्व को बताया जो हम युद्ध शुरू कर सकते हैं अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, और जब हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स लक्ष्य हम प्राप्त हो जाते हैं तो हम उसको बंद भी कर देंगे। तो हमने वहां पर से हमेशा से पाकिस्तान ये कहता रहा था जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो आप हमारे ऊपर हमला कन्वेंशनल वॉरफेयर से नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये बता दिया जो ये उनका जो ब्लैकमेल है ये हमारे विरुद्ध नहीं चलेगा।
1: और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि बुद्ध की धरती युद्ध करना भी जानती है और ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था।
2: आज पाकिस्तान भी भलीभांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे ये भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है, और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा।
1: अशोक जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विचार भारत की तरफ से दिया गया, क्या आपको लगता है कि भारत अब ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधानकर्ता के रूप में दुनिया में देखा जा रहा है?
0: 2015 में जब ये कॉप हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हुआ था पेरिस में, तो तब भारत ने और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उस समय के, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया था, और अब जैसे उन्होंने बताया 100 से ज्यादा देश इसमें मिल गए हैं। देखिए, आजकल एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे बनकर उभर गए हैं पूरे विश्व के सामने, और हम देख रहे हैं जब से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का मुद्दा सामने आया है तब तो ऊर्जा, एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स बहुत देशों के लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि वहां से 20% एनर्जी पूरे विश्व में आती है वो मिल नहीं रही है। तो इसीलिए ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसकी भारत ने शुरुआत की है, और भारत ने दिल्ली के निकटतम ही यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर्स भी खोला है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें बायोफ्यूल्स अलायंस है, जो कि जब हम G20 की बात कर रहे थे तो G20 के साइडलाइंस पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे। एक तो था इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अलावा एक CDRI है, दैट इज कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कैसे जो विश्व में पर्यावरण का बदलाव हो रहा है उसके साथ कैसे जूझा जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनको कैसे जो आपदा आती है उनसे बचाया जाए। तो भारत ने विश्व पटल पर बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं और बहुत से वैश्विक देशों ने भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं, तो इसी से भारत का कद विश्व में और भी इससे ऊंचा हुआ है।
2: दिस इज द इनॉग्रल डे ऑफ ए डिफाइनिंग ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। वी वॉन्ट टू ब्रिंग सोलर एनर्जी इन टू आवर लाइव्स। वी विल शेयर नॉलेज एंड एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिसेस। वी विल कोऑपरेट ऑन ट्रेनिंग एंड बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस। वी विल डिस्कस रेगुलेटरी इश्यूज एंड प्रमोट कॉमन स्टैंडर्ड्स। वी विल अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द सोलर सेक्टर, एनकरेज ज्वाइंट वेंचर्स एंड डेवलप इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स। वी विल पार्टनर विद अदर इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। देयर इज ऑलरेडी अ रिवॉल्यूशन इन सोलर एनर्जी। टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग, कॉस्ट आर कमिंग डाउन एंड ग्रिड कनेक्टिविटी इज इम्प्रूविंग। इट इज मेकिंग द ड्रीम ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू क्लीन एनर्जी बिकम मोर रियल।
1: मदन जी, अब बात थोड़ी वैक्सीन डिप्लोमेसी की भी कर लेते हैं। COVID-19 और वैक्सीन मैत्री की भी चर्चा काफी रही। जब COVID-19 महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के 100 से अधिक देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंचाई, वो भी दौर था जब दुनिया के कई देश अपनी वैक्सीन जमा कर रहे थे, तब भारत की इस मानवतावादी कूटनीति ने वैश्विक स्तर पर भारत के प्रति जो विश्वास पैदा किया, उसका लॉन्ग टर्म लाभ आप कैसे देखते हैं?
3: जब कोविड काल चल रहा था, तो 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन की सप्लाई की

0: और उस समय वैक्सीन की हमारे पास भी कमी थी, हम दूसरे कंट्री से कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव है उनसे हम वैक्सीन ले भी रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हम वैक्सीन दूसरे कंट्री को भी दे रहे थे और 100 से ज़्यादा देशों को हमने वैक्सीन की सप्लाई की थी, और उसमें से ज़्यादातर देश या तो हमारे पड़ोसी देश थे या फिर वो ग्लोबल साउथ के देश थे जिनको हमने वैक्सीन की आपूर्ति की थी। तो इस इनिशिएटिव से भारत का, जैसे मैंने माना कि ये एक डिप्लोमेसी है, ये भी एक डिप्लोमेसी है कि अगर आप अपने सहयोगी देशों को, अपने मित्र देशों को किसी प्रकार की मदद करते हैं तो ये भी एक डिप्लोमेसी का ही मैं इसे एक पार्ट कहूंगा। और इससे एक जो लॉन्ग टर्म में भारत पर भरोसा बढ़ा है, चाहे वो छोटा कंट्री हो चाहे वो एक अफ्रीका का कोई देश हो, भारत पर उन लोगों का भरोसा लगातार बढ़ा है। और लॉन्ग टर्म में अगर इसमें इसकी बात करें, जब एक बार भरोसा बढ़ता है और लगातार भारत उनके किसी न किसी रूप में मदद करता है या उनकी आवाज़ को बुलंद करता है, या जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ भारत ने उठाई, उसके बाद यूएन सुधारों में भारत लगातार बोल रहा है, तो इसका भी फायदा दूसरे देशों को होने वाला है। भारत को उतना फायदा नहीं होने वाला, दूसरे देशों को ज़्यादा होगा अगर यूएन में सुधार होते हैं। ऐसे में जो भारत पर दूसरे देशों का भरोसा है वो लगातार बढ़ रहा है, और जब ये भरोसा बढ़ता है, और जैसे हम कह रहे हैं कि जो दुनिया धीरे धीरे बढ़ रही है वो मल्टीपोलर दुनिया हो रही है, बहुध्रुवीय दुनिया हो रही है, तो भारत उसमें एक मजबूत ध्रुव के रूप में उभर रहा है, एक मजबूत पक्ष के रूप में उभर रहा है।
1: अशोक जी, एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है, काफ़ी अहम पक्ष रहा है 2014 के बाद भारत की विदेश कूटनीति का, वो है मुक्त व्यापार समझौते। भारत ने हाल में यूएई, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते किए, जिसे हम सब एफटीए के नाम से जानते हैं। आपको क्या लगता है कि ये समझौते भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड हब बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं?
2: जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बहुत ही ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौते जो हैं वो किए हैं, और अपने महत्वपूर्ण जो साझेदार हैं, जो व्यापारिक साझेदार हैं जिनके साथ हमारे व्यापारिक सहयोग, आर्थिक सहयोग बड़ा अच्छा है, उनके साथ किए हैं। अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का देखा जाए तो वो हमारा दूसरा सबसे बड़ा ऐसा डेस्टिनेशन है जहां हमारे एक्सपोर्ट्स जाते हैं, जहां हमारे निर्यात जाते हैं। वो तीसरे नंबर पर है जो कि सबसे बड़ा हमारा आर्थिक साझेदार है, सहयोगी है। और इसके अलावा हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ भी किया है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था है और आर्थिक सहयोग उनके साथ हमारा बहुत बड़ा है। यूरोपियन यूनियन, तो जिनके साथ 2007 में ये बातचीत शुरू हुई थी, मुझे याद है जब मैं ब्रसल्स में था तब हमने ये बातचीत शुरू की थी, नेगोशिएशन शुरू किए थे, और ये 17-18 साल के बाद हम देख रहे हैं, जो इस साल के शुरू में फरवरी में हमने देखा, 19 साल के बाद ये वाला समझौता हुआ है, और इसको वहां की जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेन, उन्होंने इसको मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया था, इसका इतना व्यापक रूप है। ऐसे ही हमने एफ्टा के साथ जो चार देश हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के, जैसे मैं पहले बोल रहा था, आइसलैंड और नॉर्वे तो उसके सदस्य नहीं है और ये एफ्टा के सदस्य हैं, और उसके अलावा स्विट्जरलैंड और लिख्टेनस्टाइन, उनके साथ भी बहुत महत्वपूर्ण ये एक सहयोग किया है, जिसमें $100 बिलियन भारत में वो निवेश करेंगे अगले 15 साल में, जिससे 10 लाख जॉब्स यहाँ पर क्रिएट होंगे। इसके अलावा हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ओमान के साथ, ये सब हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स किए हैं जो कि मेरे विचार से विन विन अग्रीमेंट्स होंगे, ये इन सभी देशों के लिए भी और भारत के लिए भी।
3: आज भारत ने अपने इतिहास का, अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है।
1: अशोक जी, फॉरेन डिप्लोमेसी के क्षेत्र में रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का स्टैंड भी काफी चर्चा में रहा। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान कि ये युद्ध का युग नहीं है, पूरी दुनिया में ये गूंजा। बिना किसी दबाव में आए भारत का अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर टिके रहना और दोनों पक्षों से बातचीत की वकालत करना, भारत की परिपक्व होती कूटनीति का कितना बड़ा प्रमाण रहा।
2: डिप्लोमेटिक पार्लेंस में कहें तो इसको हम स्ट्रेटेजिक अटोनमी कहते हैं, जो जिससे कि हम अपने हितों की रक्षा स्वयं करेंगे और हम किसी और को दखल अंदाजी नहीं करने देंगे, जो वो हमें बताए, भारत को बताए जो आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या ठीक है, आप इसमें क्या करिए। तो इसीलिए जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो बहुत दबाव पड़ा पहले भारत के ऊपर, जो आप तेल मत खरीदिए रूस से, परंतु भारत ने ये बता दिया, भारत करीब अपने जो जरूरतों का 80-85% तेल है वो आयात करता है, तो इसको हम जहां से भी हमारी कंपनियों को सभी ठीक दाम में तेल मिलेगा हम वहां से वो लेंगे। तो हमने अपने संबंध भी बनाए रखे और ये भी बनाए रखा, परंतु ऐसा नहीं किया जो हमने अपने संबंध और जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ खराब कर दिए। और उन देशों को भी फिर बाद में समझ आ गया, जो अगर रूस का तेल वैश्विक बाजार में नहीं आता तो तेल के दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता था। तो इसीलिए भारत ने ये बता दिया है, भारत वैश्विक फायदे के लिए, ग्लोबल गुड के लिए काम करेगा सबके साथ, परंतु अपने हितों को वो सैक्रिफाइस नहीं करेगा। और हमारा जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो केवल वो ट्रांजैक्शनल नहीं है जो केवल अपने हितों की हम रक्षा करें, हम और देशों के हितों के लिए भी हम उनके साथ बराबर परस्पर सहयोग बनाते रहेंगे और काम करते रहेंगे।
3: विद द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट वॉर हैज रिटर्न टू यूरोप, इट इज कॉजिंग ग्रेट पेन इन द रीजन, सिंस इट इन्वॉल्व्स मेजर पावर्स, द आउटकम्स are severe. Countries of the global south have been particularly affected. The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter. Peaceful resolution of disputes and respect for sovereignty and territorial integrity. As I have said directly and publicly, this is not an era of war, but it is one of dialogue and diplomacy. And we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering.
1: अशोक जी, कार्यक्रम के अंत में एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि 2047 तक भारत का लक्ष्य है विकसित भारत बनने का, हमारी विदेश नीति और विदेश कूटनीति इस लक्ष्य को हासिल करने में किस तरह की भूमिका निभा रही है, कैसे देखते हैं आप?
2: भारत की जो कूटनीति है बहुत ही एक महत्वपूर्ण इसमें योगदान कर रही है, भारत को अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचाने में, विकसित भारत 2047 तक पहुंचाने में, क्योंकि सामने हमारे चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। तो इसीलिए हमको देखना है जो किन देशों के साथ हमको अपना परस्पर सहयोग बढ़ाना है, हमारे अपने संबंधों को और तेज करना है, और वही हम कर रहे हैं। चाहे पहले हमारे अमेरिका के साथ जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, परंतु अब हम देखते हैं जो अमेरिका का रवैया काफी ट्रांजैक्शनल हो गया है, परंतु फिर भी हमारे संबंध चाहे रक्षा क्षेत्र में हो, व्यापार क्षेत्र में हो, उनके साथ बड़े अच्छे रहेंगे, परंतु फिर भी हम डाइवर्सिफाई करेंगे। तो हर तरीके से लेकर अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए और अपने सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, जिससे कि अपनी संप्रभुता की हम रक्षा कर सके, इस मार्ग पर अग्रसर होते हुए भारत की कूटनीति उसमें एक बहुत ही अहम योगदान करेगी।
3: एक तो हमारा लक्ष्य है

0: सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, जिससे कि अपनी संप्रभुता की हम रक्षा कर सके, इस मार्ग पर अग्रसर होते हुए भारत की कूटनीति उसमें एक बहुत ही अहम योगदान करेगी।
1: एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज।
2: भारत को सिर्फ एक बड़ा देश माना जाता था, लेकिन आज भारत एक बड़ी सोच बन चुका है। चाहे G20 की मेज हो या संकट में फंसे देशों तक मदद पहुंचाने का संकल्प, भारत ने हर बार ये साबित किया है कि नई सदी की कूटनीति केवल ताकत से नहीं, विश्वास से चलती है। आज जब दुनिया नए संतुलन की तलाश में है, तो उसकी निगाहें हिंद महासागर के उस किनारे पर टिकती हैं, जहां एक लोकतंत्र 140 करोड़ सपनों के साथ विश्व मंच पर आत्मविश्वास से कह रहा है, ये नया भारत है जो मित्रता भी निभाना जानता है और नेतृत्व करना भी जानता है। इसी विश्वास, इसी बढ़ते वैश्विक सम्मान और इसी नई कूटनीतिक यात्रा के साथ मदन जी आपका और अशोक जी आपका कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आभार।
0: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
3: थैंक यू सर।
2: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रोहतक मीडियम वेव 262 दशमलव 47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बज चुके हैं। अब लीजिए सुनिए मनचाहे गीत कार्यक्रम।

मन चाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। संतोष शेखावत की ओर से आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी की चिट्ठियों का भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आप सभी की फरमाइश के साथ। आप हैं छत्तीसगढ़ बेमेतरा से पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती, भव्या सारथी और सुषमा सारथी हैं इनके साथ। ये श्रोता है नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा दामिनी वर्मा हैं इनके साथ। और आप हैं सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान।

प्रकाश शिव प्रकाश चौहान, ये खत हमें मिला है ग्राम पंचायत बठेना से। लिखने वाले साथी हैं बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा, चटौदा सरागांव से आप हैं, सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा हैं इनके साथ। ये खत हमें मिला है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। और ये चिट्ठी मिली है गांव नथाना पंजाब से, लिखने वाले हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता। आप सभी श्रोता साथी सुनना चाहते हैं कलाकार, फिल्म से गीत, आवाज़ किशोरदा की है। इंदिवर ने इस गीत को रचा है और कल्याण जी आनंद जी ने धुन बनाई है।

क्या ही गीत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आइए अब सुनते हैं साहिर का लिखा गाना, जिसके लिए धुन बनाई राजेश रोशन ने। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की काला पत्थर फिल्म से। सुनवा रहे हैं आप सभी की फरमाइश पर। आप हैं छत्तीसगढ़ भाटा पारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा, इनके साथ ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से श्रोता हैं मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोहम्मद हसनैन। बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकर लाल गंगराडे, वनीता गंगराडे, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराडे। ग्राम छेगांव देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, भूपेंद्र झवर, तनुश्री आरोही और कान्हा वाघे हैं इनके साथ। ये श्रोता हैं डाबर कॉलोनी डाबर तालाब लोनी से रज़ा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा। आप हैं मलोट पंजाब से राजकुमार इंदौरा, बिमला इंदौरा, गैरी इंदौरा, विकास, प्रियंका, रमन, रितु इंदौरा, भविष्य खन्ना, मिशेल खन्ना और किंचुक खन्ना। और आप हैं वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री।

ये गीत हमने सुना आशा ताई की आवाज़ में नरम गरम फिल्म से। आरडी बर्मन का संगीत ही था और इस गीत को रचा था गुलजार ने। कार्यक्रम में अगला गाना शामिल कर रहे हैं नौकर फिल्म से, हमने इसे लिया है। किशोर कुमार और आशा ताई की आवाज़ें हैं। इन दोनों गीतों के लिए मिलीजुली फरमाइश इस प्रकार से है। आप हैं कृष्णा नगर सेमिनरी हिल्स नागपुर से, नाना डोंगर दिवे रामा ताई डोंगर दिवे, सीता ताई रीमा ताई दीक्षा ताई डोंगर दिवे और राहुल डोंगर दिवे इनके साथ। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, चैतक विरक और मीका विरक। आप हैं प्रमिला गंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से, बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा, राहुल, ज्योति, पायल वर्मा और प्रियांश वर्मा हैं इनके साथ। ये श्रोता है रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से, जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जीएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। ग्राम धुरा बांधा भाटापारा से आप हैं प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नेत्राम साहू, भूपेंद्र और नवीन कुमार साहू। ग्राम पंचायत बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा। चटौदा सारागांव से सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा। आप हैं मोहल्ला हलवायान शेरकोट जिला बिजनौर से, मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और

हिना कौसर, और ये ख़त मिला है DLF कॉलोनी रोहतक से। लिखने वाले हैं हरिंद्र शाह, महेंद्र शाह, जितेंद्र शाह और मानसी शाह।

मनचाहे गीत कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं झुक गया आसमान फिल्म से ये गीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है और पसंद आप सभी की है। आप हैं बेरड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक प्राची और तनु करमरकर हैं इनके साथ। ग्राम धुरा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नेत्राम और भूपेंद्र साहू हैं इनके साथ। आप हैं अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष, बेबी गव्या, भाई सुच्चा पाठक हैं इनके साथ।

झुक गया आसमान फिल्म से गीत हमने सुना रफ़ी साहब की आवाज़ में। आइए अब सबको सुनवाते हैं मन की आंखें फिल्म से गाना, लता मंगेशकर की आवाज़ है। पसंद आप सभी की है। आप हैं मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गुवाणकर राही, सरिता गुवाणकर, प्रिंस एकांश गुवाणकर। आप हैं बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गुवाणकर, श्वेता सुमित, कुमारी ध्वनि गुवाणकर परी। और बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गुवाणकर, प्रणीता गुवाणकर और टुक टुक गुवाणकर। और ये चिट्ठी मिली है महाराष्ट्र हिंगोली से, लिखने वाले हैं शाहजी बोडके, नंदा बोडके, हनुमान बोडके, उत्तम जमदाड़े और स्वराज जमदाड़े।

आकाशवाणी रोहतक से आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ संतोष शेखावत। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं आप सभी की फरमाइश। आप हैं चौधरी वासी राजू अग्रवाल, केशव, दक्ष, विवेक, प्रयाग और प्रियांशी। सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से आप हैं प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्राजक्ता प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर। ये श्रोता हैं चकला बाज़ार सामाना से पप्पूराज दुलखश दिलखुश और संगीता जिंदल, हसमुख जिंदल और पूरा खुशदिल परिवार। आप हैं बटिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। आप सभी श्रोता सुनना चाहते हैं हाथ की सफाई फिल्म से गाना, लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की आवाज़ों में। गुलशन बावरा के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, वंदना और आप हैं इनके साथ, सुनीता जैन, ननबीर तनेजा, सुनीता शर्मा, किरण ठाकुर और वंजिता वर्मा हैं इनके साथ। ये श्रोता हैं गांव बलियाली, ज़िला भिवानी, हरियाणा से दर्शन लाल बंसल, सुदेश रानी बंसल, प्रवीण कुमार बंसल, ममता रानी, कमल कुमार गर्वीश और तमन्ना बंसल हैं इनके साथ। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनवीत, मनविंदर सिंह पांधा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुण वर्मा का खत हमें मिला है। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू निहारका और वंश बत्ता। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। आप सभी श्रोता सुनना चाहते हैं किस्मत फिल्म से गाना आशा ताई की आवाज़। नूर देवासी ने इस गीत को रचा और ओपी नैयर ने तर्ज बनाई।

उत्सव फिल्म से गीत हमने सुना, आवाज़ें थी लता मंगेशकर और आशा भोसले की। इस गीत को सुनवाने के लिए फरमाइश आपकी थी, आप हैं जरूड वडूड महाराष्ट्र से, बाबा साहेब वाडोदी, मीनाक्षी, चरपी, रजनी, कानीरे, कार्तिक और युवराज इनके साथ। धामणी मानोरा जिला वासिम महाराष्ट्र से तुलसीराम डेरे, माया, संदेश, पेंटर डेरे, आदेश, किरण, प्रज्वल डेरे, दादुल्ला, चंद्रकांत, पार्थिल, शब्बीर खान और अनमोल डेरे हैं इनके साथ। कार्यक्रम में अंतिम गीत शामिल कर रहे हैं, दादा फिल्म से हमने इसे लिया है। यशुदास की आवाज़ है, कुलवंत सिंह की लिखी ये रचना है, उषा खन्ना का संगीत है। सुनवा रहे हैं आप सभी की फरमाइश पर मुक्तसर से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान और रवनीत, साथ में इनकी निशु। ये श्रोता हैं कोटवा, नारायणपुर, बाबा पट्टी, बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय हैं इनके साथ। दुबिहा निवेदा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय।

0: यशुदास की आवाज़ में दादा फिल्म से गीत हमने सुना और इस गीत के साथ ही संपन्न होता है फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम मन चाहे गीत। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। रात्रि के 11 बजते हैं। अब समाचार होंगे, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में। रिले कर रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
2: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज चैट बाय अपराजिता नायर। India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defence, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said, India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said, both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Centre and noted that the India-Italy Defence Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defence sector. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Ki Dong-gyu. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the award reflects India's unwavering commitment to food security, sustainable development and human welfare.
2: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
3: Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal has congratulated Prime Minister Narendra Modi for being honoured with the Food and Agriculture Organization's Agricola Medal. In a social media post, Mr. Goyal said, "This is an acknowledgement of the immense contributions of India's farmers, fisherfolk, scientists and other workers in the agriculture sector." Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has also expressed happiness over the conferment of FAO's honour to Prime Minister Modi. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari today announced immediate initiation of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under the Citizenship Amendment Act or CAA. The Chief Minister made the announcement at State Secretariat Nabanna during a handover ceremony to the Border Security Force for border fencing. He said infiltrators identified in the state would now be directly handed over to the BSF for further action and coordination with the Border Guards Bangladesh. Mr. Adhikari clarified that no action would be taken against members of the seven communities protected under the CAA, provided they had entered India before 31st of December 2024. India is said to remain the world's fastest growing major economy as the United Nations in its report projected a growth rate of 6.4% this year for the country despite global uncertainty caused by the West Asia conflict. UN senior economist Ingo Peterle, briefing reporters on the mid-year update to the World Economic Situation and Prospects report yesterday, said India's strong consumer demand, public investment and growth in services exports continue to support its economy. Cyprus President Nikos Christodoulides, along with a high-level delegation, arrived in Mumbai this evening for a three-day official visit to the country. He was warmly received at the airport by Maharashtra Governor Jishnu Dev Verma and Chief Minister Devendra Fadnavis. The swearing-in ceremony of the newly elected members of the 16th Puducherry Legislative Assembly was held today at the Assembly Hall. Pro Tem Speaker A. Anbalagan administered the oath to the newly elected members of the Legislative Assembly. In IPL cricket, Mumbai Indians have set a target of 148 runs for Kolkata Knight Riders at the Eden Gardens in Kolkata tonight. In reply, KKR were 51 for 2 in 6 overs when reports last came in. Put into bat, Mumbai Indians posted 147 runs for the loss of 8 wickets in the allocated 20 overs. Earlier, Kolkata Knight Riders won the toss and opted to bowl. Tomorrow, Gujarat Titans and Chennai Super Kings will clash at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad at 7:30 p.m. local time. And that is the end of this news bulletin.

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 11:10 और 21 सेकंड हो चुके हैं। इसी के साथ संपन्न होते हैं हमारे आज के प्रसारण। कल प्रातः 5:55 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। शुभ रात्रि। जय हिंद।

इसी के साथ संपन्न होते हैं हमारे आज के प्रसारण। कल प्रातः 5:55 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। शुभ रात्रि।